0: कभी भी चांस मिला वापस विविध भारती में गाने सुनने की हमेशा इच्छा रहती है।
1: क्या बात है डॉक्टर साहब, हमें बड़ा गौरव का एहसास होता है जब आप सबकी इस तरह की प्रतिक्रियाएं मिलती हैं। तो आज हम अपने श्रोताओं को बता दें कि आज सेहतनामा कार्यक्रम में जो हमने विषय रखा है वो है प्रोस्टेट और यूरिन से जुड़ी हुई अन्य बीमारियां और बीमारियों के निवारण। तो बताइए हमारे श्रोताओं को कि पुरुषों में प्रोस्टेट ग्रंथि का बढ़ना आजकल बहुत आम हो रहा है, तो प्रोस्टेट का बढ़ना क्या है और शरीर में इसका मुख्य काम क्या होता है?
0: राइट, हर पुरुष में प्रोस्टेट की ग्रंथि रहती है
1: जी।
0: उनका कार्य है कि वो जूस सिक्रेट करता है जो हमारे वीर्य या सीमन का पार्ट रहता है, और ये जूस जो स्पर्म्स रहते हैं उनको न्यूट्रिशन देता है
1: जी।
0: आफ्टर एज ऑफ 40 धीरे धीरे शरीर में हार्मोन के बदलाव से प्रोस्टेट की ग्रंथि में चेंजेस शुरू होते हैं और धीरे धीरे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है
1: जी।
0: और प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से, क्योंकि प्रोस्टेट की पोजीशन हमारे यूरिन के ब्लैडर के नीचे जो यूरिनरी पैसेज है उसके सराउंडिंग प्रोस्टेट वहां बनी रहती है
1: जी।
0: और जब भी ये ग्रंथि बढ़ती है तो ये यूरिनरी ट्यूब पे दबाव आने से यूरिन करने की दिक्कतें बढ़ने लगती है। सो इस प्रकार से धीरे धीरे प्रोस्टेट के जो प्रॉब्लम्स है एज एज एडवांसेस, जैसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है प्रॉब्लम बढ़ते हैं। सो बेसिकली ये सब प्रॉब्लम एज रिलेटेड है और जैसे एज बढ़ती है लोगों की प्रोस्टेट बढ़ने लगती है और उनके प्रॉब्लम हो सकते हैं। लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि हर एनलार्ज प्रोस्टेट डजंट मीन के वो प्रॉब्लम देने वाली है या उसके ट्रीटमेंट की आवश्यकता है। सो प्रोस्टेट बढ़ना नेचुरल है, और जब ये प्रोस्टेट की ग्रंथि यूरिनरी ट्रैक में रुकावट करती है
1: जी।
0: या उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या वहां कभी कभी कैंसर के चेंजेस होते हैं, तभी ही इस प्रोस्टेट के प्रॉब्लम को ट्रीट करना जरूरी रहता है
1: जी। तो आपने जिक्र किया कैंसर का, तो अमूमन जैसे ही प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ती है लोग यही मानते हैं कि अब उनको कैंसर होना पक्का है, आगे चल के कैंसर हो जाएगा, तो ये कहाँ तक मिथ है, कहाँ तक इसके बारे में थोड़ा क्लियर करिए कि प्रोस्टेट किस तरह की बीमारी है और कैंसर क्या है।
0: राइट, सो हर प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ने से कैंसर होता है, ये गलत बात है और ये मिथ है। आजकल लोग इतनी इंफॉर्मेशन के कारण जब ये सब चीजें पढ़ते हैं सुनते हैं बहुत घबरा जाते हैं। दूसरी बात हुई कि रेगुलर हेल्थ चेकअप बहुत अच्छी बात है
1: जी,
0: लेकिन वहां कहां भी रिपोर्ट्स में पढ़ लिए कि प्रोस्टेट बढ़ गई है लोग एकदम चिंतित हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: और फिर डॉक्टर गूगल के पास जाके काफी इंफॉर्मेशन जमा करते हैं। लेकिन इंफॉर्मेशन होना महत्व का है
1: हाँ।
0: लेकिन उसके कारण अननेसेसरी टेंशन लाना जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल,
0: सो हर प्रोस्टेट बढ़ने से उनमें कैंसर होगा ये बात सही नहीं है
1: जी।
0: लेकिन एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट जो बिनाइन है नॉर्मली उसके साथ में कैंसर भी हो सकता है। सो ओनली थिंग इज रेगुलर चेकअप बाय एन एक्सपर्ट, जिसके कारण अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई तो समय सर हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं और समय सर उसे हम ट्रीट कर सकते हैं
1: जी।
0: लेकिन प्रोस्टेट बड़ी या एनलार्ज प्रोस्टेट हुई उसका मतलब अभी कैंसर हो जाएगा ये गलत बात है, और अन्य सिर्फ उसके बारे में टेंशन रखना वो ठीक नहीं है।
1: बिल्कुल, तो प्रोस्टेट बढ़ा है और क्या है इसके लक्षण, कैसे पता चले एक मरीज को, और दूसरा इसकी जांच की पद्धति क्या है, किस तरह के टेस्ट होते हैं?
0: राइट, पहली बात मैंने बताया ऐसे हेल्थ चेकअप में काफी समय रिपोर्ट में आएगी प्रोस्टेट बढ़ी हुई है, लेकिन उसका मतलब नहीं कि वो बढ़ी हुई प्रोस्टेट के लिए या एनलार्ज प्रोस्टेट के लिए ट्रीटमेंट की आवश्यकता है
1: जी।
0: प्रोस्टेट के लिए हम तीन चीजें देखते हैं
1: जी।
0: एक कैंसर नहीं वो हम चेक करते हैं, दूसरी बात उसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस या किडनी डैमेज नहीं हो रहा है वो हम देखते हैं, और तीसरी बात कि उनके सिम्टम्स के कारण पेशेंट को कितनी दिक्कतें होती है उस हिसाब से हम निर्णय लेते हैं कि ट्रीटमेंट की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है
1: जी जी।
0: सो जब रिपोर्ट दिखाता है कि एनलार्ज प्रोस्टेट है, पेशेंट में कोई सिम्टम्स नहीं हो सकते हैं, वो चेकअप किया इसलिए एनलार्ज प्रोस्टेट करके वो दिखा रहा है
1: जी।
0: ऐसे पेशेंट को कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तपास करनी जरूरी है
1: जी जी।
0: सिम्टम्स जिनको प्रॉब्लम देते हैं उनको दो प्रकार के सिम्टम्स रहते हैं
1: जी।
0: एक जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स

0: और वॉइडिंग सिम्टम्स, जहां यूरिन करने में दिक्कत, यूरिन की धार वीक होना, यूरिन के लिए जोर करना, यूरिन के लिए बार बार जाना, और दूसरी जो है इसे हम स्टोरेज सिम्टम्स कहते हैं, उसके कारण जब यूरिनरी ब्लैडर पे असर होता है तो कभी कभी पूरी यूरिन निकलती नहीं है, इन्फेक्शन हो सकता है, उसके कारण पेशेंट को बार बार यूरिन के लिए जाना, कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाना, ये सब सिम्टम्स बाहर आने लगते हैं।
1: जी,
0: लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि ये सब सिम्टम्स खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही है, ऐसी बात नहीं है, बाकी रोगों के कारण भी ऐसे सिम्टम्स आ सकते हैं,
1: जी,
0: जैसे डायबिटीज,
1: यस,
0: जहां डायबिटीज के कारण काफी लोगों को फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन बढ़ जाती है,
1: ओ,
0: न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जैसे पार्किंसंस डिजीज
1: ओ
0: जिसके कारण, या पथरी ब्लैडर में रही, सो ये सब सिम्टम्स के काफी कारण हो सकते हैं। ये सिम्टम्स हुए उसका मतलब ये नहीं कि ये खाली एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण ही हुआ है।
1: जी,
0: इसीलिए हम अब ये सिम्टम्स को LUTS या लोअर यूरिनरी ट्रैक सिम्टम्स कहते हैं, और फिर जांच करना जरूरी है जानने के लिए कि ये प्रोस्टेट के कारण है या और कुछ कारण के हिसाब से ये सिम्टम्स से पेशेंट परेशान है।
1: जी, तो टेस्ट किस तरह के होते हैं? मतलब ब्लड के जरिए होता है या फिर सोनोग्राफी, या क्या तरीका है?
0: राइट, सो पहले तो हिस्ट्री के हिसाब से हम देखते हैं कि ये सिम्टम्स कितने बॉदरसम है पेशेंट्स को,
1: जी,
0: उसका स्कोर रहता है जिससे हमें आइडिया आता है कि सिवियरिटी सिम्टम के हिसाब से कितनी है। बाद में फिजिकल एग्जामिनेशन महत्व का रहता है कि प्रोस्टेट हम चेक करते हैं कि कितनी बड़ी हुई है, उसमें कुछ चेंजेस कैंसर के फील होते हैं कि नहीं, यूरिन की ट्यूब व्यवस्थित है कि नहीं, ब्लैडर कुछ भरा हुआ नहीं है, सो नेक्स्ट पार्ट इज अ फिजिकल एग्जामिनेशन। देन वी डू लेबोरेटरी टेस्ट, जैसे इनका हीमोग्लोबिन कैसा है, ब्लड शुगर कैसी है, सीरम क्रिएटिनिन, जिसे पता चलता है कि इसके कारण दोनों किडनी पे प्रेशर आके क्रिएटिनिन बढ़ के किडनी तो डैमेज नहीं हो रही है,
1: नो,
0: यूरिन टेस्ट करते हैं जानने के लिए कि उसमें इन्फेक्शन तो नहीं है, कभी कभी ब्लड तो नहीं जा रहा है, ये यूरिन टेस्ट से हम पता करते हैं। एक महत्व की टेस्ट है जिसे हम PSA या प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट कहते हैं, या ब्लड टेस्ट है।
1: जी,
0: ये एक टेस्ट है जानने के लिए कि कैंसर की शक्यता है या नहीं है। जिनको ये नंबर या PSA का रिपोर्ट ज्यादा रहता है उनको प्रॉपर इवेल्युएशन की जरूरत रहती है।
1: जी,
0: ये भी गलत मानना है कि एक बार PSA का नंबर ज्यादा आया मतलब कैंसर ही है। PSA बढ़ने के भी अलग अलग कारण है, कभी प्रोस्टेट बड़ी होने से, वहां इन्फेक्शन होने से, सूजन होने से, बट अगर PSA का नंबर ज्यादा है तो वो हिसाब से चेकअप करना जरूरी है।
1: बिल्कुल,
0: इसके बाद में हम सोनोग्राफी करते हैं।
1: जी,
0: सोनोग्राफी करने का यही कारण है जानने के लिए कि इसके कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस लाइक स्टोन्स, या फिर उसके कारण किडनी पे प्रेशर तो नहीं है, ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं। ये भी पता चलता है कि पूरी यूरिन निकलती है या नहीं, या अंदर यूरिन रह जाती है, सो ये सब चीजें हम सोनोग्राफी से पता करते हैं, और साइज ऑफ द प्रोस्टेट पता चलती है।
1: जी,
0: ये भी जानना जरूरी है कि साइज के हिसाब से डर जाना जरूरी नहीं है, बड़ी प्रोस्टेट मतलब प्रॉब्लम होना ही चाहिए या ट्रीटमेंट लेनी ही चाहिए, ऐसी बात नहीं है। सो साइज इज इम्पोर्टेंट, लेकिन साइज के हिसाब से हम पूरी ट्रीटमेंट डिसाइड नहीं करते हैं,
1: जी,
0: क्योंकि लोग जब देखते हैं रिपोर्ट में सोनोग्राफी में कि 100 ग्राम की प्रोस्टेट है, डर जाते हैं कि इतनी बड़ी प्रोस्टेट है, कल ऑपरेशन कर दीजिए, सो ये अगेन गलत बात है। खाली साइज के हिसाब से हम ट्रीटमेंट प्लान डिसाइड नहीं करते हैं,
1: बिल्कुल,
0: सो ये स्टैंडर्ड हम टेस्ट करके देखते हैं कि पेशेंट को कितनी तकलीफ है, प्रोस्टेट के कारण कोई कॉम्प्लिकेशंस है या नहीं, या कैंसर की शक्यता है कि नहीं।
1: जी,
0: इस इवैल्यूएशन के बाद में वो वी कैन टेक अ डिसीजन कि आगे हमें क्या करना
1: जी, बहुत सही बातें आपने बताई हैं, बहुत सही जानकारी, और इसमें बहुत सारी गलतफहमियां लोगों को होती हैं कि प्रोस्टेट बढ़ा तो खुद ही टेंशन में आकर खुद ही तय कर लेते हैं, तो बेहतर है कि यूरोलॉजिस्ट के पास जाएं और उन्हें तय करने दें कि क्या करना है। अब हम यहाँ पर तय कर रहे हैं कि आपकी पसंद का कोई गाना आना चाहिए, बताइए कौन सा गाना सुनवाएं।
0: जरूर, इस प्रोफेशन में भी हम मानते हैं कि हमेशा हमें ऊपर वाले के आशीर्वाद की जरूरत पड़ती है,
1: क्या बात है,
0: और लोगों के गुड विशेस की हमें हमेशा जरूरत।

0: बिल्कुल
1: थी। सो ऊपर वालों को याद करके, बहुत पुराना बहुत अच्छा गाना है, ए मालिक तेरे बंदे हम,
0: दो आंखें बारह हाथ,
1: दो आंखें बारह हाथ।
0: क्या बात है, सुनते हैं, बहुत ही बेहतरीन गाना चुना है।

0: और डॉक्टर साहब आपने कहा कि ऊपर वाले का वरद हस्त जरूरी होता है। सचमुच हम तो यही कहते हैं कि डॉक्टर की दवा और दुआ दोनों कारगर होती है मरीज के लिए।
1: आपकी बात बहुत सच है। मैं बताऊं,
0: जी
1: लोग डॉक्टर्स को भगवान मानते हैं,
0: जी
1: लेकिन ये सच नहीं है। हम तो ऊपर वाले ने जो हमको काम दिया है वो कैसे अच्छी तरह से करें वो
0: बेहतर
1: हमारी
0: तरीके
1: इच्छा रहती है।
0: से
1: बहुत बड़ा गैप है भगवान और हमारे में। अच्छी
0: जी
1: बात है क्योंकि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी डॉक्टर्स को दी गई हुई है,
0: जी जी
1: लेकिन हम भगवान नहीं है। हमें हमेशा भगवान की आशीर्वाद की और मदद की जरूरत पड़ती है।
0: जी सही बात है, लेकिन एक मरीज यही मान के चलता है क्योंकि डॉक्टर के बदौलत वो उसका ट्रीटमेंट हो जाता है। और गाने से पहले डॉक्टर साहब हम बात कर रहे थे, आपने जिक्र किया था कि मरीज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ देखते हैं और घबरा जाते हैं कि अब उन्हें सर्जरी की जरूरत है। तो श्रोताओं को बताइए कि कौन सी ऐसी स्थिति आती है जब सर्जरी की जरूरत है और किस तरह से इसका इलाज किया जाता है, दवाइयों से और सर्जरी से दोनों बताइए।
1: प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आया है। एक जमाना था कि पेशेंट के पास और हमारे पास खाली तीन ऑप्शन थे, या तो कुछ नहीं करना, या तो नली डाल के रखना,
0: जी
1: या तो
0: जी
1: ऑपरेशन करना। जैसे मैंने बताया कि
0: जी
1: हर एनलार्ज प्रोस्टेट के कारण अलग अलग रहते हैं, और अगर इवेल्युएशन व्यवस्थित नहीं किया और ऑपरेशन भी किया तो उसका फायदा नहीं होता है। पहले तो जिनको कोई तकलीफ नहीं उसके लिए कोई

0: ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती है। हाँ जी, रेगुलर चेकअप करना बहुत जरूरी है। द सेकेंड पार्ट इज मेडिकेशंस।
1: जी
0: आजकल काफी दवाएं आई है जिसके कारण यूरिन करने में सुविधा होती है, अंदर ज्यादा यूरिन रहती नहीं है। प्रोस्टेट का जो भाग है वो थोड़ा दवाई से खुल जाने से पेशेंट को काफी आसानी और आराम मिलता है,
1: जी
0: जिसे हम अल्फा ब्लॉकर्स कहते हैं और 5-रिडक्टेज इनहिबिटर, ये कुछ दवाएं के ग्रुप्स है जिसके कारण प्रोस्टेट की ट्रीटमेंट में काफी बदलाव आ गया है।
1: जी
0: अगर दवाई देने के बावजूद भी लोगों की तकलीफ कम नहीं हुई, तब उस समय हमें निर्णय लेना पड़ता है कि इस मरीज को ऑपरेशन की आवश्यकता है या आवश्यकता नहीं है।
1: जी
0: कभी कभी उसके लिए भी स्पेशल टेस्ट है, जिसे हम यूरोडायनेमिक्स कहते हैं,
1: जी हाँ
0: क्योंकि यूरिन करने के लिए दो चीजें महत्व की। यूरिनरी ब्लैडर में काफी प्रेशर होना चाहिए यूरिन बाहर फेंकने के लिए, और जो रास्ते में प्रोस्टेट है वो रुकावट नहीं करनी चाहिए। अगर प्रॉब्लम ब्लैडर का है और हम प्रोस्टेट का ऑपरेशन करेंगे तो उसका रिजल्ट सही नहीं मिलेगा।
1: जी जी
0: सो कुछ केसेस में हम ये स्पेशल यूरोडायनामिक टेस्ट करनी पड़ती है और फिर हम निर्णय लेते हैं ऑपरेशन के लिए।
1: जी
0: पहले के जमाने में खाली ओपन ऑपरेशन ही हमारे पास एक ऑप्शन था।
1: जी
0: आजकल दूरबीन से, जिसे हम TUPR और टर्फ कहते हैं, जहां अंदर से ही लेजर से या अलग अलग एनर्जी सोर्सेस से रास्ता बढ़ा करके प्रोस्टेट के कुछ चिप्स निकाल देते हैं ताकि रास्ता बढ़ जाता है और फिर पेशेंट को यूरिन करने में काफी आसानी हो जाती है। आजकल कुछ नए नए टेक्निक्स भी आए हैं, जैसे रेज्यूम है या फिर यूरोलिफ्ट है, ये सब नई तरीके हैं जिससे मिनिमल प्रोसीजर करके अगर रास्ता बड़ा कर सके और पेशेंट को राहत दे सके, ये कोशिश रहती है।
1: जी
0: लेकिन अभी तक ये सब नई टेक्निकें हैं, एक्सपेंसिव है, और लॉन्ग टर्म इतना आउटकम कैसे रहेगा वो अभी तक हमें वो उसका एश्योरेंस नहीं है। सो ये नई नई चीजें आई हैं, हम पेशेंट के सामने सब ऑप्शंस रखते हैं,
1: जी
0: और ये जिसे हम कहते हैं कि शेयर्ड डिसीशन है, क्योंकि हर ऑपरेशन के कुछ आड़ असर भी रहते हैं,
1: जी जी
0: हर ऑपरेशन के लिए पैसे भी खर्च पड़ते हैं, और ये सब करने के बाद अगर पेशेंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है तो अच्छा ऑपरेशन करने के बाद में भी जो हम सक्सेस चाहते हैं वो नहीं मिलता है।
1: जी
0: सो इसीलिए पेशेंट के साथ बात करके उनको समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया में सब जगह पे ये नई नई टेक्निक काफी इसका प्रचार हो रहा है,
1: जी जी
0: और पेशेंट वो सोच के आ जाते हैं कि ये बस यही सबसे अच्छी ट्रीटमेंट है और वो करा के आते हैं, लेकिन कभी कभी उसमें सक्सेस नहीं मिलता है, क्योंकि केस सिलेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1: इसलिए अनुभवी डॉक्टर के पास जाएं वो ज्यादा अच्छा होता है। तो आजकल की जो तकनीक का आपने जिक्र किया, तो जो भी तकनीक है अमूमन कितना वक्त लगता है ऑपरेशन के लिए? क्योंकि ऑपरेशन के नाम से मरीज घबराता है कि
0: जी
1: अरे हमें
0: जी
1: 2-3 दिन के लिए एडमिट होना पड़ेगा हॉस्पिटल में।
0: सो कुछ टेक्निक है जो एक दिन अस्पताल में रहना पड़ता है और फिर थोड़े दिन कभी कभी नली लगा के रखनी पड़ती है, कैथेटर और बैग, एंड देन पेशेंट्स क्वाइट ऑल राइट। जो
1: जी
0: स्टैंडर्ड ऑपरेशन है, जिसे हम TURP कहते हैं या होलेप जो लेजर से करते हैं, उसके लिए 3 दिन अस्पताल में रहना पड़ता है
1: जी
0: और नली 3 या 4 दिन रखनी पड़ती है। कभी कभी अगर पेशाब की थैली वीक रही, काफी बड़ी प्रोस्टेट रही, तो फिर नली हमें ज्यादा समय तक रखनी पड़ती है।
1: जी जी
0: लेकिन पहले जैसे जो कट करके हमें इतना बड़ा ऑपरेशन करना पड़ता था, वो अब नहीं रहा है। पेशेंट थोड़े ही समय में अपने काम पे वापस जा सकता है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब बात थोड़ी सी घबराने की भी हो जाती है, क्योंकि सर्जरी के नाम से कोई भी मरीज थोड़ा ना थोड़ा घबरा ही जाता है, भले ही 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए एडमिट होना पड़े। तो थोड़ी घबराहट कम करने के लिए एक गाना सुन लेते हैं।
0: हो
1: कौन सा
0: जरूर,
1: गाना सुनवाए?
0: राजेश खन्ना जी का गाना सफर, जीवन से भरी तेरी आंखें,
1: वाह क्या बात है, किशोर कुमार की
0: किशोर कुमार
1: आवाज।
0: की आवाज, क्या गाना है।
1: जी सुनते हैं यही गाना, फिल्म सफर।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले बात चल रही थी ऑपरेशन की, सर्जरी की बात चल रही थी, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं आपसे कि अमूमन लोगों का आजकल वेट बढ़ना और अनियमित दिनचर्या हो रही है और वजन बढ़ना, तो लोग इन सबको भी किसी न किसी बीमारी से जोड़ लेते हैं, और प्रोस्टेट बढ़ने में भी इसको लोग गूगल से, आपने जिक्र भी किया, गूगल से जानकारी लेते हैं कि आपको अगर मोटापा हुआ, तो ये कहां तक तर्कसंगत है कि जीवन शैली का या मोटापा का, वजन बढ़ने का प्रोस्टेट पर क्या प्रभाव पड़ता है?
1: सो जिसे हम मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स कहते हैं, जिसमें ये सब चीजें आती है, डायबिटीज, वेट गेन, ये सब चीजों का, क्योंकि इंटरनल बॉडी मिल्यू में चेंजेस होने से अल्टीमेटली ये हार्मोनल चेंजेस के कारण प्रोस्टेट बढ़ता है, सो ये सब का कुछ कुछ जरूर प्रभाव होता है, लेकिन ये सब चीजें अभी थियरी है। सच में आप पूछेंगे कि एग्जैक्ट कारण क्या है, वो किसी को पता नहीं है।
0: जी, जी।
1: लेकिन ये सब चीजें डेफिनेटली कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि अल्टीमेटली लाइफस्टाइल चेंजेस से आप कितना पानी पीते हैं, कितनी बार आप ब्लैडर खाली करते हैं, आपके शुगर आप मेंटेन करते हैं कि नहीं, आपको पार्किंसन जैसे न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है कि नहीं, सो ये सारी चीजें अल्टीमेटली असर करती है, और उसकी कुछ असर जरूर प्रोस्टेट में होती है।
0: जी।
1: लेकिन 100% बताना कि इसी के कारण प्रोस्टेट के प्रॉब्लम हो रहे हैं, वो अभी तक इतना साइंटिफिक डेटा हमारे पास नहीं है।
0: जी, लेकिन मोटापा और वजन बढ़ना तो इससे भी नुकसान
1: जरूर
0: है।
1: जरूर।
0: डॉक्टर साहब, कैंसर की बात कर रहे थे जब, तो मेरे जहन में एक बात आई कि प्रोस्टेट जब बढ़ा हो तो किस तरह की असावधानी से वो कैंसर का रूप लेता है, या कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एकदम अलग है और प्रोस्टेट बढ़ना बिल्कुल अलग है, क्या असावधानी या लापरवाही से वो कैंसर का रूप ले सकता है?
1: सो प्रोस्टेट का बढ़ना नेचुरल है, और उसमें कैंसर के चेंजेस होने के कुछ कारण हमें मालूम है, कुछ कारण हमें मालूम नहीं है।
0: जी।
1: स्मोकिंग

0: इज डेफिनेटली वन फैक्टर। कुछ
1: जी
0: चीजें जेनेटिक्स हैं, जिनको फैमिली में कैंसर की हिस्ट्री है उनको सावधानी रखना बहुत जरूरी है और रेगुलर चेकअप रखना जरूरी है। सो ये चीजें डेफिनेटली, ऐसा कोई प्रिवेंटिव मेजर हमारे पास नहीं है कि ये करने से कैंसर नहीं होगा। सो इसलिए सबसे बड़ी सावधानी रेगुलर चेकअप है, जिससे समय में पता चलता है कि प्रोस्टेट में कुछ कैंसर चेंजेस हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं।
1: जी, यूरिन से जुड़ी और कौन सी समस्या है जो प्रोस्टेट की ओर संकेत करती है कि
0: जैसे बिनाइन प्रोस्टेट के कारण जो प्रॉब्लम्स होते हैं, जैसे डिफिकल्ट इन पासिंग यूरिन, कभी कभी बार बार यूरिन के लिए जाना, यूरिन में ब्लड आना,
1: जी
0: ये एक ऐसा सिम्टम है कि उसकी हमेशा हमें सावधानी रखनी चाहिए और टेस्ट करनी चाहिए,
1: जी जी
0: क्योंकि अलग अलग कारणों से ब्लड आ सकता है, लेकिन एक फिक्र रहती है कैंसर की। ये अगर कुछ सिम्टम्स रहे तो डेफिनेटली आगे इन्वेस्टिगेशंस करना जरूरी रहता है। लेकिन ज्यादा करके लोग यूरिन के प्रॉब्लम से ही आते हैं, जो बिनाइन प्रोस्टेट और कैंसर प्रोस्टेट के लिए कॉमन सिम्टम्स है।
1: जी
0: जांच करने से ही पता चलता है कि ये बिनाइन प्रोस्टेट है या उसमें कुछ कैंसर के चेंजेस हो के कैंसर प्रोस्टेट हो रहा है।
1: तो मतलब किसी को प्रोस्टेट ग्रंथि बढ़ी है तो इतना घबराने की जरूरत नहीं कि आगे चल के कैंसर हो जाएगा लोगा।
0: एब्सोल्युटली नहीं, और साइज देख के भी घबराना नहीं है कि बहुत
1: बिल्कुल
0: प्रोस्टेट बड़ी हो गई अब मुझे कैंसर होगा, ये गलत बात है।
1: जी
0: सो हर पुरुष को, मैंने बताया, ऐसे प्रोस्टेट की ग्रंथि बढ़ती है, लेकिन कैंसर बहुत कम परसेंटेज में वो कैंसर में चेंज होती है।
1: जी और डॉक्टर साहब, प्रोस्टेट से जुड़ी हुई और कौन सी बीमारियां होती हैं उसके कारण?
0: प्रोस्टेट कभी कभी यंग एज में वहां इन्फेक्शन होने से प्रोस्टेटाइटिस, जिसे हम कहते हैं,
1: जी हाँ
0: कभी कभी वहां पस जमा होता है, जिसे हम प्रोस्टेटिक एब्सेस कहते हैं। ये चीजें भी प्रोस्टेट से जुड़ी हुई रहती है, और अगर इस प्रकार के सिम्टम्स या इन्फेक्शन होने लगे, कभी कभी टीबी की बीमारी भी प्रोस्टेट में हो सकती है।
1: जी जी
0: सो
1: जी
0: इन्फेक्शन एक बात है, फिर दूसरी बात ये बिनाइन प्रोस्टेट बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं या कैंसर प्रोस्टेट के कारण तकलीफ हो सकती है।
1: जी तो इसमें क्या पुरुषों की सामान्य जीवन शैली या मानसिक स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है किसी को प्रोस्टेट की समस्या है तो?
0: जरूर, क्योंकि अल्टीमेटली इससे काफी लाइफस्टाइल चेंज होती है।
1: जी
0: एक जमाना था कि आफ्टर 60 इयर्स लोग मानते थे कि अभी वानप्रस्थ आश्रम है, मुझे दिन में 10 बार या रात को 5 बार यूरिन जाने की अगर जरूरत हुई तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। आज लोग 60, 70, 80 काफी एक्टिव है, और जब यूरिनरी समस्या, बार बार जाना, कंट्रोल नहीं कर सकना, काफी टेंशन देती है।
1: जी
0: अब बंबई की बात देखिए, अगर किसी को बोरीवली से चर्चगेट तक सफर करना है गाड़ी
1: जी
0: में, और उनकी समस्या है कि बार बार यूरिन जाना पड़ता है या कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, यह एक मानसिक तनाव हमेशा बना रहता है कि कहां मुझे सुविधा मिलेगी, कहां मैं यूरिन के लिए जा सकूंगा। और फिर जब ये सब ख्याल नहीं करते हैं, यूरिन अंदर ज्यादा भरी हुई रहती है, तो फिर यूरिन की ब्लैडर भी वीक होने लगती है, फिर उससे कभी कभी इन्फेक्शन की भी समस्या आनी शुरू हो जाती है। यस, स्ट्रेस के कारण भी कुछ लोगों को बार बार यूरिन जाने की इच्छा होने लगती है।
1: जी
0: साइकोलॉजिकली ऑल्सो जब लोगों को यूरिन की प्रॉब्लम रहती है, तो दोनों चीज होती है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए भी यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, और यूरिनरी प्रॉब्लम बढ़ने से भी साइकोलॉजिकली स्ट्रेस आना शुरू हो जाता है।
1: दोनों एक दूसरे से जुड़े
0: दैट्स
1: हुए
0: राइट,
1: हैं। तो यहाँ पर टेंशन रिलीज करने के लिए एक गाना आना चाहिए। कौन सा
0: जरूर
1: गाना?
0: एक किशोर कुमार जी का गाना है, पल पल दिल के पास तुम
1: तुम
0: रहती
1: रहती
0: हो,
1: हो, ब्लैक पेन फिल्म
0: काफी,
1: का गाना।
0: जी हाँ जी, रोमांटिक गाना है,
1: जी जी
0: लेकिन किशोर दा ने बहुत अच्छी तरह से गाना गाया है।
1: जी जी डॉक्टर साहब, आपने भी रिकॉर्डिंग शुरू करने से पहले जिक्र किया था, प्रोग्राम्स, म्यूजिकल प्रोग्राम में बड़े सक्रिय रहते हैं, देखने जाते हैं स्टेज के प्रोग्राम, और आपने बताया कि पहले गाया भी करते थे,
0: हाँ जी,
1: तो यहाँ गा के सुनाएंगे?
0: नहीं अब क्या है, कुछ वॉइस की तकलीफ हुई है इसलिए गाना डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन एक
1: जी
0: जमाना था गाते थे। और यस, म्यूजिक इज सच अ सूदिंग थिंग
1: हाँ
0: कि कोई भी स्ट्रेस को कम कर देती है,
1: जी जी
0: और कोई भी स्ट्रेसफुल जॉब हमारा, जब हम कभी कभी ऑपरेशंस में, कभी कभी

0: सर्जरी, किडनी ट्रांसप्लांट में हम 24 घंटे 36 घंटे एक कंटिन्यूसली काम करते हैं, उस समय म्यूजिक का सहारा बहुत जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: और आप जानते हैं कि लोग म्यूजिक थेरापी भी देते हैं। सो
1: जी
0: म्यूजिक इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिलीविंग द स्ट्रेस।
1: जी
0: सो मुझे लगता है कि बहुत से हमारे डॉक्टर्स हैं जो गाते भी हैं, म्यूजिक में दिलचस्प भी है, क्योंकि ये एक बहुत जरूरी चीज है जो स्ट्रेस कम करने के लिए महत्व की हो जाती है।
1: जी तो इन बीमारियों पर भी म्यूजिक थेरेपी काम करती है क्या?
0: क्यों नहीं, अगर स्ट्रेस कम हो जाता है तो आप यूरिन के बारे में
1: बंद हो जाएगा।
0: सोचेंगे
1: जी बिल्कुल। तो सुनते हैं ये गाना ब्लैकमेल फिल्म का।

0: और फिर वापस बार बार जाना पड़ता है। कुछ लोगों को जिसे हम स्लीप एपनिया कहते हैं,
1: ओ
0: जिसके कारण भी बार बार रात को यूरिन जाना जरूरी हो जाता है।
1: जी
0: सो काफी ऐसे जिसे हम नॉक्चूरिया कहते हैं, और ये बड़ी सीरियस प्रॉब्लम है, क्योंकि स्लीप डिस्टर्ब होने से लोगों की लाइफस्टाइल और नेक्स्ट डे काम करने में काफी दिक्कतें आने लगती है।
1: जी
0: सो ये एक बड़ा विषय है जो ऑलवेज प्रोस्टेट के ही कारण है, वैसा नहीं है। एनलार्जमेंट ऑफ प्रोस्टेट के कारण भी ये प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन काफी बाकी भी ऐसे कॉजेस है जिसके कारण ये नाइट फ्रीक्वेंसी बढ़ने से लोगों को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाते हैं।
1: जी
0: कुछ लोगों की एसेट स्लीप डिस्टर्बेंस की पैटर्न रहती है, और फिर थोड़ा सेंसेशन हुए वो बार बार बाथरूम में जाते हैं। सो ये पता करना डिफिकल्ट हो जाता है कि स्लीप डिस्टर्बेंस के कारण बार बार जाते हैं या बार बार यूरिन जाने से स्लीप डिस्टर्ब होती है।
1: जी
0: तो ये सब चीजें एनालाइज करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि हर समय खाली दवाइयों से सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे या ऑपरेशन के प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे, ये नहीं होता है। और ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि कुछ लोग डेस्परेट होके आ जाते हैं, कहते हैं कि मेरा प्रोस्टेट का ऑपरेशन कर दीजिए ताकि रात की मेरी तकलीफ चली जानी चाहिए, लेकिन ये गलत बात है,
1: जी
0: क्योंकि ऑपरेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम रह सकते हैं। इसलिए इस पेशेंट्स में ये समझना बहुत जरूरी है कि किस कारण से उनकी ये रात की फ्रीक्वेंसी उन्हें ट्रबल दे रही है।
1: तो इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं? एक तो आपने नींद का बताया और दूसरा पानी ज्यादा पीना, लेकिन कई बार लोग अमूमन बार बार बाथरूम जाते हैं, इसमें महिलाओं की संख्या क्या ज्यादा होती है या फिर?
0: यस, महिलाओं के प्रॉब्लम थोड़े अलग रहते हैं। जब उनकी मेनली जिसे हम फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी प्रॉब्लम कहते हैं, उसके कारण कुछ अलग रहते हैं। पहली बात कि काफी महिलाओं में बचपन से आदत हो जाती है कि समय समय से यूरिन नहीं करते हैं, क्योंकि सुविधा नहीं मिलती है। और जब ज्यादा यूरिन जमा होने लगता है, तो धीरे धीरे पेशाब की थैली और यूरिनरी ब्लैडर वीक बनने लगती है, फिर उन्हें पेट का प्रेशर लगा के वो यूरिन खाली करनी पड़ती है।
1: जी
0: जब एक समय में खाली नहीं होती है, तो फिर बार बार जाके उनको यूरिन खाली करनी पड़ती है। ये एक प्रॉब्लम हुआ। दूसरा, जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर या इरिटेबल ब्लैडर कहते हैं, जो कभी कभी कुछ लोगों को कॉफी टी इसके कारण ब्लैडर इरिटेशन होने से बार बार जाना पड़ता है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात है स्ट्रेस लेवल। कुछ लोगों को जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, वो इमीजिएट उनको लगता है मुझे जाके यूरिन करनी चाहिए। और फोर्थ, इन्फेक्शन, विच इज वेरी कॉमन इन लेडीज, यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के कारण भी ये तकलीफ हो सकती है। बाकी काफी अलग अलग कारण हैं, लेकिन ये कॉमन कारण है, और जिसके कारण ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी इतनी तकलीफ बन जाती है, और लेडीज में ये काफी इंसिडेंस काफी ज्यादा है। इस पेशेंट्स को पहले तो, जैसे मैंने बताया, कॉमन इन्वेस्टिगेशंस करके हम रूल आउट करते हैं कि अंदर ऐसी कोई बीमारी नहीं है। फिर लाइफस्टाइल चेंजेस, कि काफी लोग मानते कि बहुत पानी पीना चाहिए। सच बात है, पानी पीना जरूरी है, लेकिन अगर आपको इतनी फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी का प्रॉब्लम है, तो वो हमें थोड़ा कंट्रोल करना जरूरी हो जाता है। तीसरी बात, जिनको डेफिनेटली कैफीन या कॉफी और टी से होता है, उसका प्रमाण कम करना जरूरी हो जाता है। और आजकल काफी दवाइयां आई हैं जिससे ब्लैडर को रिलैक्स करने से, ब्लैडर की कैपेसिटी बढ़ने से वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सकती है। और फोर्थ, कुछ लोगों को जो स्ट्रेस इतना तकलीफ देता है, आई थिंक योगा, एक्सरसाइजेस, ऑल दिस थिंग्स हेल्प देम इन रिलैक्सिंग द ब्लैडर मसल्स, ताकि वो ज्यादा समय तक यूरिन स्टोर कर सके। सो लाइफस्टाइल चेंजेस का बहुत बड़ा महत्व है ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी ट्रीट करने में, और दूसरा, यूरिनरी इन्फेक्शन अवॉइड करना जरूरी हो जाता है।
1: जी तो डॉक्टर साहब, आप इन्फेक्शन की बात आपने कई बार कही, तो इन्फेक्शन को अवॉइड कैसे किया जाए? क्या वजह हो सकती है? महिलाओं में पुरुषों में अलग तरह के इन्फेक्शन होते हैं, तो इसके
0: दैट्स
1: बारे में
0: राइट।
1: थोड़ी जानकारी दीजिए।
0: सो एक तो एडिक्वेट पानी पीना भी जरूरी है, बहुत कम पानी पीना ठीक नहीं है। दूसरी बात, समय समय से यूरिन कर लेना है। तीसरी बात, हम देखते हैं कि कभी कभी अंतर कोई सिस्टम में कारण नहीं, जैसे ब्लैडर स्टोन से, किडनी स्टोन से, जिसके कारण भी इन्फेक्शन हो सकता है।

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले ये बातें हो रही थी स्ट्रेस रिलीज की, और यूरिन पास करने की बात आप कर रहे थे बार बार, लेकिन आजकल ये बहुत कॉमन बात हो गई है, रात में खास तौर से। कुछ लोगों को देखा है कि 3-4 बार उठ के यूरिन पास करने के लिए जाते हैं, और जब जांच कराते हैं तो नॉर्मल रिपोर्ट आती है। तो ये क्या वजह हो सकती है, और क्या कुछ सावधानी रखें कि ये स्थिति से मुक्ति मिले उन्हें?
1: राइट सो पहले तो रूटीन इन्वेस्टिगेशंस करके जानना जरूरी रहता है कि डायबिटीज जैसी बीमारी नहीं है या कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं है, और ज्यादा यूरिन ब्लैडर में रहती नहीं है, ये पहले हम देखते हैं।
0: जी
1: दूसरी बात, लाइफस्टाइल, जैसे आप लेट डिनर लेंगे,
0: जी
1: रात तक पानी पीते रहेंगे, सो फिर वो ज्यादा यूरिन जमा होके वो बार बार जाने की इच्छा बनी रहती है, क्योंकि एक समय में पूरी यूरिन खाली नहीं होती है। तीसरी बात है कि कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के कारण भी, जो हार्मोनल किडनी चेंजेस होने के कारण किडनी ज्यादा यूरिन रात को बनाती है।
0: ओ

0: कॉमनेस्ट प्रॉब्लम टुडे इज डायबिटीज, क्योंकि डायबिटीज के कारण जब शुगर यूरिन में से जाती है उनको भी इन्फेक्शन की शक्यता बहुत बढ़ जाती है। सो ये चीजें कंट्रोल करना बहुत जरूरी है।
1: जी
0: देर आर यंग लेडीज जो आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी ऑल्सो उनको इन्फेक्शन होने की टेंडेंसी रहती है।
1: जी
0: सो आई थिंक गायनेकोलॉजिस्ट को मिलके या यूरोलॉजिस्ट को मिलके किस लाइफस्टाइल चेंजेस पहले चेंज करके अगर इन्फेक्शन के इंसिडेंस
1: लक्षण
0: कम
1: है
0: हो जाए वो पहले कोशिश करनी है।
1: जी
0: फिर तपास करके ऐसे कोई प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हो गए तो उनको ट्रीट करना जरूरी है। और थर्ड, फिर जरूरत पड़ी तो दवाइयों से ये सिम्टम्स हम कंट्रोल कर सकते हैं।
1: जी
0: वेरी रेयरली हमारे देश में ट्यूबरकुलोसिस या
1: जी
0: कभी कभी कैंसर जैसी बीमारियों भी कभी ये सिम्टम्स के साथ पेश होती है, इसीलिए प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन कर लेना जरूरी है,
1: जी
0: क्योंकि उनसे कारण भी ब्लैडर में इरिटेशन होने से बार बार यूरिन जाने की उनको टेंडेंसी रहती है।
1: जी जी
0: कुछ कंडीशन जैसे हम पेनफुल ब्लैडर सिंड्रोम कहते हैं, जो बेसिकली नर्व्स और मसल्स के स्पैजम्स के कारण नर्व्स पे प्रेशर आने से उसकी असर से भी लेडीज को बार बार जाने की टेंडेंसी होती है, पेन होता है, तो ये काफी चीजों से ये फ्रीक्वेंसी अर्जेंसी के प्रॉब्लम हो सकते हैं। बट ज्यादा करके कोई सीरियस प्रॉब्लम नहीं रहते हैं, कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से और कुछ प्राइमरी मेडिकेशन से काफी लोगों को राहत मिल जाती है। अवेयरनेस इज इम्पॉर्टेंट, और
1: जी
0: काफी लेडीज तकलीफ सह लेती है कि कहाँ किसी को हम इसके बारे में बताएं,
1: जी
0: ये
1: जी
0: गलत बात है। आजकल इतने ऑप्शंस मिल रहे हैं कि इससे ये जो प्रॉब्लम है उसे कंट्रोल करना अभी आसान हुआ है।
1: बिल्कुल। अपने श्रोताओं को बता दें, विविध भारती से यह कार्यक्रम सेहतनामा, और आज हम बात कर रहे हैं डॉक्टर उमेश ओझा से, जो कि एक मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट हैं और बड़े ही जानकार डॉक्टर हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक गाना सुनते हैं हम।
0: जरूर,
1: कौन सा गाना सुनवाएं?
0: मुझे लगता है अरिजीत सिंह का नैना जो दंगल मूवी में है
1: जी
0: बहुत अच्छा गाना है, और
1: जी
0: वहां इमोशंस भी बहुत अच्छे, फादर डॉटर के रिलेशनशिप के बारे में बताया है, वो गाना अच्छा रहेगा।
1: जी सुनते हैं यही गाना अरिजीत सिंह की आवाज में।
2: झूठ

0: डॉक्टर साहब, गाने से पहले जो चर्चा हो रही थी वो यूरिन पर हो रही थी, जो एक कॉमन प्रॉब्लम है। आप चर्चा कर रहे थे कि महिलाओं में ये प्रॉब्लम अलग होती है, पुरुषों में अलग भी होती है, और एक कॉमन प्रॉब्लम है महिलाओं के पीरियड्स के दौरान उन्हें शायद यूरिन की समस्या से ज्यादा उन्हें जूझना पड़ता है, और एक है प्रेगनेंसी के दौरान। तो इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए कि किस तरह से बचाव कर सकते हैं या क्या एहतियात बरत सकते हैं। क्या ये नॉर्मल है या कुछ लोगों को ही होता है?
1: सबको होता है ऐसा नहीं है, कुछ लोगों को जरूर ये तकलीफ देती है, स्पेशली आगे बताए से फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिन, ये कुछ हार्मोन चेंजेस के कारण ये सिम्टम्स बढ़ते हैं और इन्फेक्शन की शक्यता रहती है, क्योंकि प्रेगनेंसी के समय भी इतने बॉडी चेंजेस और हार्मोन चेंजेस होते हैं कि कभी कभी इसके कारण ये तकलीफ हो सकती है। दूसरी बात, कुछ प्रॉब्लम्स महिलाओं में पहले रहते हैं लेकिन प्रेगनेंसी के समय तपास करने से पता चलता है कि उनको स्टोन है या दूसरी कुछ तकलीफ है, ये भी कारण से कभी कभी प्रॉब्लम बढ़ते हैं, बट बेसिकली दिस आर बिकॉज ऑफ द हार्मोनल चेंजेस कि उनको ये तकलीफें होती है। अगर इन्फेक्शन होता है तो उस समय सावधानी रखना बहुत जरूरी है, स्पेशली प्रेगनेंसी में,
0: जी
1: और स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इन्फेक्शन ट्रीट करना बहुत महत्व का हो जाता है,
0: जी
1: क्योंकि अल्टीमेटली हमें ये देखना है कि उसके असर बच्चों पे न पड़े, और उस समय दवाइयां ऐसे यूज करनी पड़ती कि जिसके आड़ असर उस मासूम बच्चा जो डेवलप हो रहा है उसके ऊपर नहीं होनी चाहिए।
0: जी और थोड़ी देर पहले आपने जिक्र किया था कि इन्फेक्शन का एक बड़ा कारण है रिलेशन आपस में, तो इन्फेक्शन के दौरान क्या ये स्थिति ठीक रहती है? तो ये भी हमारे श्रोताओं को बताइए।
1: वो अवॉइड करना जरूरी है, और अगर बार बार ऐसे इन्फेक्शन हो रहा है तो हस्बैंड और वाइफ दोनों की जांच करनी जरूरी है,
0: जी
1: क्योंकि कभी कभी कहां से वो ट्रांसमिट होता है वो बताना मुश्किल हो जाता है।
0: जी
1: ये महत्व की बात है कि दोनों की व्यवस्थित जांच होनी चाहिए, और उस हिसाब से ट्रीटमेंट से ये प्रॉब्लम काफी सॉल्व हो जाते हैं।
0: जी इस बारे में बहुत सारी गलतफहमियां भी है कई बार आजकल, जब न्यू कपल खास तौर से, और हमने सुना है कई कपल एक दूसरे पर ब्लेम करते हैं कि ये तुम्हारी वजह से इन्फेक्शन हो रहा है, वो तुम्हारी वजह से।
1: ये बहुत अच्छी बात आपने बताया कि ये सही नहीं है,
0: जी
1: हर समय पार्टनर्स के कारण ही इन्फेक्शन होता है वैसा नहीं है।
0: जी
1: हर पेशेंट, वेदर इज मेन और वुमन, उनके खुद के कारणों से भी इन्फेक्शन हो सकता है।
0: जी
1: दूसरी बात है, हर इन्फेक्शन कंटेजियस है ऐसा भी नहीं है।
0: जी
1: आई थिंक द बेस्ट थिंग इज कि मेडिकल एडवाइस लेके ये
0: जी
1: जानना जरूरी है कि किस कारण से इन्फेक्शन हो रहा है, और किसी को ब्लेम करने का कोई मतलब नहीं है।
0: जी बिल्कुल
1: अल्टीमेटली सेक्सुअल लाइफ आल्सो इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड हेल्दी हैप्पी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट।
0: जी
1: कभी कभी इस सोच से, इस डाउट से इट इफेक्ट्स द सेक्सुअल एक्टिविटी आल्सो,
0: बिल्कुल
1: ये भी होना नहीं चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली यंग कपल या फॉर एनी बडी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ इज इंपॉर्टेंट। ये बेहतर है कि आप डॉक्टर से बात करें, अगर जरूरत तो व्यवस्थित जांच करें, और इफ एवरीथिंग इज ऑल राइट उसके लिए क्या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स आप ले सकते हैं उसके बारे में जरूर हम एडवाइस दे सकते हैं।
0: जी बिल्कुल हमारा ये प्रोग्राम पूरे देश में जाता है, और बहुत सारे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर ऐसी स्थितियां बहुत सारी आती हैं तो

0: आपकी इस बात से हमारे वो श्रोता प्रभावित होंगे, और जब कभी ऐसी स्थिति आती है, इन्फेक्शन जैसी नौबत आती है, तो डॉक्टर की शरण लें और जांच जरूर करवाएं।
1: और पार्टनर को एक दूसरे से भी कम्युनिकेशन करना बहुत जरूरी है।
0: जी
1: कुछ
0: बिल्कुल।
1: चीजें हम मान लेते हैं और उसके बारे में बात करना हम व्यवस्थित नहीं समझते हैं, लेकिन
0: शर्म
1: इससे
0: और
1: शर्म के
0: संकोच।
1: मारे में कि
0: जी
1: ये बात
0: बिल्कुल।
1: हम कैसे करें, लेकिन ये महत्व का है कि ऐसे कुछ रहा तो ये डाउट्स क्लियर करें और फिर मेडिकल एडवाइस ले, ताकि अननेसेसरी इसके कारण रिलेशनशिप डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल। डॉक्टर साहब, आजकल एक बहुत बड़ी समस्या है और वो कॉमन हो रही है, वो है यूरिन लीकेज। कि यूरिन लीकेज होता है और इलाज के बावजूद नहीं ठीक होता है, तो इसका इलाज किस तरह से संभव है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हमारे श्रोताओं को दीजिए।
1: जरूर, लीकेज के अलग अलग प्रकार रहते हैं। कुछ है जिसे हम अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं, मतलब नॉर्मली लीकेज नहीं होता, लेकिन एक बार इच्छा हुई फिर कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है।
0: ओके।
1: ये कुछ जो जिसे हम ओवर एक्टिव ब्लैडर कहते हैं उसके कारण होता है, और उसके कारण जैसे मैंने पहले बताया, बेसिक इन्वेस्टिगेशन करके अगर यूरिनरी ट्रैक नॉर्मल है तो दवाइयों से और लाइफस्टाइल चेंजेस से उसे हम जरूर कंट्रोल कर सकते हैं।
0: जी
1: दूसरा जिसे हम स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस कहते हैं,
0: ओके।
1: कि जहां पेल्विक फ्लोर मसल्स की वीकनेस के कारण ये कंट्रोल करना डिफिकल्ट हो जाता है, ताकि जब भी इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है वो मसल्स वीक होने से यूरिन कंट्रोल जो होता है वो वीक हो जाता है, यूरिन लीक हो जाता है,
0: ओहो।
1: ज्यादा करके प्रेगनेंसी के बाद में, ज्यादा करके वहां स्नायु पे कुछ और ऑपरेशन हुआ, या कभी कभी एजिंग के हिसाब से ये सब मसल्स वीक होने से जो कंट्रोल मैकेनिज्म है वो चाहिए, इतना प्रेशर से जब भी खांसी आती है या जोर से हंसना आता है वो यूरिन कंट्रोल नहीं कर सकते हैं।
0: ओ
1: इसके लिए कभी कभी एक्सरसाइजेस और फिर जरूरत पड़ी तो ऑपरेशन करके वो जो स्नायु को कैसे टाइट करना या
0: जी
1: जो यूरिनरी पैसेज है उसका एंगल चेंज करना महत्व का हो जाता है, ताकि एब्डोमिनल प्रेशर स्ट्रेट ट्रांसमिट होके यूरिन लीक न हो जाए।
0: जी
1: ये चीजें पहले हम हमेशा कुछ लाइफस्टाइल चेंजेस से कोशिश करते हैं, जरूरत पड़ी तो दवाई से कोशिश करते हैं, और फिर ऑफ कोर्स जरूरत पड़ी तो इस प्रकार के सर्जिकल प्रोसीजर से वो रास्ता थोड़ा टाइट करके, ताकि वो प्रेशर कंट्रोल करने में इजी पड़ता है और लीकेज कम हो जाता है।
0: जी दोस्तों, सेहतनामा कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे मुंबई के जाने माने यूरोलॉजिस्ट उमेश ओझा से रेडियो सखी ममता सिंह की बातचीत। आज आप सुन रहे थे इस बातचीत का पहला भाग, इसका दूसरा भाग आपको सुनवाएंगे अगले हफ्ते। चलने से पहले आपको बता दें, इस कार्यक्रम में रिकॉर्डिंग इंजीनियर HR पाटले, विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान,

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। तुथे कार्यक्रम रंग तरंग।

रंग तरंग कार्यक्रम में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं मंजू द्विवेदी। सबसे पहले आपकी आशा इस एल्बम का गाना आशा भोसले की आवाज में, बोल मजरू सुल्तानपुरी के।

रंग तरंग कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरी हरन और लेस्ली लेविस की आवाजें। लेस्ली लेविस और मुनव्वर मासूम का लिखा हुआ गाना, लेस्ली लेविस और हरी हरन का संगीत एल्बम आत्मा।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए, कौन कहता है।
5: जगजीत सिंह और चित्रा सिंह की आवाजों में ये गजल, शब्दकार साहिर होशियारपुरी, संगीत जगजीत सिंह का, एल्बम दिल भी तू जान भी तू।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से कार्यक्रम जारी है रंग तरंग। अलीशाज लव नोट्स इस एल्बम का गाना, अलीशा की आवाज, नितिन रायकवार के बोल, संगीत है संदीप चौटा का।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर। चांदनी इस एल्बम का गाना वनिता सिंह की आवाज, देव कोहली के बोल, संगीत उत्तम सिंह का।

एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

आज के रंग तरंग कार्यक्रम की अगली और अंतिम पेशकश तलत अजीज की आवाज, शब्दकार आनंद बख्शी, संगीत समीर का, एल्बम खूबसूरत।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में वर्ष 2028-29 के कार्यकाल के लिए चुनाव अभियान शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री डॉ जयशंकर ने न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में भारत की उम्मीदवारी पेश करते हुए शांति दृष्टिकोण का अनावरण किया। विदेश मंत्री ने कहा कि मौजूदा वैश्विक परिस्थितियों में संयुक्त राष्ट्र की भूमिका पहले से अधिक महत्वपूर्ण हो गई है।
1: शांति रक्षा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण माध्यम रही है। भारत ने इस जिम्मेदारी के निर्वहन में हमेशा अग्रणी भूमिका निभाई है। अब तक भारत ने विश्व भर में लगभग 50 शांति मिशनों में लगभग 3 लाख शांति रक्षकों की तैनाती की है।

0: वर्तमान में भारत के 4,300 शांति रक्षक 11 सक्रिय शांति मिशनों में से 10 मिशनों में अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
1: अक्रॉस 10 ऑफ द 11 एक्टिव मिशंस।
2: भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुए स्पीड बोट हादसे में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि ये शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन सिटी से मुंबई लाए गए। वियतनाम में नाव दुर्घटना में जान गंवाने वाले आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास ने हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने कहा है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इस 4 दिवसीय कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं। इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। अमेरिका की सेना के सेंट्रल कमांड ने कहा कि उसने अबू मूसा, बंदर अब्बास, बुशहर, चाहबार, जास्क और कोनारक के आसपास के इलाकों में हमला कर ईरानी तटीय रक्षा प्रणालियों, मिसाइल और ड्रोन ठिकानों तथा उनकी नौसैनिक क्षमताओं को निशाना बनाया है। ईरान ने बहरीन, जॉर्डन और जलरमरु मध्य से गुजर रहे संयुक्त अरब अमीरात से जुड़े 2 टैंकरों को निशाना बनाया। इसमें एक नाविक की मौत हो गई और 8 अन्य घायल हो गए। संयुक्त अरब अमीरात के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि टैंकरों पर हुए इस हमले में एक भारतीय नागरिक की मौत हुई है और 6 भारतीय तथा 2 यूक्रेनी नागरिक घायल हुए हैं। इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमरीका होर्मुस जलडमरु मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरु मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमेरिका के दावे को खारिज कर दिया है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक के एक म्यूजिक बार में लगी भीषण आग में मरने वालों की संख्या 30 हो गई है। अधिकारियों के अनुसार 70 से अधिक लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिनमें 24 की हालत गंभीर है। पुलिस आग लगने के कारणों और बार में सुरक्षा नियमों की जांच कर रही है। घरेलू शेयर बाजार में सेंसेक्स 356 अंक गिरकर 77,272 पर और निफ्टी 87 अंक घटकर 24,125 पर कारोबार कर रहा था। इंग्लैंड के लिलेशॉर नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर में अंडर 21 महिला हॉकी श्रृंखला में आज भारतीय टीम का सामना बेल्जियम से होगा। भारत के इंग्लैंड दौरे का यह अंतिम मैच है। भारत ने पिछले मैच में इंग्लैंड को 2-0 से हराया था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत कार्यक्रम यादों की महफिल। इस कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवाएंगे संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने। पहला जो गीत है ये अनपढ़ फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज में, राजा मेहंदी अली खां के बोल।

नजर मिल जाने से दिल से मिलेगा दीवाना कोई दिल का आज लुटाए।

टुकड़े से जुल्फ जरा सर कहूंगा, मुखड़े से जुल्फ जरा सर कहूंगा, सुलझेगा प्यार उलझ मैं जाऊंगा, पाके दिहाई बहुत बचताऊंगा, ऐसा सुकून कहाँ फिर पाऊंगा, और नहीं है ठिकाना कोई दिल का, आज लुटाएगा खजाना कोई दिल का।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बद्दू।
1: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
0: एक और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: कहाँ जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए
5: संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए हुए गाने हम आपको सुनवा रहे हैं आज के यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। गाने अभी और भी सुनवाना बाकी है, कार्यक्रम में समय हो गया है एक अंतराल का।

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: ये है कजांची फिल्म का गाना आशा भोसले की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल।

यादों की महफिल इस कार्यक्रम में अब आपको सुनवाते हैं मन्ना डे की आवाज में देख कबीरा रोया इस फिल्म का गाना। गीत को लिखा है राजेंद्र कृष्ण ने, धुन बनाई है मदन मोहन ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।

लता मंगेशकर की आवाज में कैफी आजमी का लिखा हुआ ये गाना आपने सुना, संगीत मदन मोहन का, फिल्म का नाम हीर रांझा। और अब आपको सुनवाते हैं हंसते जख्म इस फिल्म का गाना, एक बार फिर आवाज लता मंगेशकर की, बोल कैफी आजमी के।

संगीतकार मदन मोहन के संगीत से सजे गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। लैला मजनू फिल्म का गाना आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में। सहे लुधियानवी के बोल हैं।

अब आपको सुनवाने जा रहे हैं अदालत फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी, आशा भोंसले और साथियों की आवाजों में गीतकार राजेंद्र कृष्ण।

संगीतकार मदन मोहन के संगीतबद्ध किए गाने आप सुन रहे हैं आज यादों की महफिल इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना लता मंगेशकर की आवाज, राजेंद्र कृष्ण के बोल, फिल्म का नाम भाई भाई।

दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुरीला सफर इस कार्यक्रम में। आज के इस कार्यक्रम को लेकर मैं उपस्थित हूं मंजू द्विवेदी। आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर जो इबारत हमने पोस्ट की है, वो सबसे पहले आपको पढ़ के सुना देते हैं कि संगीत की अनेक विधाएं होती है। संगीत गजल के रूप में भी है और कव्वाली के रूप में भी। कई गीत शास्त्रीय संगीत पर आधारित होते हैं। जब पसंद की बात हो तो सबके अपने ख्याल हैं। संगीत की दुनिया ही कुछ ऐसी है कि उसके बिना दिल नहीं लगता। संगीत के प्रति दिल में ऐसे अरमान, ऐसी दीवानगी कि सारी सारी रात उनकी याद सताती है। जब संगीत की शैली मधुर हो और कोमल हो, संयोजन सरल हो और भारतीय वाद्य यंत्रों का विशिष्ट प्रयोग हो, तो गीत भावपूर्ण रूप में निकलता है। संगीत की कहां कोई सीमाएं होती है, पर खासियत इस बात में है कि उनकी मौलिकता और मधुरता बनी रहे। संगीत के दीवानों की निगाहों को न कारवां की तलाश होती है, ना वे उस बरसात की रात को जिंदगी भर भूल पाते हैं जब उन्होंने गरज कर सावन आते देखा। पसंदीदा संगीत कानों में पड़ते ही ख्याल आता है, जो बात तुझ में है किसी और में नहीं। बताइए कौन से हैं आज के गीत? ये आज विविध भारती के फेसबुक पेज पर हमने इबारत पोस्ट की, आप लोगों ने इसे पढ़ा और बहुत सारी बातें आपने लिख करके भेजी संगीत के बारे में। जी हाँ, आज दो महान संगीतकारों की याद का दिन है, संगीतकार मदन मोहन और संगीतकार रोशन। मदन मोहन के गीत तो हमने आपको यादों की महफिल इस कार्यक्रम में सुनवाए हैं। आज इस कार्यक्रम में, यानी सुरीला सफर कार्यक्रम में, संगीतकार रोशन के संगीत को हम याद करेंगे। एक हमारे साथी ने यह बात लिखी है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं, बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुने कानों में घुलती है, तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों के झरोखों से जीवंत हो उठती है। संगीत की कोई सरहद नहीं होती, यह तो आत्मा की वो बेबाक आवाज है जो हर दीवाने के दिल को सीधे छू कर हौले से कह जाती है कि जो बात इस सुरमई एहसास में है, वो कायनात की किसी और चीज में नहीं। एक साथी की बात है कि कोलाहल से भरे जीवन में संगीत से बेहतर शायद ही कोई और विकल्प हो। संगीत सिर्फ सात सुरों में बंधा नहीं होता। संगीत में दुखी से दुखी व्यक्ति को भी प्रसन्न करने की सामर्थ्य होती है। किसी के लिए संगीत का मतलब स्वयं को सुकून देना होता है और कोई अपनी प्रसन्नता की अभिव्यक्ति संगीत द्वारा करता है। प्रेमियों के लिए तो संगीत प्रेम की भाषा के व्याकरण जैसा है। अच्छा संगीत बेचैनी कम करता है। घंटों काम कर रहे व्यक्ति का कुछ देर अच्छा संगीत सुनना उसकी रचनात्मक कार्य क्षमता को बढ़ा सकता है। बहुत सारी बातें हैं संगीत के बारे में कहने के लिए। आप रोशन के संगीत के बारे में भी हमें लिख सकते हैं। चलिए पहला गाना सुनते हैं कार्यक्रम का, वल्ला क्या बात है, इस फिल्म का गाना। जी हाँ, कुछ संगीतकार या बल्कि संगीत के बारे में ही हम कह सकते हैं, जब अच्छा संगीत हम सुनते हैं तो मन से यही बात तो निकलती है, वल्ला क्या बात है। मोहम्मद रफी और आशा भोसले की आवाजें, प्रेम धवन का लिखा हुआ ये गाना है। कौन से दो कलाकारों पर फिल्माया गया है ये आप हमें बता सकते हैं?

शम्मी कपूर और बीना रॉय पर फिल्माया गया ये गाना, क्या बात है। आप चाहे कितने ही परेशान हो, काम का कितना भी बोझ हो, या किसी और बात का मन में कोई उदासी हो, कोई टेंशन हो, कुछ इस तरह के गाने जब हम सुन लेते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम किस बात से परेशान थे। यही तो संगीत का जादू होता है। एक हमारे साथी ने ये बात लिखी कि सुरों की अनमोल साधना, लाइव ऑर्केस्ट्रा का वो सुनहरा दौर, आज जहां कंप्यूटर से संगीत बनता है वहीं पुराने दौर का फिल्मी संगीत एक अद्भुत साधना था। 1950 से 80 के दशक में एक एक गाने की रिकॉर्डिंग के लिए स्टूडियो में 60 से 150 असली वाद्य यंत्र, वादक और गायक एक साथ लाइव बैठते थे। वहां कोई रीटेक या एडिटिंग की गुंजाइश नहीं होती थी। अगर आखिर सेकेंड पर भी एक वायलिन गलत बजा तो पूरा गाना शुरू से रिकॉर्ड करना पड़ता था। जब इतने सारे ओरिजिनल वाद्य एक साथ गूंजते थे तो संगीत में एक जीवंत इंसानी रूह समा जाती थी। यही कारण है कि विविध भारती पर बजने वाले ये सदाबहार तराने आज भी सीधे हमारे दिल को छू जाते हैं। एक साथी की ये बात है कि संगीत सिर्फ एक कला नहीं बल्कि दिल की धड़कन और रूह की एक मुकम्मल दास्तान है। गजल की तड़प, कव्वाली का जुनून और शास्त्रीय सुरों की सादगी मिलकर एक ऐसा जादुई एहसास जगाते हैं जहां वक्त ठहर सा जाता है। जब रात के सन्नाटे में भारतीय साजों की कोमल धुनें कानों में घुलती है तो गुजरी हुई मोहब्बत और सावन की वो पहली बरसात यादों में समा जाती है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आरती फिल्म का गाना आपके लिए लेकर आए हैं मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर की आवाजें। मजरू सुल्तानपुरी के बोल हैं और ये गाना प्रदीप कुमार और मीना कुमारी पर फिल्माया गया है।

एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं संगीत के बारे में, कि कोई ऐसी आप कोई घटना अगर आपको याद आ रही हो जब आप बहुत परेशान थे और आपको लग रहा था कि ये समय, ये परिस्थितियां कैसे कटेंगी, कैसे बदलेंगी, क्या किया जाएगा, लेकिन कोई गुनगुना रहा था एक मधुर संगीत, या रेडियो पर कोई ऐसा मधुर गीत बज रहा था और आप भूल गए कि आपको क्या करना है या किस वजह से आप परेशान हैं, ऐसी कोई परिस्थिति आपको याद आती है तो वो आप हमें बता सकते हैं, या कौन सी ऐसी परिस्थितियां होती है जब अनायास ही आपके मुंह से एक अच्छा सा कोई गीत आप गुनगुनाने लगते हैं या उस गीत के शब्द आपके मुंह से निकल पड़ते हैं, इस बात का जिक्र आप हमसे कर सकते हैं।

संगीत की सबसे बड़ी खूबी यही है कि यह बिना कुछ कहे भी बहुत कुछ कह जाता है। कभी किसी गजल में अपना अक्स मिल जाता है, कभी किसी धुन में बचपन, और कभी कोई पुराना गीत बरसों पुरानी याद को फिर से मुस्कुरा देता है। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखती है। और एक साथी लिख रहे हैं कि संगीत हमारे जीवन से जुड़ा हुआ है, जो बच्चों के लिए माँ की लोरी और देवी देवताओं के लिए भजन और शादी विवाह जैसे अवसर पर संगीत संध्या में हम गीत संगीत के माध्यम से इन अवसर को और भी रंगीन बनाते हैं। एक साथी लिख रहे हैं कि

संगीत कला का विशुद्ध तय रूप है, इसलिए वह सौंदर्य को सबसे उच्चतम रूप में प्रकट करता है। सावन के भीगे दिन हो या गर्मी की जलती दोपहर, एक संगीत ही है जो दिल को नरम नरम एहसास करा के जीवन में रस घोल देता है। जब भी हकीकत के गर्म थपेड़ों से ऊब होने लगती है, जिंदगी संगीत में अपना सुकून खोज लेती है। समय के साथ बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन आज भी गीत सुनना सबसे सुखद और सबसे मनोरम लगता है। सांसों की लय और धड़कन की ताल पर जब तक जिंदगी तराना सुनाती रहेगी, गीतों के सुर मन के तार छेड़ते रहेंगे, जब तक ये पूरी कायनात सुरीली बनी रहेगी। धन्यवाद आपका। चलिए, चित्रलेखा फिल्म का गाना, लता जी की आवाज, साहिल लुधियानवी के बोल, रोशन का संगीत।

क्या कहना, ऐसे गीत जब हम सुनते हैं तो उलझा हुआ मन भी सुलझ जाता है अनायासी, इसका हमें आभास भी नहीं होता और ऐसा हो जाता है। एक हमारे साथी की ये बात है कि मुझे पुराने गाने इतने मधुर लगते हैं और संगीत इतना मीठा कि पूछो मत, मैं ऐसी खो जाती हूँ कि आगे पीछे की मुझे कोई खबर ही नहीं रहती। हाँ, संगीत के प्रति दीवानगी तो होती, लेकिन ऐसी भी दीवानगी नहीं कि कुछ खबर ना हो, उसका भी आप ध्यान रखिए। एक साथी हमारी लिख रही है कि उम्र छोटी थी, शादी करके दूर चली आई, सारा भरा पूरा संयुक्त तो परिवार साथ रहता था, पर मुझे अपने मम्मी पापा की बहुत याद आती थी। उस पर मेरा जन्मदिन पड़ा और मुझे किसी ने भी विश नहीं किया। मैं तो बहुत दुखी हुई और चुपचाप रोती रही। उस समय तो मुझे लगा कि कोई बहुत ही बड़ा गम मिला है मुझे, लेकिन रेडियो पर गाना बज रहा था, समझौता गमों से कर लो, और तब मन को चैन आया। एक साथी की ये बात कि जब भी परेशानी होती तो भगवान के मंदिर में जो भजन गा रहे होते हैं या भजन बज रहे होते हैं तो बहुत सुकून मिलता है, वहीं रुक कर हमारा भी भजन गाने का मन बहुत करता है। और एक साथी लिखते हैं कि

हमारे जीवन में संगीत हर क्षण व्याप्त है, यहाँ तक कि हम रोते भी हैं तो सुरों में रोते हैं और गम हमसे दूर भाग जाता है। एक साथी की ये बात की है कि हमारी कॉलोनी में एक बांसुरी वाले भैया बांसुरी बेचने निकलते हैं, उनकी बांसुरी सुनकर हम तो अपना काम वाम छोड़कर बस सुनने लगते हैं जब तक वो दूर नहीं चले जाते। और एक साथी ने ये बात लिखी है कि संगीत हमारे जीवन का एक हिस्सा है। बचपन में माँ लोरी सुनाती है, स्कूल में हम प्रार्थना करते हैं, कविताएं ऊंचे स्वर में गाकर आनंद लेते हैं, जवानी में हम प्यार भरे गीत सुनते हैं, रेडियो के साथ गाते हैं, फिर रियाज न होने के कारण आवाज में संगीत नहीं रहता। मराठी में इसे कंठ फूटने कहते हैं, मतलब आवाज में वो सुर वो लय तान नहीं होती, फिर भी हम मन ही मन कुछ गाकर अपना दिल बहलाते हैं, बुढ़ापे में भी कुछ यादगार गीत गाते हैं, भजन करते हैं, इस तरह संगीत हमारे जीवन का हिस्सा बना रहता है। धन्यवाद आप सभी श्रोताओं का। और अब बावरे नैन इस फिल्म का गाना आपको सुनवा रहे हैं, गीता दत्त और मुकेश की आवाज है इसमें, और संगीत आपको पता ही है रोशन का, राज कपूर और विजय लक्ष्मी पर फिल्माया गया ये गाना है। लिखा किसने है ये आप हमें बताइए।

मल्हार फिल्म का गाना आपने सुना, इंदिवर का लिखा हुआ ये गाना है। एक साथी हमारे लिखते हैं कि गरजते बरसते जब सावन आता है तब बारिश की बूंदे भी एक ताल में बरसती है, जिससे एक अनोखा संगीत पैदा होता है जो प्रकृति हमारे लिए लेकर आती है। ये संगीत हमारे मन के साथ साथ धरती की प्यास भी बुझाता है। इसके प्रभाव से धरती झूमते गाते हुए अपना श्रृंगार करते हुए हरी भरी हो जाती है। एक साथी लिख रहे हैं कि मुझे संगीत की रुचि तब से हुई जब हमारे शहर छत्रपति संभाजी नगर में एक बगीचे में एक बड़ा सा रेडियो लगता था। उस पर श्रीलंका ब्रॉडकास्टिंग में बिना का गीतमाला चल रही थी, तब हम वहां सुनने जाया करते थे और यहीं से संगीत सुनने की आदत हमें लग गई। और एक साथी की ये बात कि खाना न मिले चलेगा पर गीत जरूर होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात गीतों के साथ साथ विविध भारती के साथ काम करने में भी उत्साह बना रहता है। संगीत के बिना तो हमारे हाथ चलते ही नहीं है, और संगीत हमारा सबसे प्यारा सा साथी है जो बस हमें खुशी ही देता है, हमसे कुछ नहीं मांगता। और एक साथी ये भी लिखते हैं कि संगीत तो ऐसी विद्या है जो हंसा देती है, रुला भी देती है, यहाँ तक जख्मों को भर भी देती है। 2017 की बात है जब मेरा बचपन का दोस्त शांति यात्रा में चला गया। उसके साथ हमारा अच्छा घरूंबा है। उसके जाने के बाद मैं यूं ही बैठा हुआ था, तभी एक गाना रेडियो पर बजा, तू इस तरह से मेरी जिंदगी में शामिल है, जिसे सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। आज भी उनकी याद, उनकी दोनों बच्चियां मुझसे दूर नहीं है और वही प्रेम है जो बचपन में था। और एक साथी ने ये बात लिखी कि बात तब की है जब मैं अपना ग्रेजुएशन बीएससी कंप्लीट कर चुका था। सगाई और शादी से पहले की बात है, मुझे निर्णय लेना था कि कौन सा करियर चुनूं। कंफ्यूज था, उस दिन का समय था, मैं लेटा हुआ था, रेडियो पर विविध भारती मुंबई पर गाने बज रहे थे, तभी गाइड फिल्म का गीत बजा, आज फिर जीने की तमन्ना है। ये गीत सुनकर मेरे में उमंग सी जागी और मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे जॉब करना है। और इस तरह की बहुत सारी बातें हमारे साथियों ने लिखी है। एक साथी की, जब मेरी शादी हुई तो पापा ने मुझे बरसात की रात और ताजमहल फिल्म के गानों की कैसेट लाके दी, तो मैं साथ ले आई और बहुत सुनती थी, और आज भी वो गाने मैंने संभाल कर रखे हैं। बहुत धन्यवाद आपका। चलिए ताजमहल फिल्म का गाना अब आपको सुनवाते हैं, आवाज मोहम्मद रफी की, साहिल लुधियानवी के बोल।

संगीत एक अंतहीन समंदर है जो कभी लोकगीतों की मिट्टी की खुशबू में महकता है तो कभी सूफी कलामों की रूहानी तान में गूंजता है। हर दिल की धड़कन का अपना एक सुर होता है और यही वजह है कि उदास शामों से लेकर जश्न की रातों तक संगीत हमारे वजूद का हिस्सा बन जाता है। धुनों का ये जादू जब सर चढ़कर बोलता है तो इंसानी जज्बात दीवानगी की हदें पार कर जाते हैं, चैन खो जाता है और बस सुरों के साए में सुकून मिलता है। जबकि किसी रचना में बांसुरी की सुरीली गूंज और सितार की झनकार घुली हो और उसके बोल सीधे रूह को छूते हो तो वो संगीत सदाबहार बन जाता है। ये एक बात हमारे साथी ने लिखी है और एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत प्रेमी के लिए संगीत सिर्फ मनोरंजन नहीं होता, वो सांस की तरह होता है। जब दुनिया समझ नहीं पाती तब एक राग समझ लेता है। खुशी में सुर ताल नचाते भी हैं और दर्द में वही सुर कंधा बन जाते हैं। नींद न आए तो लोरी बन जाता है और टूट जाए तो दिल को मरहम का भी काम करता है। संगीत प्रेमी के लिए हर सुबह एक नया आलाप और हर रात एक अधूरी बंदिश। वो भीड़ में अकेला होकर भी संगीत के साथ कभी अकेला नहीं पड़ता। शहर में हो या खेत खलिहान में, काम के बीच में हो या फुर्सत के पलों में, कहीं न कहीं एक तान उसके भीतर बसती रहती है। किसी अपने की याद आए तो पुराना गाना जख्म कुरेद देता है और वही गाना अगले पल जीने की वजह भी बन जाता है। हार के बाद हौसला चाहिए तो संगीत हौसला बनता है और जीत के बाद जश्न चाहिए तो संगीत जश्न बन जाता है। क्या बात है, बहुत खूबसूरत बातें आपने लिखी है। और चलिए इसी के साथ एक और खूबसूरत गाना नौबहार इस फिल्म से लता जी की आवाज़।

संगीत का प्रभाव इतना प्रभावी होता है कि इंसान तो झूमते ही हैं, परंतु रिसर्च में ये देखा गया है कि पेड़ पौधे भी संगीत के कारण झूमते हैं। ये बात हमारे एक श्रोता ने लिखी है। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि संगीत मानव जीवन का अभिन्न अंग है, जो भावना व्यक्त करने, मानसिक तनाव दूर करने और आत्मा को सुकून प्रदान करने वाला सबसे सशक्त माध्यम है, जो सिर्फ हमारा मनोरंजन नहीं करता, स्वास्थ्य को बेहतर बनाने वाला साबित होता है। जब भी ये दिल उदास होता है, जाने कौन आसपास होता है, वो देश की सुरीली धड़कन विविध भारती ही होती है, जिसे सुनते हुए दिल को इतना सुकून मिलता है जिसकी कोई सीमा नहीं होती। ये बातें हमारे साथियों ने लिख के भेजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक साथी की ये बात कि हिंदी सिनेमा में कव्वाली को लोकप्रिय बनाने और इसका शानदार तरीके से फिल्मीकरण करने के लिए महान संगीतकार रोशन लाल नागरथ को कव्वाली का उस्ताद या बादशाह कहा जाता है। उन्होंने बरसात की रात जैसी फिल्मों में अमर कव्वालियों की रचना रची है। एक साथी ने यह बात लिखी है कि सिनेमा में कव्वाली केवल मनोरंजन का साधन नहीं, बल्कि भावनाओं, तड़प और संवाद को बयां करने का एक सशक्त माध्यम रही है। हिंदी फिल्मों में कव्वालियों का गुरु रोशन साहब ना तो कारवां की तलाश है, साहिल लुधियानवी द्वारा लिखित है। रोशन द्वारा रचित यह कव्वाली कव्वाली के इतिहास में मील का पत्थर साबित हुई है। चलिए यही सुनते हैं, बरसात की रात।

ये सुनते हुए हमारे एक साथी ने थोड़ा जोर देकर इस बात को कहा है कि ये कव्वाली पूरी बजने दीजिएगा, बीच में बंद मत कीजिएगा। बहुत अच्छा लगा आपकी ये बात जान करके। आप इतने अधिकार के साथ ये बात बोलते हैं, आपका प्यार है विविध भारती के प्रति, इसके लिए आप ऐसा कहते हैं। हमने आपको पूरी ये कव्वाली सुनवा दी है। एक हमारे साथी लिख रहे हैं कि मुझे लगता है कि जब मैं खाना पकाते समय संगीत सुनती हूँ तब भोजन बहुत स्वादिष्ट बनता है, और कब भोजन तैयार हो जाता है ये भी पता नहीं चलता। एक साथी ये भी लिख रहे हैं कि जिंदगी के सफर में कई बार ऐसा मोड़ आता है जब इंसान खुद को बिल्कुल अकेला पाता है, ऐसे में संगीत एक ऐसे दोस्त की तरह आकर हाथ थाम लेता है, जब बिना कुछ पूछे बिना कोई निर्णय लिए बस साथ निभाता है। दोस्तों, आपके बहुत सारे कमेंट्स हैं जो मैं पढ़ना भी चाहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा भी लगता है कि ज्यादा अगर मैं पढ़ूंगी तो शायद गाना सुनने का वक्त कम हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा विराम देते हुए एक गाना हम सुन लेते हैं। अजी बस शुक्रिया, इस फिल्म का गाना लता मंगेशकर की आवाज।

एक साथी ने ये बात लिखी है कि ये बताना चाहूंगा कि हम सभी विविध भारती मुंबई के श्रोता बहुत ही खुशनसीब हैं कि संगीत के अनेक विधाओं जैसे कि गजल, कव्वाली, शास्त्रीय संगीत, भक्ति संगीत, फिल्म संगीत और तो और युवाओं के लिए भी नए गीत संगीत के रस का आनंद वर्षों से रोजाना सुबह सवेरे से देर रात तक रेडियो के माध्यम से कर्णप्रिय संगीत का रसपान कर रहे हैं। महान संगीतकार रोशन जी को हम कैसे भूल सकते हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। चलिए, दिल ही तो है इस फिल्म का गाना मन्ना डे की आवाज है।

दिल ही तो है इस फिल्म का ये गाना आपने सुना। एक साथी हमारी लिख रहे हैं कि गीत और संगीत मेरी अंतरात्मा में बसा हुआ है। आपके सबके मैसेज पढ़े तो ऐसा लगता है कि ये तो मेरे ही मन की आवाज है। सबके अंदर संगीत का वही स्थान है जो मेरे दिल में बसता है। और एक

साथी ने ये बात और लिखी है। वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, कौन सी बात पढ़ें कौन सी बात छोड़ दें ये बात समझ में नहीं आ रही है, लेकिन हमें लगता है कि यहाँ पर एक गीत हम आपको सुनवाना चाहेंगे। पूरा गीत तो नहीं सुनवा पाएंगे, उस गाने की झलक आपको सुनवा देते हैं। नई उम्र की नई फसल, इस फिल्म के गाने की ये झलक।

नई उम्र की नई फसल इस फिल्म के गाने की एक झलक हमने आपको सुनवाई, मोहम्मद रफी की आवाज, नीरज के बोल और एक शानदार संगीत रोशन साहब का। आज हमने उनको याद किया, रोशन के संगीत को हमने याद किया और आपके बहुत सारी बातें जो आपने लिख करके भेजी उन्हें हमने पढ़ने की कोशिश की। आप सभी का बहुत धन्यवाद। आज का ये कार्यक्रम आपने सुना मेरे यानी मंजू द्विवेदी के साथ।

दोस्तों, इस दुनिया में सभी को इंतजार होता है बारिश का। इंसानों से लेकर जानवरों तक, पेड़ पौधे और सूखी जमीन, और जमीन के अंदर पनपने वाले जीव भी। बारिश के आते ही सभी को राहत मिलती है।

हालांकि खेत खलिहानों और गांवों में बरसात का मौसम खुशियां लेकर ही आता है, शहरों में रहने वाले कभी कभार लगातार होती बारिश से असुविधा महसूस करते हैं। इन मुश्किलों को अनदेखा करके पानी के महत्व को समझना जरूरी है। इसीलिए पानी बचाना जरूरी है, क्योंकि जल ही जीवन है।

शहरों में रहने वाले लोग पानी का किफायती इस्तेमाल करके अपने आसपास के जल स्रोतों का स्तर बनाए रख सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले अपने आसपास की ऊंची जमीन से या पहाड़ों से बहते पानी को छोटे छोटे बांध बनाकर रोक लें तो भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है, और तब शहर हो या गांव, पानी की समस्या को लेकर किसी की आंख में पानी नहीं होगा।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनक लता। भारत ने होर्मुस जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नागरिकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। फीफा विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात टेक्सस में फ्रांस का मुकाबला स्पेन से। और क्रिकेट में भारत आज शाम बर्मिंघम में इंग्लैंड के साथ पहला एक दिवसीय मैच खेलेगा। अब समाचार विस्तार से। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे दो जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की है।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड
0: ने दिल्ली स्थित ईरान दूतावास के उप मिशन प्रमुख को तलब किया और इन हमलों के खिलाफ कड़ा विरोध दर्ज कराया। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एमटी अलबहिया पर सवार 12 भारतीय नागरिकों में से एक की मृत्यु हो गई है और एक घायल हो गया है। एमटी मुंबासा पर सवार 18 भारतीय नागरिकों में से 9 घायल हुए हैं, जिनमें से 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मंत्रालय ने मृतक के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। संयुक्त अरब अमीरात में भारतीय मिशन और दूतावास स्थिति पर कड़ी नजर रख रहे हैं और प्रभावित भारतीय नाविकों को हर संभव सहायता सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों के संपर्क में है। भारत ने नाविकों को निशाना बनाकर किए गए हमलों की कड़ी निंदा की है। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य से निर्बाध और सुरक्षित नौवहन

0: रुझान बाधित हुआ है। भारत ने पश्चिम एशियाई क्षेत्र में हमलों की दोबारा शुरुआत और शत्रुता बढ़ने पर गहरी चिंता व्यक्त की है। साथ ही क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता के लिए हिंसा को तत्काल रोकने और संवाद तथा कूटनीति की ओर लौटने का आह्वान किया है। बयान में कहा गया है कि क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों और नागरिक बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना बंद होना चाहिए ताकि क्षेत्र के अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में निर्बाध नौवहन और व्यापार को जल्द से जल्द बहाल किया जा सके। अमेरिका ने लगातार तीसरी रात ईरान पर हवाई हमले किए हैं, इससे दोनों देशों के बीच तनाव फिर से बढ़ गया है। एक रिपोर्ट।
1: इससे पहले कल राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की थी कि अमेरिका होर्मुज जलडमरू मध्य में ईरानी जहाजों पर फिर से नाकेबंदी लागू करेगा और समुद्री सुरक्षा की लागत को पूरा करने के लिए इस रणनीतिक जलमार्ग से गुजरने वाले माल पर 20% का शुल्क लगाएगा। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ये नाकेबंदी केवल ईरानी जहाजों और ईरान के साथ व्यापार करने वाले जहाजों पर लागू होगी। वहीं दूसरी ओर ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य पर अपने अधिकार का दावा किया है और अमरीका के दावे को खारिज किया है। केंद्रीय मुख्यालय के प्रवक्ता ब्रिगेडियर जनरल इब्राहिम जोल्फाघरी ने कहा कि ईरान किसी भी परिस्थिति में अमेरिका को होर्मुज जलडमरू मध्य के प्रबंधन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं देगा। समाचार कक्ष से वैष्णवी।
0: भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया है और फलस्तीन तथा इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया है। विदेश मंत्रालय में सचिव श्री प्रिया रंगनाथन ने कहा है कि भारत फलस्तीनी लोगों का लंबे समय से सहयोगी रहा है। उन्होंने कल ब्रसल्स में फलस्तीन डोनर ग्रुप की दूसरी मंत्रिस्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने फलस्तीन के लोगों के लिए भारत की ओर से दी जा रही विकास संबंधी मदद पर जोर दिया। सुश्री रंगनाथन ने बताया कि भारत की परियोजनाएं जरूरतों पर आधारित हैं और मुख्य रूप से स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, क्षमता निर्माण और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित है। उन्होंने पुनर्वास, स्वास्थ्य, शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर केंद्रित कई नई परियोजनाओं की भी घोषणा की। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारतीय निर्यात को ब्रिटेन के बाजार में 99% शून्य शुल्क की सुविधा मिलेगी। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: भारत ब्रिटेन व्यापार समझौता लागू होने से भारत का वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ाव और मजबूत होगा। यह समझौता आम लोगों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिससे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। इस समझौते के लागू होने के बाद भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख उत्पादों पर लगने वाले शुल्क से पूरी तरह राहत मिलेगी। इस समय प्रोसेस्ड फूड पर 70%, समुद्री उत्पादों पर 21%, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो पार्ट्स पर 18%, चमड़ा और फुटवेयर उत्पादों पर 16% और कपड़ा तथा परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाले शुल्क अब शून्य हो जाएंगे। इससे ब्रिटेन के बाजारों में भारतीय उत्पाद की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। वहीं किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों के साथ साथ विनिर्माण क्षेत्र के लिए भी नए अवसर पैदा होंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। इसके अलावा सूचना प्रौद्योगिकी और आईटी आधारित सेवाओं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इंजीनियरिंग, दूरसंचार और परामर्श जैसे क्षेत्रों से जुड़े भारतीय सेवा प्रदाताओं को भी ब्रिटेन के बाजार में बेहतर अवसर मिलेंगे। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: संसदीय कार्य और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू कतर के अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के निधन पर भारत सरकार और जनता की ओर से शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए आज दोहा के लिए रवाना हुए। विदेश मंत्रालय ने कहा कि अमीर ने आधुनिक कतर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे भारत के घनिष्ठ मित्र थे। मंत्रालय ने कहा कि भारत कतर संबंधों को मजबूत करने में उनके अमूल्य योगदान के लिए अमीर को हमेशा याद किया जाएगा। वियतनाम के फो क्वोक द्वीप के पास हुई नाव दुर्घटना में मारे गए 15 भारतीय पर्यटकों के पार्थिव शरीर स्वदेश लाए गए हैं। वियतनाम में भारतीय दूतावास ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि शव वियतनाम एयरलाइंस के जरिए हो ची मिन्ह सिटी से मुंबई लाए गए। इनमें से आंध्र प्रदेश के 3 पर्यटकों के पार्थिव शरीर आज सुबह हैदराबाद लाए गए। आंध्र प्रदेश के लघु और मध्यम उद्यम मंत्री के श्रीनिवास हैदराबाद हवाई अड्डे पर मौजूद थे। राज्य सरकार ने बताया है कि शोक संतप्त परिवारों को सभी आवश्यक सहायता प्रदान की गई है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsoneair.gov.in पर भी उपलब्ध है।

0: दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने आज इस कार्यक्रम का उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि विभिन्न देशों के साथ किए गए मुक्त व्यापार समझौते भी वस्त्र क्षेत्र को लाभ पहुंचा रहे हैं।
1: दुनिया के 130 देशों से ऊपर बायर आए, अभी मोदी जी ने 56 देशों से FTA हो रहा, कुछ से हो गया है, कुछ से बाकी। ये बताता है कि आज 60,000 से ऊपर एग्जीबिटर आए, और सबसे बड़ी खासियत है इस एक्सपो में 90% MSME आए। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस बार जो बायर आ रहे हैं ये सारे दुनिया के रिकॉर्ड को तोड़ेंगे।
0: उद्घाटन समारोह में वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा और विभिन्न राज्यों के वस्त्र मंत्रियों ने भी भाग लिया। ये कार्यक्रम कपड़ा, फैशन, प्रौद्योगिकी, नवाचार, निवेश और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भारत के बढ़ते वैश्विक नेतृत्व को प्रदर्शित कर रहा है। इस कार्यक्रम में 14 देशों के अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। भारतीय रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं को जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि उनके मंत्रालय ने निर्माण क्षेत्र सहित कई सुधार किए हैं। श्री वैष्णव ने कहा कि अब कंटेनरों में उर्वरकों का परिवहन किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा।
2: अगर हम फ्लाई ऐश का एक अच्छा ट्रांसपोर्टेशन मैकेनिज्म बना सकते हैं तो देन वी कैन यूज फ्लाई ऐश इन इकोनॉमिक वे, सीमेंट में, प्रोडक्शन में यूज कर सकते हैं, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन या किसी दूसरे कंस्ट्रक्शन में हम काम में ले सकते हैं। अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होने से उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म, फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है।
0: भारतीय जनता पार्टी ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर साल 2020 में उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान खुफिया विभाग के अधिकारी अंकित शर्मा की हत्या के दोषियों का समर्थन करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली में संवाददाताओं को संबोधित करते हुए भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता गौरव भाटिया ने दिल्ली की एक अदालत द्वारा आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन और चार अन्य लोगों को अंकित शर्मा की हत्या का दोषी ठहराए जाने के फैसले का स्वागत किया। श्री भाटिया ने पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल पर वोट बैंक की राजनीति के लिए हुसैन का बचाव करने का आरोप लगाया।
3: बहुत जिम्मेदारी और प्रमुखता से एक बात मैं उठाना चाहूंगा, जजमेंट अभी पूरा पब्लिक डोमेन में नहीं है, लेकिन जो टिप्पणियां आई हैं सामने उनके आधार पे और जो घटिया राजनीति आपके कन्वीनर अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी और राहुल गांधी ने करी है, वो आपके समक्ष न्यायालय की टिप्पणियों के बाद जरूर रखूंगा। इसमें जो प्रमुख अभियुक्त था ताहिर हुसैन, जब ये जघन्य अपराध हुआ तब वो आम आदमी पार्टी का पार्षद था निर्वाचित, अरविंद केजरीवाल का खासम खास।
0: जम्मू कश्मीर में जम्मू के एक स्पेशल राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण न्यायालय ने पाकिस्तान में मौजूद प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा के चीफ हाफिज सईद के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है। ये वारंट पहलगाम आतंकी हमले की चल रही जांच से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है। यह आदेश पहलगाम आतंकी हमले के मामले में NIA द्वारा सईद के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दाखिल करने के दो दिन बाद आया। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस वीडियो का खंडन किया है जिसमें दावा किया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में एक कार्यक्रम के दौरान कहा था कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोमांस उत्पादक देश है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा फर्जी है और प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
4: पुरी के श्री जगन्नाथ

0: मंदिर में आज भगवान जगन्नाथ, भगवान बलभद्र और देवी सुभद्रा के पवित्र नव यौवन दर्शन का आयोजन हो रहा है। मंदिर प्रशासन, जिला अधिकारी और पुलिस सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर रहे हैं, साथ ही भीड़ और ट्रैफिक का व्यवस्थित ढंग से सुनियंत्रित किया जा रहा है ताकि दर्शन आसानी से और बिना किसी परेशानी की हो सके। नव यौवन दर्शन के साथ ही रथ यात्रा से पहले की रस्में पूरी हो रही है। अब गुरुवार को गहरे धार्मिक उत्साह और भव्य समारोह के साथ विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा शुरू होगी। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन यायार ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @YayarNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने आज बिहार और उड़ीसा में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। कल तक उत्तर पूर्वी भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में भी ऐसी स्थिति रहने की संभावना है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी इस महीने की 19 तारीख तक हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है। फीफा विश्व कप में आज रात टेक्सास के डलास स्टेडियम में पहला सेमीफाइनल फ्रांस और स्पेन के बीच खेला जाएगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 12:30 बजे शुरू होगा। भारत और इंग्लैंड के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय क्रिकेट श्रृंखला का पहला मैच आज बर्मिंघम के एस्बेस्टन मैदान पर खेला जाएगा। मैच भारतीय समय के अनुसार दोपहर बाद 3:30 बजे शुरू होगा। भारतीय टीम में बल्लेबाज विराट कोहली, रोहित शर्मा और तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की वापसी हुई है। श्रृंखला का दूसरा मैच कार्डिफ में बृहस्पतिवार और तीसरा तथा अंतिम मैच 19 जुलाई को लॉर्ड्स में खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में 30 भारतीय नाविकों को ले जा रहे 2 जहाजों पर हुए हमले की कड़ी निंदा की। कहा, अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में हिंसा स्वतंत्र और सुरक्षित नौवहन को बाधित कर रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सदस्यता के लिए फलस्तीन के दावे का समर्थन किया। फलस्तीन और इसराइल के बीच संघर्ष को समाप्त करने के लिए द्विराष्ट्र समाधान के लिए समर्थन फिर से दोहराया। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज से नई दिल्ली में शुरू। बिहार और उड़ीसा में आज मूसलाधार बारिश की संभावना। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: उमंग CIET प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: नमस्कार श्रोताओ, उमंग कार्यक्रम में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार। आइए सुनते हैं एक सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी ने। लिखते हैं,
2: आज के युग में हमारा सबसे बड़ा उत्तरदायित्व है पर्यावरण की रक्षा, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य को सुरक्षित कर सकता है।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके सुंदर संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो पहला संदेश हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिंपल देवांगन जी का।
2: बड़ा बम चौक मध्य प्रदेश से ममता मार्कंडेय और संजय मार्कंडेय और साथ साथ बेबी किट्टू।
3: और ऑक्सीजन पार्क राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने और अर्चना ताई गोंडाने।
2: करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से योगेश ठाकुर जी।
3: और छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए। ये भी जानिए कि अगली कड़ी में आप सबका स्वागत है। आशा है आपको पिछली जानकारियाँ अवश्य पसंद आई होंगी। हमने बात की थी
2: पेड़ पौधों की रहस्यमयी दुनिया के बारे में और उनके बारे में कई रोचक बातों को जाना था। अजीत जी, अब ये भी जानने की यात्रा में आगे चलते हैं, तो क्यों ना आज बात की जाए किताबों की।
3: विमलेश जी, आपने तो सचमुच मेरे मुंह की बात ही छीन ली। यही तो मैं भी कहने वाला था
2: जी।
3: मुझे एक बेहद प्रसिद्ध कविता की पंक्तियाँ याद आ रही है।
2: तो फिर देर कैसी, सुनाइए ना कविता।
3: हाँ, कविता इस प्रकार से है, किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की।
2: क्या बात है, इसको आगे मैं कहती हूँ। आज की, कल की, एक एक पल की, ये सफदर हाशमी जी की प्रसिद्ध कविता।

0: है। तो श्रोताओं, आज करते हैं बात किताबों के रोचक इतिहास की।
1: जी हाँ श्रोताओ, किताबों का इतिहास या पुस्तकों का इतिहास मानव सभ्यता के इतिहास जितना ही रोचक है।
0: जी
1: आज जो हम सुंदर रंग बिरंगी पुस्तकें हाथ में लेते हैं ना, इसके पीछे लगभग 5,000 वर्षों की लंबी यात्रा है। तो विमलेश जी, कहाँ से करें शुरुआत?
0: अजीत जी, इसके लिए हमें दुनिया की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक मेसोपोटामिया की सभ्यता में चलना होगा। ये तो बता दें श्रोताओं को कि मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ थी।
1: जी, मेसोपोटामिया की सभ्यता आज के इराक में विकसित हुई थी। श्रोताओं को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब पुस्तकें मेसोपोटामिया में मिट्टी की थी।
0: मिट्टी की, और वो भी पुस्तकें, ये तो बड़ी विचित्र बात है।
1: जी, बात तो विचित्र है ही। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया की पहली पुस्तकें वास्तव में आज की तरह की पुस्तकें नहीं थी, बल्कि वे मिट्टी की तख्तियां थीं।
0: जी,
1: तो विमलेश जी, अब आपकी बारी है ये बताने की कि मेसोपोटामिया की सभ्यता के निवासियों को क्या कहते थे और वे मिट्टी की पट्टियों पर लिखते कैसे थे।
0: जी, मेसोपोटामिया के निवासियों को सुमेरी या सुमेरियन कहते थे। ये लोग मिट्टी को गीला करके उसे आज की स्लेट की तरह एक आकार देते थे, और फिर उस पर धातु की कील, या हम कह सकते हैं नुकीली कलम से लिखते थे।
1: जी,
0: इसलिए मिट्टी की पट्टियों पर लिखे वर्णों को पुरातत्वविदों ने कीलाक्षर भी कहा है।
1: जी, कीलाक्षर यानी कील से लिखे हुए अक्षर।
0: जी,
1: ये तो सचमुच बड़ा रोचक होता जा रहा है। लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न मेरे मन में है, और वो ये है कि क्या ये मिट्टी की पट्टियाँ टिकाऊ होती थीं?
0: बिल्कुल होती थीं। पहले उन लिखी गई उन पट्टियों को वो धूप में सुखाते थे, फिर उन्हें भट्टी में पकाया जाता था। ऐसी मिट्टी की पट्टियाँ हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह जाती थीं।
1: श्रोताओं, जरा कल्पना कीजिए कि यदि आपको 300 पृष्ठों की एक पुस्तक पढ़नी हो
0: जी,
1: और हर एक पृष्ठ एक भारी मिट्टी की पट्टिया हो, तो
0: ऐसी कल्पना करना ही हमें अपने आप में आज से 5,000 वर्ष के पूर्व के काल में ले चलता है। अजीत जी, ये जानना भी बहुत रोचक रहेगा कि सुमेरी लोग इन मिट्टी की पट्टियाओं या क्ले टेबलेट्स पर लिखते क्या थे, जरा श्रोताओं को भी तो बता दें।
1: जी विमलेश जी, ये जानना तो सच में बहुत ही रोचक होगा, क्योंकि इससे हमें उनकी सभ्यता और इतिहास की बहुमूल्य जानकारी मिलेगी। मजेदार बात यह है कि उनके द्वारा लिखी गई हजारों मिट्टी की तख्तियाँ आज भी पढ़ी जा सकती हैं।
0: जी,
1: इनमें वे लिखते थे व्यापार का हिसाब किताब, राजकीय अभिलेख, सुमेरी कानून और संहिताएं,
0: युद्धों और विजयों का विवरण, और राजाओं की उपलब्धियां, कहानियां और कविताएं। उन्होंने महाकाव्य भी लिखे, जिनमें एपिक ऑफ गिलगामेश बहुत प्रसिद्ध है।
1: श्रोताओं, आपको बता दें कि कीलाक्षरों को क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है, और 19वीं शताब्दी में ही विद्वानों ने कीलाक्षरों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। श्रोताओं, आपको बता दें कि दुनिया भर के संग्रहालयों में ये कीलाक्षर प्रतियां सुरक्षित हैं, और वे आज भी हमें आज से 5,000 वर्ष पूर्व पुरानी सभ्यता के लोगों के सामाजिक, शैक्षिक और दैनिक जीवन की जानकारी देती हैं।
0: जी, तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की जानकारी, और अब सुनिए आज का प्रश्न, जिसका उत्तर छिपा हुआ है आज की ही जानकारी में। प्रश्न है,
1: आज का प्रश्न है, कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
0: कीलाक्षर किसे कहते हैं और ये किस सभ्यता की देन है।
1: तो हमारे IVRS नंबर यानी 8800440559 पर, और हमारे ईमेल यानी audio@cit.nic.in पर आप हमारे प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं।
0: इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIT NCERT को फॉलो कर सकते हैं। आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम।
1: तो आज के कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है अरावली की कहानी।
0: कक्षा 7 की समाज का अध्ययन की पाठ्य पुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम में अरावली पर्वतमाला के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई है, और बताया गया है कि उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों को रेगिस्तान बनने से रोकने में इसकी कितनी महत्वपूर्ण भूमिका है।
2: नमस्कार दोस्तों, रेडियो श्रृंखला पर्वत भी बोलते हैं मैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूं सचिन, और मेरे साथ हैं कुछ नन्हे मुन्ने साथी, यानी रिद्धि, रिदित, सोहम, नव्या और मनन, जो आज बहुत ही खुश हैं, क्योंकि उन्हें जानी मानी भूगर्भ शास्त्री डॉक्टर सुचिता ने आज अपने रेडियो शो में बुलाया है। तो आइए चलते हैं सीधे रेडियो प्रसारण केंद्र में, जहां शुरू होने वाला है हमारा रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो बच्चों, डॉक्टर सुचिता के साथ साथ आप सबका भी हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत है।
3: धन्यवाद।
4: धन्यवाद सर।
2: तो करते हैं शुरुआत। डॉक्टर सुचिता।

0: हम आज बात करने जा रहे हैं पर्वतों की, तो सबसे पहला सवाल तो यही उठता है कि पर्वत आखिर हैं क्या, यानी हम उन्हें परिभाषित कैसे करें।
1: वाह, बहुत अच्छा सवाल। देखिए, पर्वत वे स्थल रूप हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं। उन्हें खड़ी ढलान यानी चढ़ाई और संकरे शिखरों यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
2: यस मैम।
1: आह, क्या बात है
3: मैम।
1: हाँ बेटी,
3: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
1: बिल्कुल कहा।
3: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
1: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है

0: यानी चोटियों से पहचाना जा सकता है। कुछ पर्वत अपनी अधिक ऊंचाई के कारण हिम से ढके होते हैं। समझ में आया बच्चों?
1: यस मैम।
0: वाह क्या बात है
2: मैम।
0: हाँ बेटी।
2: आपने कहा कि पर्वत वे हैं जो आसपास की भूमि से कुछ अधिक ऊंचे होते हैं।
0: बिल्कुल कहा।
2: हमारे गांव में भी कुछ ऐसे पथरीले स्थान हैं जो भूमि से थोड़े ऊंचे होते हैं, क्या उन्हें भी पर्वत कहेंगे?
0: नहीं रिद्धि, उन्हें पर्वत नहीं कहेंगे। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि कम ऊंचाई वाले ऊंचे ऐसे स्थान जहाँ कम खड़ी ढलाने और गोल आकार की चोटियाँ होती है, उन्हें पता है क्या बोलते हैं? पहाड़ी कहते हैं।
2: जी पहाड़ी।
3: अरे वाह। अच्छा लेकिन सुचिता जी, हमारे श्रोता बड़ी उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा कर रहे हैं ये जानने की कि आज हम भला किस पर्वत श्रृंखला के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं।
0: जी सचिन जी, आज हम चर्चा करेंगे अरावली पर्वत श्रृंखला के बारे में। बच्चों जानना है ना इसके बारे में?
1: यस मैम।
0: देखो, ऐसा माना जाता है कि अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है।
1: अच्छा।
0: पता है बच्चों, ये उत्तर पश्चिम भारत में स्थित है और देश की जो भौगोलिक संरचना है ना, इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है ये।
1: अच्छा।
0: तो बच्चों, यदि अरावली पर्वत श्रृंखला की बनावट को ध्यान से देखें, तो इसमें मध्यम दर्जे की बहुत सी ऊंची ऊंची चोटियां हैं, जो ऊपर से देखने पर वो आरी की तरह दिखती हैं।
1: अच्छा, मैंने भी देखा है।
3: आरा और वली यानि अरावली। अरे वाह सुचिता जी, ये तो बड़ी रोचक बात बताई है आपने।
4: मैम अरावली के बारे में कुछ और बताइए ना।
0: बिल्कुल जरूर बताएंगे। आप जानते हैं इसके विस्तार के बारे में। इसकी कुल लंबाई है लगभग 800 किलोमीटर और चौड़ाई है 10 से 100 किलोमीटर।
5: लंबाई 800 किलोमीटर, ये कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है?
0: सोहम, ये गुजरात से शुरू होकर दिल्ली तक पहुँचती है और बीच में आने वाले राज्य हैं राजस्थान और हरियाणा। बताओ कौन कौन से?
1: गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और फिर दिल्ली।
3: बहुत अच्छे, तो एक बार जोरदार तालियां सबके लिए। ये हुई ना बात।
0: अब तुम्हें इसे हमेशा याद रखना है, ठीक है?
5: जी मैम,
2: हमेशा याद रखेंगे।
3: तो सुचिता जी, अब हमें ये भी तो बताइए कि गुजरात राज्य में अरावली पर्वत श्रृंखला आखिर शुरू कहाँ से होती है, क्योंकि हम देखें तो गुजरात राज्य तो खासा बड़ा है।
0: जी सचिन, बिल्कुल सही कहा आपने। अरावली पर्वत श्रृंखला गुजरात राज्य के बनासकांठा जिले में अंबाजी नामक स्थान से शुरू होती है। एक बात और, माना जाता है कि ये पहले संभवतः हिमालय से भी ऊंची रही होगी, लेकिन अत्यधिक अपरदन के कारण धीरे धीरे इसकी ऊंचाई कम होती चली गई।
5: अपरदन? ये अपरदन क्या होता है?
0: वाह मनन, अपरदन यानी मिट्टी का कटाव। अंग्रेजी में इसे पता है क्या बोलते हैं? सॉइल इरोजन। बिल्कुल ठीक। अरावली पर्वत श्रृंखला की प्रमुख चोटियां हैं गुरु शिखर, जो राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। सेर और अचलगढ़ भी इसकी प्रमुख चोटियां हैं, जो राजस्थान में ही हैं।
3: सुचिता जी, अब हम ये भी जानना चाहेंगे कि आखिर अरावली पर्वत श्रृंखला का हमारे यहाँ जलवायु और पर्यावरण पर भला क्या असर पड़ता है?
0: सचिन जी, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बच्चों जानना चाहोगे ना?
1: जी मैम।
2: यस मैम।
0: अब अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान के थार मरुभूमि को पूर्व की ओर फैलने से रोकती है, यानी यदि अरावली न हो तो राजस्थान के थार का रेगिस्तान दिल्ली और यहाँ तक कि गंगा के मैदानों तक भी फैल सकता है।
2: यानी ये हमारी पहरेदार हुई।
0: हाँ रिद्धि, बिल्कुल सही है। अरावली श्रृंखला उत्तर भारत को रेगिस्तान बनने से रोकती है। इतना ही नहीं, ये अपने क्षेत्र में भूजल का स्तर भी बनाए रखती है।
5: मैम, जैसा कि हम जानते हैं कि पर्वतों से नदियाँ भी निकलती हैं, क्या अरावली से भी नदियाँ निकलती है?
0: सोहम, अरावली पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली जो प्रमुख नदियाँ हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: बनास, साबरमती, लूनी और माही। और हाँ, अरावली पर्वत श्रृंखला बहुत से वन्य जीवों की शरण स्थली है। मैं बताती हूँ, जैसे तेंदुआ, सियार, लोमड़ी।

0: नील गाय, सांभर, चीतल और जंगली सुअर इत्यादि।
1: अरे वाह सुचिता जी, देखिए अब ये तो आपने हमें बताया नदियों के बारे में और आसपास मिलने वाले जीव जंतुओं यानी पशुओं के बारे में, लेकिन अगर पक्षियों की बात करें तो?
0: सचिन जी, पक्षियों में यहाँ मोर, गिद्ध, सारस, चील, तोता, मैना इत्यादि बहुत अधिक पाए जाते हैं। एक और बात, यहाँ बहुत सारे खनिज पदार्थ भी मिलते हैं, जिनमें मुख्य हैं तांबा, जस्ता, सीसा और लोहा। लेकिन एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है।
1: चिंता का विषय है? भला वो क्या?
0: सचिन जी, अब ये पर्वतमाला पर्यावरण के संकट से गुजर रही है।
1: ओह,
0: अब जैसे अच्छा। जंगलों का कटना, पानी के स्रोतों का सूखना और इनके कारण वन्य जीवों का धीरे धीरे विलुप्त होना, इसीलिए अरावली को बचाए रखना बहुत आवश्यक है। तो बच्चों, बचाओगे ना अरावली को?
2: जी मैम।
1: भाई वाह, तो बच्चों कैसी लगी आपको ये सारी जानकारी?
2: बहुत अच्छी लगी।
1: तो साथियों, अब हमारे रेडियो शो पर्वतों की कहानी का आज का ये अंक होता है यहीं समाप्त। तो एक बार फिर से जोरदार तालियां सबके लिए। डॉक्टर सुचिता, सोहम, रिदित, रिद्धि, नव्या और मनन, आप सभी का हमारी श्रोताओं की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे स्टूडियो में आए। तो दोस्तों, इसी तरह से चलता रहेगा हमारा ये रेडियो शो पर्वत भी बोलते हैं। तो अब हम मिलेंगे अगले एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।
2: धन्यवाद सर।
3: धन्यवाद मैम।
4: साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। क्या कार्यक्रम सुनते समय आपके मन में ये प्रश्न आया कि इस पर्वत श्रृंखला का नाम अरावली क्यों पड़ा? तो चलिए हम आपको बता देते हैं। अरावली शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर हुई है, अरा और अवली। अरा का अर्थ है पर्वत की चोटी और अवली का अर्थ है कतार या श्रृंखला। इन दो शब्दों से मिलकर बना शब्द अरावली। तो साथियों, कुल मिलाकर अरावली शब्द का अर्थ है चोटियों की कतार या पर्वत शिखरों की श्रृंखला। ये नाम अरावली पर्वतमाला की भौगोलिक बनावट को दर्शाता है, जो लंबी चोटियों वाली पुरानी पर्वत श्रृंखला है।
1: अब आपके लिए कुछ सोचने और करने को। जरा पता लगाइए कि भारत में कितनी पर्वत श्रृंखलाएं हैं और उनसे भला कौन कौन सी प्रसिद्ध नदियां निकलती हैं और वो कहां जाकर सागर में मिलती हैं, और फिर उन जगहों को भारत के मानचित्र पर अलग अलग रंगों से चिन्हित कीजिए और उनके बारे में संक्षेप में लिखिए।
4: अरावली की कहानी। अभी आप सुन रहे थे एनसीईआरटी की कक्षा 7 की पाठ्य पुस्तक समाज का अध्ययन, भारत और उसके आगे के एक पाठ पर आधारित ये कार्यक्रम। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, कलाकार विनीता ठाकुर और मुनीश शर्मा, बाल कलाकार रिद्धि, नव्या, रिदित, सोहम और मनन, ध्वन्यांकन मंजू कुमारी, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण जगबंधु जाना। यह कार्यक्रम CIET NCERT भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम अरावली की कहानी, और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। कार्यक्रम का शीर्षक है जंगल के साथी।
5: इस कार्यक्रम में पशु पक्षियों की भूमिका के द्वारा ये संदेश दिया गया है कि एकता में ही बल है, बिना किसी आपसी मेलजोल के हम किसी कार्य को पूरा नहीं कर सकते। कार्यक्रम में बताया गया है कि किस प्रकार जंगल के पशु पक्षियों ने मिलजुल कर असंभव से लगने वाले कार्य को पूरा किया।
4: जंगल के साथी।
6: दादी माँ, आज मुझे परियों की कहानी नहीं सुननी। आप रोज रोज परियों की कहानी सुना देते हो, आज तो मुझे जंगल की कहानी सुननी है। मेरा जंगल देखने को बड़ा मन करता है। दादी माँ का सुनाओ भी कहानी, चुप क्यों हो, सुनाओ ना।
7: अरे सुनाती हूँ दीपू, अभी सुनाती हूँ।

हूँ, जरा मिश्री तो खा लूं। अब जरा गला तर हो गया है। लो सुनो,

0: सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो कान लगाकर सुनो सुनो ध्यान लगाकर सुनो सुनो।
1: दादी माँ सुनाओ भी कहानी जल्दी से।
2: हाँ सुनाती हूँ दीपू।
0: एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन, एक हिरन भाई एक हिरन। एक जंगल में रहता था एक हिरन भाई एक हिरन।
2: क्यों जी दीपू कौन रहता था जंगल में?
1: दादी माँ एक हिरन।
2: शाबाश।
0: लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन, लंबे लंबे सींगों वाला एक हिरन भाई एक हिरन।
1: दादी माँ क्या हिरन अकेला था या उसका कोई साथी था? बताओ ना दादी माँ, बताओ ना, बोलो ना दादी माँ।
0: अरे उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उसका कोई साथी नहीं, साथी नहीं भाई, साथी नहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं। उछलता रहता कभी कहीं, कभी कहीं भाई, कभी कहीं।
3: मेरा कोई साथी नहीं, साथी नहीं, साथी नहीं। अब मैं क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं, क्या करूं भाई, क्या करूं।

0: घूमते घूमते थके जोस के पांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव, एक जगह पर बैठ गया वो देख के ठंडी छांव। और दीपू तब देखा उसने एक नन्ना मुन्ना खरगोश। क्या देखा दीपू?
1: एक नन्ना मुन्ना खरगोश।
0: शाबाश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, एक खरगोश भाई एक खरगोश, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, इधर उछलता उधर कूदता, उधर उछलता इधर कूदता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, मस्ती में था गुनगुन गाता, बच्चों के मन को था भाता, हरी हरी वो घास था खाता, हरी हरी वो घास था खाता। क्यों भाई दीपू जी, क्या खाता था वो खरगोश?
1: हरी हरी वो घास था खाता।
0: शाबाश, फिर क्या हुआ? धीरे धीरे धीरे धीरे खरगोश आगे बढ़ा तो क्या देखता है?
1: अरे ये क्या, ये तो हिरन भाई लेटे हैं। क्यों भाई क्यों, हिरन जी क्यों लेटे यूं?

0: उदास हो क्यों? क्या कुछ खोया है तुम्हारा? क्या मम्मी ने है तुमको मारा?
1: ना कुछ खोया है हमारा, ना मम्मी ने हमको मारा, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती, है ना मेरा कोई साथी, यही बात ना मुझको भाती।
0: क्या तुम मेरे साथी बनोगे? मेरे साथ खेलोगे?
2: हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ा मजा आएगा। हम दोनों मिलकर खेलेंगे, घूमेंगे और साथ साथ रहेंगे।

0: दादी माँ दादी माँ, जंगल में तो खरगोश और हिरन बड़े मजे करते होंगे ना, क्या मैं उनके साथ दोस्ती कर सकता हूँ?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं। अब तुम सो जाओ दीपू, बहुत नींद आ रही है मुझे, आगे की कहानी कल सुनाऊंगी।
0: नहीं दादी माँ, मुझे अभी नींद नहीं आ रहा है, आगे सुनाओ ना। क्या हुआ?
1: ओफो, बड़े जिद्दी हो तुम। अच्छा सुनो, जंगल में जब हिरन और खरगोश उछलते कूदते घूम रहे थे ना, तब उन्होंने आकाश में बादल देखे।
0: बादल देखे, फिर दादी माँ?
1: फिर चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। चलते चलते दिखा एक मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। क्या दिखा दीपू?
0: रंग बिरंगा सुंदर मोर दादी माँ।
1: शाबाश। छाई थी घटा घन घोर, नाच रहा था सुंदर मोर। नाच रहा था सुंदर मोर, नाचे मोर भई नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, पंख फैला कर नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। ताता थैया नाचे मोर, ताता थैया नाचे मोर। रंग बिरंगा सुंदर मोर, ताता थैया नाचे मोर। नाचे मोर भई नाचे मोर, रंग बिरंगा सुंदर मोर। और भाई दीपू, फिर मोर को देखकर खरगोश बोला,
2: क्यों भाई क्यों मोर जी, हमसे दोस्ती करोगे?
3: हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं तो साथी ही ढूंढ रहा था।
0: दादी माँ दादी माँ, अब तो तीनों दोस्त बन गए, फिर?
1: फिर? अरे फिर क्या दीपू, अब तो तीनों यानी
0: खरगोश, हिरन और मोर।
1: शाबाश, तो अब ये तीनों जंगल में साथ साथ घूमते, साथ साथ नाचते और साथ साथ गाते, मिलजुल कर रहते।
0: फिर तो दादी माँ तीनों ही गाते होंगे।
1: क्या गाते होंगे रे, क्या गाते होंगे?
0: बन गए हैं साथी, मिलकर रहेंगे हम तुम, मिलकर रहेंगे हम तुम। खुशियाँ बांटेंगे हम तुम, खुशियाँ बांटेंगे हम तुम।
1: अरे तुझे तो बड़ा गाना याद है, अब सो जा, गाते गाते रात हो जाएगी, सो जा।
4: श्रोताओ, अभी आपने

0: सुना कार्यक्रम जंगल के साथी। और अब इसी के साथ हमारा आज का कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम यानी कुसुम लता,
1: जगबंधु,
0: चेतना
1: और मंजू कुमारी जी के साथ विमलेश को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, नमस्कार।

0: सखी सहेली सखी सहेली कार्यक्रम सुनने वाले सभी सखियों और सखाओं को मंदाकिनी जोशी और
1: मेरा यानी चंचल वर्मा का
0: प्यार भरा
1: नमस्कार।
0: कैसी हो चंचल?
1: एकदम अच्छी हूँ। और जब हम इस मंच पर आते हैं, अपने श्रोताओं से बातचीत करते हैं और हमारे आने से पहले ही बहुत सारे कमेंट्स आ चुके होते हैं, उनके संदेश आ चुके होते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो उनको पढ़कर हम और भी अच्छे
0: हो जाते हैं। बिल्कुल, हमें उनका इंतजार रहता है। और वैसे भी आजकल जो डिजिटल का समय है उसमें ये हो गया है कि हमें इंतजार रहता है अपने साथियों का, अपने मित्रों का, अपने दोस्तों का, अपने चाहने वालों के मैसेजेस का, और हम इंतजार करते रहते हैं।
1: बिल्कुल, ये डिजिटल ऐसा माध्यम है कि जिन्हें हम दूर दराज देख भी नहीं पाते, मिल भी नहीं पाते,

0: उनसे संपर्क स्थापित हो पाता है।
1: हाँ, लेकिन डिजिटल की दुनिया में एक जो माइनस पॉइंट है वो क्या है बताओ?
0: यही कि बहुत दिनों तक कई बार हम किसी की सुध भी नहीं लेते हैं, सिर्फ उनसे बस फोन पर ही हालचाल पूछ रहे हैं और बहुत उम्मीद से कोई इंसान जो हमसे मिलने बैठा है।
1: इसके अलावा डिजिटल जो दुनिया हमारी हो गई है ना, उसमें हम अपने घर वालों को भी कई बार भूल जाते हैं चंचल।
0: हाँ,
1: और बाहर हमारे दोस्त होते हैं 5,000, 6,000, 10,000, 20,000 और हम खुश होते हैं, इतराते हैं कि हमारे इतने फेसबुक फ्रेंड्स हैं,
0: हाँ,
1: इतने हमारे लोग जानकार हैं, लेकिन घर में हमारे ही कुछ लोग उपेक्षित कहीं बैठे होते हैं।
0: बिल्कुल सही बात है, आपने बहुत अच्छी बात कही। ये जो एक संख्या है 10, 20, 50 हजार की, जिन्हें हम जानते भी नहीं, शायद हमें उनके नाम भी याद नहीं रहते, उनको लेके अगर हम इतरा रहे हैं और घर के जब हम चार सदस्य बैठे हैं, पता लगा चारों लोग अपने ही मोबाइल में किसी ना किसी से संपर्क में लगे, और वहाँ आप ही संपर्क नहीं है। जो दूर दराज बैठे हैं उनसे तो हम संपर्क बना रहे हैं, लेकिन जो बिल्कुल हमारे साथ बैठा है उनसे संपर्क बिल्कुल कटा हुआ है।
1: बिल्कुल, वो हमारे अपने ही है, हमारे माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, दादा दादी हो सकते हैं, या अन्य कोई रिश्तेदार जिन्हें हमसे बात करने की इच्छा होती हो और चाहते हो कि हम उनसे घुल मिलकर बात करें, लेकिन वो अपनी डिजिटल दुनिया में व्यस्त रहते हैं।
0: तो हमारे साथ ही इस बारे में क्या सोचते हैं, उनके क्या विचार हैं, वो जरूर हमें भेजें, क्योंकि ये चीज रिश्तों की सेहत के लिए अच्छी नहीं है। और बात सेहत की हुई है, हमारे शरीर की सेहत के लिए सबसे जरूरी चीज है हमारा खान पान।
1: हाँ, और सेहतमंद, वो भी सेहतमंद खाना होना। खाने को तो हम दिन भर कुछ ना कुछ खाते रहते
0: जी।
1: हैं, कुछ लोग दिन भर कहते हैं ना चरना, जिसे हम कहते हैं, चरते रहते हैं ना, कभी ये कभी वो कभी ये, लेकिन हम क्या सेहतमंद खा रहे हैं, क्या हमारे शरीर को वो लग रहा है, हमारे शरीर के लिए कितना जरूरी है वो भोजन, इस पर भी बातचीत होनी चाहिए।
0: बिल्कुल, हल्की फुल्की बातें में आज सेहतमंद भोजन को लेकर हम कुछ बात करेंगे। और आज मंगलवार का दिन है, एक उद्यमी महिला यानी कि बिजनेस में जिसने अपना नाम कमाया है, कुछ करके दिखाया है, एक ऐसी महिला की बात होती है। तो आज हम बात करेंगे उपासना टाकू के बारे में।
1: बिल्कुल, और एक और सेगमेंट है हमारा बहुत ही प्यारा
0: जी
1: हम अपने श्रोताओं से ही उनके जवाब मांगते हैं और एक कि उनका इंतजार होता है हमें।
0: और एक छोटी सी वाक्यांश जो होता है उसमें बहुत बड़ी बात कह दी जाती है, यानी कोई लोकोक्ति या मुहावरा।
1: मुंह में राम, बगल में छुरी।
0: तो बिल्कुल हमारे श्रोता समझ गए कि ये है आज का मुहावरा।
1: हाँ।
0: लेकिन बातों का सिलसिला शुरू हो चुका है, क्यों ना गीतों का सिलसिला भी शुरू करें और पहला गीत सुन ले।
1: बिल्कुल, सुनते हैं।

0: तो देखा चंचल कितनी प्यारी बात थी कि सलामे हसरत कबूल कर लो, मेरी मोहब्बत कबूल कर लो।
1: तो
0: मतलब हमारी जिंदगी में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आपसे और हमसे भी कहना चाहते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, स्नेह करते हैं, मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमारी दुनिया कहीं और ही होती है। हम डिजिटल दुनिया में व्यस्त होते हैं और अपने आसपास जो हम हमारे बीच प्यार बांटना चाहता है कहीं उसे इग्नोर करते चले जाते हैं।
1: और ये मोबाइल जो है ये एक ऐसी चीज हमारे हाथ में आ गई है जिसमें पूरी दुनिया सिमट कर रह गई है। तो उस दुनिया के संपर्क में तो है, लेकिन हमारी असली दुनिया यानी हमारे जिनसे हम बहुत प्यार करते हैं बस उस दुनिया से हम दूर होते जा रहे हैं।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और उसी पर आज हम बात करने वाले हैं कि डिजिटल हो गए हैं हमारे रिश्ते भी।
1: तो टेक्नोलॉजी ने जहां एक तरफ मंदाकिनी जी हमें पूरी दुनिया से जोड़ के रखा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ कुछ करीबी लोगों से दूर भी कर रही है ये टेक्नोलॉजी। जितना हम बाहरी दुनिया से जुड़ते जा रहे हैं उतना ही अपने घर, अपने परिवार, अपने मित्रों के साथ कटते भी जा रहे हैं। रिश्तेदार हैं, सहकर्मी हैं, दोस्त हैं, और उनको मैसेज करके खुश होने के चक्कर में जो सामने बैठा है ना उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं, जैसा आपने पहले ही बताया। तो डिजिटल होती है जो दुनिया है, इसके फायदे अगर हैं तो ये ही नुकसान है।
0: हाँ हाँ बिल्कुल। जब पहले जब हमें अगर हम दूर दराज की बातें करें, अपने किसी दोस्त की, रिश्तेदार की या प्रियजन से बात करनी होती थी या हालचाल जानना होता था तो हम चिट्ठी लिखते थे, तार भेजते थे या फिर फोन पर बात किया करते थे या एसटीडी पर जाकर हम जो है वहाँ पर बात किया करते,
1: घंटों लंबी लाइन में लगा करते थे,
0: है ना, लगे रहते थे कि भैया हमारी बात करा दीजिए ना, हमें बहुत जरूरी बात करनी है। लेकिन अब ये काम केवल एक संदेश के जरिए कर लिया जाता है, मैसेज भेज दिया जाता है, और मिलकर बात करना तो अब बहुत दूर की बात हो गई है। अपने मोबाइल पर, लैपटॉप पर, टैबलेट पर या अन्य गैजेट्स को हम हमेशा अपने साथ ही रखना पसंद करते हैं, और यहाँ तक कि सोते समय भी हम इसे सिरहाने पर रखकर ही सोते हैं।
1: बिल्कुल सही कहा।
0: और जब हम बहुत ही फुर्सत में होते हैं तब परिवार के साथ समय बिताने की बजाय हम ऑनलाइन सर्चिंग में ज्यादा मशरूफ रहते हैं।
1: और मंदाकिनी जी, यहाँ तक कि कई बार तो ऐसा भी देखा जाता है ना कि हम अपने किसी काम में लगे हुए हैं और दूसरी तरफ हमारे जो नजरें हैं या हमारे कान हैं वो मोबाइल पर ही बीच बीच में लगे हुए रहते हैं। और बहुत सारी महिलाएं भी ऐसी हैं जब काम तो वो रसोई में कर रही हैं लेकिन उस वक्त भी उनका मोबाइल उनके पास में होता है और वहां भी नजरें उनकी मोबाइल पर होती हैं। और सुबह जब सबसे पहले हमारी आंख खुलती है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं,
0: अपना मोबाइल चेक करते हैं, किसी का मैसेज आया कि नहीं, मोबाइल इतना चुप चुप क्यों है, है ना, ऐसा लगता है,
1: ऐसे हो गए कि इसके बिना हम बिल्कुल अधूरे हो गए, ऐसा लगने लगता है।
0: बिल्कुल सही कहा आपने। और कई बार पता है क्या होता है चंचल, जब हम अपना फोन घर भूल आते हैं ना, मोबाइल ऑफिस आते वक्त या कहीं जाते तो लगता है अरे सारी दुनिया तो हम भूल ही आए।
1: बिल्कुल,
0: हमारा मूड ऑफ हो जाता है, ओहो मैं मोबाइल घर भूल आई, है ना। तो ये ऐसी स्थिति हो गई है हमारी। और डिजिटल होते जा रहे इन रिश्तों में जो आई कांटेक्ट, जैसे किसी से नजर मिलाकर बात करना जैसी स्थितियां जो है कम होती चली जा रही हैं। यानी एक ही कमरे में हम बहुत सारे लोग बैठे होते हैं घर के, लेकिन हमारी सबकी नजरें अपने मोबाइल पर होती है या हम किसी तीसरे को मैसेज कर रहे होते हैं। मोबाइल ने हम सबको ऐसा जकड़ लिया है कि उस पर से नजरें हटाकर सामने वाले की तरफ देखकर हम बात ही नहीं कर पाते हैं। मतलब हम बात तो कर रहे होते हैं लेकिन नजर हमारी अपने मोबाइल पर होती है।
1: बिल्कुल, शारीरिक रूप से हम वहाँ मौजूद हैं लेकिन हम उस वर्चुअल वर्ल्ड में घूम रहे होते हैं।
0: और हमारा पूरा ध्यान, बच्चे भी कई बार बोलते हैं घर में लेकिन ध्यान हमारा, हाँ बेटा बोलो क्या बात है, चलो पढ़ाई करो, बहुत हो गया, ध्यान हमारा मोबाइल पर ही रहता है।
1: तो अब मेरा ध्यान इस तरफ है कि बातचीत को थोड़ा रोक कर गीत सुन ले।
0: चलिए।

0: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक और आ गया।
2: जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां, आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: सुनिए,
5: हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ और हम बात कर रहे थे डिजिटल रिश्तों के बारे में।
6: हाँ, लेकिन चंचल, हमारे एक श्रोता ने बहुत ही प्यारा सा एक संदेश भेजा है। लिखते हैं कि आज फिर आप दोनों सखियों का संगम हो रहा है, जब सुहाने मौसम में इन दिनों मुंबई में चंचल सी हवा बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है।
5: अच्छा?
6: उसी तरह उत्तराखंड में इन दिनों मंदाकिनी नदी भी लबालब पानी से बहकर सभी को सम्मोहित कर रही है। देखिए कितना अच्छा संगम है।
5: यहाँ हमारे नाम को इन्होंने प्रकृति के साथ जोड़कर जो संगम बनाया है, जो तारीफ की है या जो अपने भाव प्रकट किए हैं, ये हमें बड़े अच्छे लगे।
6: जी, ये तारीफ नहीं है, ये इनकी भावनाएं हैं।
5: हाँ।
6: जो वो उन्होंने एक काव्यात्मक तरीके से

0: अपनी बात रखी है ना।
1: और अब बात करते हैं कि डिजिटल रिश्तों के बारे में हमारे श्रोता क्या कहते हैं। तो हमारे श्रोता का कहना है कि मेरे पिताजी अक्सर कहा करते थे, जे वो वेश तेवी वार्ता, यानी इन्होंने अपनी जो लोक भाषा है उसमें लेकर बताया है। इसका मतलब है जो वेश धारण किया हो उनके अनुसार वार्ता यानी कहानी कहनी चाहिए। डिजिटल रिश्तों के लिए भी ये बात बिल्कुल फिट बैठती है। आजकल डिजिटल युग चल रहा है तो उसके हिसाब से हमें भी खुद को ढालना पड़ेगा, उनके साथ चलना पड़ेगा, क्योंकि अब ये आधुनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है। मोबाइल तकनीक ने मीलों की दूरियां मिटा दी हैं, दुनिया को मुट्ठी में यानी मोबाइल में समा लिया है। इतने बड़े फायदे के साथ इस बात का दुख भी है कि घर में पास बैठे हुए आमने सामने बातचीत का चरण कम होता जा रहा है, जिससे वास्तविक भावनात्मक जुड़ाव में कमी आ गई।
0: बिल्कुल, वही एक श्रोता लिखते हैं कि आज के समय में तकनीक ने दूरियों को मिटाकर हमें आपस में जोड़ तो दिया है, लेकिन इसने रिश्तों की गहराई और भावनात्मक जुड़ाव को भी काफी हद तक बदल दिया है। डिजिटल माध्यम से बातचीत आसान हुई है, लेकिन भावनाओं की गर्माहट और सामीप्य धीरे धीरे कम होने लगा है। डिजिटल होते रिश्तों के डिजिटल संचार परिवारों के लिए तो बहुत कारगर नहीं है। हाँ, अलग अलग शहरों या देशों में जो लोग रहते हैं उनके लिए कारगर हो गए हैं। वीडियो कॉल के जरिए, मैसेजेस के जरिए आप दूर रहकर भी लोगों से जुड़ सकते हैं, दैनिक गतिविधियों में शामिल हो सकते हैं। पारंपरिक चिट्ठियों की तुलना में डिजिटल मैसेजिंग बहुत तेज है और तेजी से संदेशों के कारण संवाद का तरीका भी बदल गया है। आजकल आप इमोजीज भेजकर, गिफ्ट्स भेजकर अपनी भावनाएं व्यक्त कर देते हैं। लगातार सोशल मीडिया पर सक्रिय रहने और फोन के अत्यधिक इस्तेमाल से मानसिक थकावट भी हो गई है, चिड़चिड़ापन भी हो गया है। इसलिए हजारों दोस्त हैं हमारे ऑनलाइन, लेकिन वास्तविक दुनिया में हम बिल्कुल अकेले महसूस करते हैं।
1: बिल्कुल सही बात है। और एक जहां ये बहुत सारे रिश्तों की बात कर रहे थे, तो अगर आपके व्यावसायिक रिश्ते हैं तो वहां ये जो डिजिटल युग है ये बहुत काम का है, लेकिन परिवार से हमें ये दूर कर रहा है। वहीं एक अन्य संदेश में जो बात लिखी गई है वो कुछ इस तरह से है कि चैटिंग और वीडियो कॉल में आमने सामने बैठने वाली गर्माहट और गहराई गायब हो गई है। लोग अपनों के साथ मिलकर समय बिताने की बजाय फोन में ज्यादा व्यस्त रहते हैं, जिसे फबिंग कहा जाता है। और सोशल मीडिया के परफेक्ट रिश्तों की दुनिया को देखकर लोग अपने वास्तविक जीवन से असंतुष्ट होने लगे हैं। डिजिटल अफेयर और प्राइवेसी, पार्टनर से छुपाकर सोशल मीडिया पर अंतरंग होना, ये विश्वास को भी कमजोर कर रहा है।
0: बिल्कुल सही कहा। और वहीं एक श्रोता ने लिखा है कि डिजिटल होते रिश्ते डिजिटल लेनदेन के बाद अब ये भी कॉन्सेप्ट मुझे हजम नहीं हो रहा है, जो रूबरू मुलाकात में आमने सामने बैठकर बात करने का जो मजा है वो डिजिटल में कहां। तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, न कि केवल औपचारिक या आभासी बनाकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम संपर्क बनाए रखने का साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
1: इसीलिए ये सारी बातें हम कर रहे हैं आज, और हमारे एक श्रोता के अन्य संदेश को मैं पढ़कर सुना रही हूँ। आज के डिजिटल युग में रिश्तों की परिभाषा और जीने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। तकनीक ने हमें मीलों दूर बैठे लोगों से जोड़ दिया, लेकिन पास बैठे लोगों से भावनात्मक दूरियां बढ़ा दी हैं। मतलब ये एक बात बहुत सारे श्रोताओं ने हमें लिखी है,
0: और सही लिखी है ना, वो बात एक नहीं है, क्योंकि असली मुद्दा यही है कि हम बहुत दूर दराज के लोगों से बातें करने में मशगूल हो गए हैं और हमारे करीब जो बैठा है उन्हें हम उपेक्षित कर दे रहे हैं, तो ये इसका एक सबसे माइनस पॉइंट है।
1: एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि तकनीक का उपयोग रिश्तों को मजबूत बनाने के लिए किया जाए, ना केवल औपचारिक या आभासी बनकर छोड़ दिया जाए। डिजिटल माध्यम से संपर्क बनाए रखने का एक साधन है, लेकिन सच्चे रिश्तों की नींव प्रेम, विश्वास, सम्मान और आमने सामने के संवाद पर ही टिकी होती है।
0: बिल्कुल सही कहा, जैसे कि इस वक्त मैं और चंचल आपस में संवाद कर रहे हैं।
1: और देखिए ना, रिश्तों को डिजिटल बनाना मंदाकिनी जी पूरी तरह से सही भी नहीं है। इसलिए घर में हम कुछ नियम बना सकते हैं ना कि भाई रात्रि का भोजन जब होगा, जब सब अपने अपने कामों से फ्री होकर सब कुछ निपटा कर घर पे आ जाते हैं, तो उस वक्त एक समय बनाइए कि डिनर सब लोग साथ में करेंगे और डिनर के समय मोबाइल कोई भी इस्तेमाल नहीं करेगा। तो और वैसे भी जो छोटे बच्चे हैं उनको भी हम दूर रख सकते हैं, उनके लिए एक समय निर्धारित कर सकते हैं कि आप इस समय ही मोबाइल साथ में लेंगे, क्योंकि जो मोबाइल की अल्ट्रा वायलेट किरणें हैं वो बड़ों को, छोटों को, सभी को नुकसान पहुंचाती हैं, लेकिन छोटे बच्चों के लिए तो खासतौर पर नुकसानदायक है और गर्भवती महिलाओं के लिए भी।
0: बिल्कुल आपने सही कहा। और कितने क्राइम जो आजकल हम देख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे या युवा होते बच्चे जो हैं, लड़के लड़कियां क्राइम कर दे रहे हैं, ये सब 24 घंटे नेट की दुनिया में अपने आप को मशगूल रखने के कारण भी है, क्योंकि आप वो सब देखते हैं जो आपको नहीं देखना चाहिए। और एक वक्त ये था चंचल, जब शाम की चाय के वक्त या रात के भोजन के समय, जैसा अभी आपने कहा, हम सब बैठकर बतियाते थे हमारे पिताजी क्या लाए, हमारी माँ क्या

0: बना रही हैं, इस पर हमें बाकायदा हमारा ध्यान होता था कि आज शाम हमें क्या मिलने वाला है, लेकिन
1: जी
0: अब हमारा ध्यान सारा जो है मोबाइल पर होता है।
1: तो अभी हमारा ध्यान थोड़ा सा हम गीता पर भी ले आए।
0: हाँ बिल्कुल, वो ध्यान तो चला गया है, और सुन भी लिया जाए गीत।

0: तो बड़ा सुंदर गीत था, और इस गीत ने सुरक्षा पंडित की खूबसूरत आवाज भी थी किशोर कुमार के साथ में।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और अब हम अगला सेगमेंट लेते हैं हमारा।
0: बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं सखी विशेष के अंतर्गत जो एक उद्यमी महिला है उपासना टाकू की, जो कि फिनटेक कंपनी मोबिक्विक की सह संस्थापक है और मुख्य वित्तीय अधिकारी भी हैं।
1: हाँ बिल्कुल।
0: और आज हम देख रहे हैं कि फैशन इंडस्ट्री से लेकर तकनीक तक तकरीबन हर इंडस्ट्री में ही महिलाओं ने अपनी जगह बना ली है और देश को वो गौरवान्वित भी कर रही हैं। सफल महिला कारोबारी महिलाओं की लिस्ट में उपासना टाकू का

0: नाम भी बहुत जाना माना नाम है और उपासना उन गिनी चुनी महिला उद्यमियों में से एक हैं जो फिनटेक मार्केट का नेतृत्व करती हैं। वो मोबिक्विक की सह संस्थापक, बोर्ड अध्यक्ष और मुख्य वित्तीय अधिकारी हैं।
1: और फिनटेक का मतलब है फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, या आसान तरीके से समझें तो डिजिटल भुगतान और मनी ट्रांसफर। ये एक ऐसी तकनीक है जो लोगों और व्यवसायों को डिजिटल रूप से वित्तीय सेवाएं प्रदान करने और उनके प्रबंधन में मदद करती है। इसके तहत मोबाइल एप्स, सॉफ्टवेयर और उन्नत एल्गोरिथम का उपयोग करके पारंपरिक बैंकिंग और वित्तीय कार्यों को सरल और तेज बनाया जाता है।
0: और इसके जरिए स्मार्टफोन से एक पल में पैसे भेजे जा सकते हैं या फिर प्राप्त भी किए जा सकते हैं। डिजिटल ऋण भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स और एप्स के माध्यम से कुछ ही मिनटों में हम प्राप्त कर सकते हैं आजकल। और ऐसे एप्स उपयोगकर्ताओं के खर्चों को ट्रैक करने और बजट बनाने में भी मदद करते हैं मंदाकिनी जी। और ब्रोकरेज एप्स आम लोगों को स्टॉक, म्यूचुअल फंड, क्रिप्टो करेंसी, इन सब में आसानी से निवेश करने की सुविधाएं भी देते हैं। ऑनलाइन बीमा पॉलिसी खरीदना है या कोई क्लेम करना है, यानी कि दावा आपको लेना है, तो उन चीजों के भी निपटारे तुरंत हो जाते हैं माध्यम से।
1: बिल्कुल चंचल, और इस कंपनी मोबिक्विक की नींव जो है उन्होंने अपने पति के साथ मिलकर डाली थी। उपासना ने इंजीनियरिंग के क्षेत्र में शिक्षा प्राप्त की और ये इंजीनियरिंग डिग्री उन्होंने पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी से प्राप्त की थी और इसके बाद उन्होंने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मैनेजमेंट साइंस और इंजीनियरिंग में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और लाखों महिलाओं के लिए वो आज भी प्रेरणा बनी हुई है।
0: उपासना ने पहली बार अपने पति बिपिन सिंह से 2008 में एक प्ले देखने के दौरान वो मिली थी। फिर 2011 में उनकी शादी हो गई। 2008 में उनकी कंपनी के सह संस्थापक ने प्लेटफॉर्म के लिए कॉन्सेप्ट विकसित किया जिससे उनके पति विपिन बहुत दुखी थे, लेकिन वो अपनी नौकरी छोड़ नहीं सकते थे और उन पर अपने पूरे परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी भी थी। उपासना ने उन्हें अपनी नौकरी छोड़ने और फिर कोई एक नया स्टार्टअप शुरू करने की शुरुआत दी। इस तरह दोनों ने मिलकर 2009 में अपना एक नया व्यवसाय शुरू कर दिया।
1: और अपना खुद का कारोबार शुरू करने से पहले उपासना ने करीब 17 साल से भी ज्यादा समय तक संबंधित क्षेत्रों में काम किया और उन्होंने एक अमेरिकी पेमेंट फर्म के लिए प्रोडक्ट मैनेजर के तौर पर भी काम किया और एक प्रतिष्ठित बैंक में भी उन्होंने कई वर्ष तक नौकरी की।
0: ये सारी जानकारी हमारे श्रोता भी हम तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन फिलहाल समय है एक छोटे से अंतराल का।

0: मंदाकिनी जी, अंतराल पूरा हो गया और हम फिर से जुड़ गए हैं अपने श्रोताओं के साथ में और हम बात कर
1: बिल्कुल।
0: रहे थे उपासना टाकू के बारे में। हमने बता दिया कि किस तरह से उनके व्यवसाय की शुरुआत हुई। तो पहले वो अमेरिका में रहा करती थी, लेकिन अपने अपना जो वो कारोबार वो शुरू करना चाहती थी, इसके लिए भारत में उनको अवसर दिखाई दिया और 2008 में वो अपना व्यवसाय पूरी तरह से स्थापित करने के लिए भारत आ गई। उपासना ने इस बात को भी अच्छी तरह समझ लिया था कि भारत में अपना व्यवसाय करने के लिए जितनी ज्यादा समस्याएं हैं उतने ही ज्यादा अवसर
1: अवसर भी
0: भी
1: हैं,
0: हैं।
1: बिल्कुल। और वो जिस तरह का बिजनेस करना चाहती थी चंचल, भारत उसके लिए सबसे शानदार विकल्प था। और उनके परिवार ने उनके भारत लौटने के फैसले का विरोध किया, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एक बहुत ही जोखिम भरा कदम हो सकता है। तो उपासना के माता पिता उन दिनों अफ्रीका में रहा करते थे, और पिता एक कॉलेज में फिजिक्स के प्रोफेसर थे और माँ एक म्यूजिशियन थी।
0: और उपासना अमेरिका में जो भी नौकरी कर रही थी उसे छोड़कर वो अपने कारोबार के सपने को आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहती थी। जैसे आपने बताया ना कि वो एक बैंक में, प्रतिष्ठित बैंक में नौकरी कर रही थी। और यूं अगर देखा जाए तो उपासना एक संपन्न परिवार से ताल्लुक रखती थी, इसलिए सब तरह की सुख सुविधाओं को भी वो देख चुकी थी, उनका आनंद ले चुकी थी। उनके पास अपना बड़ा घर, कार, तमाम जो सुविधाएं होती है ना, वो सभी चीजें थी। लेकिन भारत वापस लौटकर उन्होंने बिहार और उत्तर प्रदेश के जो ग्रामीण इलाके थे वहां काम करने वाले माइक्रो फाइनेंस एनजीओ के लिए वहां काम करना शुरू किया।
1: हाँ, और वो बताती है खुद कि उनकी कंपनी ने वित्तीय

0: वर्ष यानी 2022 और 23 की तीसरी तिमाही में लाभ कमाना शुरू कर दिया था और कंपनी के आगामी लक्ष्यों में राजस्व दोगुना करना और अधिक मुनाफा उसमें शामिल भी था, मतलब हासिल करना उसमें शामिल था। फिनटेक इंडस्ट्री में आज उनकी कंपनी एक जाना पहचाना नाम भी बन चुकी है।
1: यानी देखिए ना, संघर्ष कितना किया उन्होंने। 2008-2009 में उन्होंने सोचा, शुरुआत की, और 2022-23 की हम बात कर रहे हैं जब वो एक अच्छी कमाई करने वाली कंपनी और कहते हैं कि नामचीन कंपनी, जिसे नाम से दुनिया जाने, वहां उन्होंने अपने नाम को शुमार किया। तो हम आगे भी उन्हें शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, वो आगे बढ़ती रहे। फिलहाल सुने गीत।
0: बिल्कुल।

0: तो चंचल, बहुत ही प्यारा गीत आपने सुनवाया, और गीतों के साथ साथ हम विभिन्न विषयों पर बातचीत भी कर रहे हैं जो हमारे श्रोताओं को पसंद भी आ रही है। और अब हम आ जाते हैं सेहतमंद भोजन पर।
1: बिल्कुल, एक सेहतमंद रिश्ता भी इसी तरह बनता है ना, जैसे हमारा एक सेहतमंद रिश्ता

0: हमारे श्रोताओं के साथ में, उनकी पसंद का भी थोड़ा हम ख्याल रखते हैं। कहीं बीच बीच में उनके संदेश होते हैं, कहीं बीच में मनोरंजन के लिए गाने भी होते हैं और फिर थोड़ी सी जानकारी भी होती है।
1: इसी प्रकार हमारा जो ये प्रोग्राम बनता है, कार्यक्रम बनता है, इसी सेहतमंद के साथ हम आगे बढ़ते हैं और ठीक वैसे ही भोजन भी हमें सेहतमंद भोजन करना चाहिए।
0: और हमारे जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनसे हमेशा से हम सुनते आए हैं कि नहाए के बाल और खाए के गाल अलग ही नजर आ जाते हैं। यानी कि कहने के लिए तो बड़ी साधारण सी बात है, लेकिन इसके जो मतलब है, मायने हैं, वो बड़े गहरे हैं। तो हमारा खान पान जैसा होता है, हमारे चेहरे पर जो चमक है
1: वो वैसी ही होती है। बिल्कुल सही कहा। और हमारी सेहत एक तरह का निवेश है, इन्वेस्टमेंट है ये, और इसलिए निवेश जैसा होगा हमें रिटर्न भी वैसा ही मिलेगा। यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए जिसकी हमारे

0: यानी जितना अच्छा या सेहत से भरपूर हमारा खाना होगा, भोजन होगा, हमारी सेहत भी उतनी ही दुरुस्त होगी। और हमारे खाने में जो तमाम जरूरी पोषक तत्व होने चाहिए, जिसकी हमारे शरीर को जरूरत भी है, ऐसा भोजन हमें करना चाहिए।
1: इसीलिए देखिए, हमारे श्रोता का एक बड़ा अच्छा संदेश है। इन्होंने लिखा है कि रात 8 बजे के बाद भूख लगने पर हम अनहेल्दी स्नैक्स खा लेते हैं। द टाइम्स ऑफ इंडिया ये इस अखबार के माध्यम से लिख रहे हैं कि वहां भी सुझाव इन्होंने पढ़े कि रात के समय भुना हुआ मखाना, मूंग की दाल का सूप, खीरा, मूंगफली चाट जैसे हल्के विकल्प ये बेहतरीन होते हैं। ये पचने में आसान होते हैं और नींद भी इनसे अच्छी आ जाती है। तो रात को सोने से पहले एक कप गुनगुना हल्दी वाला दूध अगर आप लेते हैं तो वो भी पेट को आराम देता है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो इनका कहना यही है कि अनहेल्दी स्नैक्स को रात के समय थोड़ा सा हम अंधे का अनसुना या अवॉइड जिसे कहते हैं वो कर सकते हैं।
0: वैसे तो पूरे दिन ही इस बात का ख्याल रखा जाना चाहिए कि हम अनहेल्दी कुछ भी न खाएं, लेकिन हाँ, अगर आप चटोरे हैं थोड़ा सा, आपको कंट्रोल नहीं है अपने खाने की आदत पर, तो आप कभी कभार दिन भर में कुछ ऐसा खा लें, फिर उसका भुगतान भी हमें ही करना पड़ता है चंचल।
1: तो चटोरेपन को लेकर एक और संदेश है हमारे एक श्रोता के संदेश में लिखा है कि क्या आप जानते हैं सीमित मात्रा में गोलगप्पे या पानी पूरी खाना भी सेहतमंद फायदेमंद हो सकता है। इसके पानी में इस्तेमाल होने वाला पुदीना, जीरा और हींग, ये सभी जो चीजें हैं छोटी मोटी समस्याओं में और मुंह के छालों में राहत देते हैं, बशर्ते इसे बहुत साफ सफाई से बनाया गया।
0: देखो, सबसे बड़ी बात उन्होंने अंत में कह दी है, क्योंकि हम बहुत देखते हैं कि जहाँ पानी पूरी खिलाया जाता है ना, वहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है, लेकिन जो आपको खिला रहा है उसके हाथ साफ है कि नहीं, बनाने के तरीके साफ है कि नहीं, ये भी आपको जान लेना चाहिए। ऐसा न हो कि आप चटोरेपन में खा तो रहे हैं लेकिन उसके परिणाम जब गलत आते हैं तो हमें पछताना भी पड़ता है।
1: और ये जो अभी मौसम चल रहा है, इन दिनों में मक्खियां बहुत हैं, तो मक्खियां जब खाने पर बैठती हैं तो वहां अपने पैरों पर लिए हुए जो गंदगी होती है उसे छोड़ जाती हैं, तो ये हमें बहुत हद तक नुकसान पहुंचा सकता है। कई बार हमें अंदाजा नहीं होता, वो ऊपर से देखने में साफ सुथरा भोजन लग रहा है,
0: लेकिन हम कहाँ खा रहे हैं, कैसे खा रहे हैं, किस समय खा रहे हैं, किस मौसम में खा रहे हैं, क्या टाइम है खाने का, ये सभी बातें हमें जान लेना बहुत जरूरी होता है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन केवल उबली हुई सब्जियां नहीं बल्कि स्वाद और पोषण का बेहतरीन संतुलन है। अपनी डाइट में हरी भरी सब्जियां, ताजे फल, नट्स और साबुत अनाज आप शामिल करें और कभी आप कई गंभीर बीमारियों से दूर रह सकते हैं और खुद को दिन भर ऊर्जावान बनाए रख सकते हैं। रोजमर्रा के खान पान में छोटे छोटे बदलाव आपकी सेहत को सुधारने में बहुत बड़ा असर डालते हैं। प्लेट में विविधता लाएं, अपनी डाइट में मौसमी फल, सलाद, हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रोटीन, इसको प्राथमिकता दें। नाश्ते या खाने में पनीर, दालें, अंडे, भीगे हुए चने शामिल करें और मैदे की जगह साबुत अनाज, मैदे से बनी चीजों की बजाय ज्वार, बाजरा, रागी, ओट्स का विकल्प चुनें। और सुबह के समय भीगे हुए बादाम, अखरोट खाना ये बहुत जरूरी है, आपके शरीर को ऊर्जा मिलती है। यदि आप अपनी डाइट में कुछ नया और सेहतमंद शामिल कर लेते हैं तो फिर आप हेल्दी हो जाते हैं।
1: इसी तरह एक अन्य संदेश में लिखा गया है कि घर में शुद्धता से बनाया गया और शुद्ध भाव से बनाया गया भोजन हमेशा सेहतमंद होता है। मौसमी सब्जियां, मौसमी फल खाने में हमेशा शामिल करने चाहिए। बेमौसम का कोई भी फल या सब्जी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता, ये बात बड़ी अच्छी बताई है उन्होंने, क्योंकि उनको कृत्रिम तरीके से बनाया या पकाया गया है तो वो नुकसान कर सकते हैं। आगे लिखते हैं कि घर में विविधता से बनी हुई दालें, अनाज, चावल, रोटी बनती हैं और शरीर के लिए सारी चीजें बेहतर होती हैं। घर के बने खाने में बहुत सी अच्छी चीजें होती हैं, जिनमें मखाना भूनकर खा लेना, चना खा लेना, ये सब भी अच्छी चीजें हैं। बाजार की टिक्की, बाजार के समोसे ये नुकसान करेंगे, लेकिन इन्हीं को अगर घर में बनाया जाए तो उतना नुकसान शायद नहीं होगा।
0: बिल्कुल सही कहा, क्योंकि घर में आप थोड़ा स्वच्छता के साथ कार्यक्रम और सबसे बहुत ताजा आपको भोजन खाने को मिलता है।
1: एक और बात कि तली हुई चीजें जो है बाहर जब हम खाते हैं तो उसी तेल में बार बार उन चीजों को पकाया जा रहा है, कई कई दिन तक उसी तेल में खाना पक रहा है, जबकि घर में भी अगर तला हुआ कोई भी व्यंजन बनाते हैं तो ताजा तेल,
0: दोबारा उस तेल का इस्तेमाल करने से बचते हैं, है ना, इस बात का आपको। लेकिन पता है चंचल क्या होता है, हमारी चटोरी जीभ है ना, बाहरी खाना पसंद करती है और बाहर की उबली हुई चाय जिसे कितनी बार उबाला जाता है, हम खड़े होकर कितने आराम से पीते हैं, जब आपको पता होता है उसके नुकसान कितने हैं। घर में आप अपने हिसाब से चाय को उबाल कर पी सकते हैं ना। एक श्रोता लिखते हैं कि सेहतमंद भोजन वो है जो शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करे और हमें स्वस्थ, ऊर्जावान और सक्रिय बनाए रखे। संतुलित आहार में अनाज, दालें, हरी सब्जियां, फल, दूध और दुग्ध उत्पाद, सूखे मेवे और पर्याप्त मात्रा में पानी शामिल होना चाहिए। तली भुनी और अधिक मीठी चीजों की बजाय ताजे और घर के बने भोजन को प्राथमिकता देनी चाहिए। नियमित समय पर भोजन करें, पर्याप्त

0: पानी पिएं और सेहतमंद भोजन न केवल शरीर को बल्कि मन को भी प्रसन्न और सक्रिय रखता है।
1: बिल्कुल, इसी तरह से एक और बहुत अच्छा सुंदर संदेश है, ये हमारे श्रोता ने लिखा है कि सेहतमंद भोजन जो होता है वो हमारी हमारी अच्छी सेहत बनाता है। और आगे लिख रही हैं कि फायदा करने वाले जो भी खाने होते हैं उनको आप बना सकते हैं। किसी भी रेस्टोरेंट में खाने को कम टेस्टी नहीं लगेंगे, पहले वो खाना घर पर ही होगा, लेकिन इसमें आप तरीके अपना सकते हैं। यानी कि कोई भी सब्जी बनाने के लिए चीज की रोटी बना दे और सैंडविच वगैरह बना ले, इस तरह से पिज्जा रोटी भी बनती है। घर की जो चीजें हैं स्वादिष्ट होती है, तो ये पिज्जा बर्गर ये चीजें हम घर में,
0: ये जहाँ हमारा ध्यान इन सब की तरफ जाता है और मुझे लग रहा है कि हमारे मुंह में पानी भी आ गया है।
1: और बच्चे इन चीजों से बड़े आकर्षित होते हैं, लेकिन बहुत सारी मम्मियां बड़ी होशियार होती हैं तो मैदे की जगह आटा इस्तेमाल करती हैं, और जो बाजार में मोमोज बनते हैं ना, वहाँ बिल्कुल जो बची कुची सब्जियां उनसे लाकर, कई उसमें सड़ी गली भी हो सकती है, उन सब्जियों से वो मोमोज बनाए जाते हैं। तो आप घर में बिल्कुल ताजी सब्जियों से बनाइए तो वो बच्चों को फायदा भी करेंगी।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, और जो अभी आप पढ़ रही थी संदेश, वो यही कहना चाह रही थी कि आप किसी होटल में जाकर जब उसका आनंद उठाते हैं तो क्यों ना घर में ही वो प्रयोग कर लिए जाए, और घर में आप आनंद से खाइए और भरपेट खाइए ना, किसने रोका है आपको।
1: तो भाई अब मुझे भी मत रोकिए, मैं गाना सुनवा रही हूँ और सुन भी रही हूँ, बड़ा अच्छा गीत है।
0: बिल्कुल सुनाइए।

0: तो चंचल, असली प्यार तो वही होता है कि आपको अंत तक सहारा देता है, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं मुंह में राम और बगल में छुरी जो लेकर चलते हैं ना, तो फिर उसके लिए तो हमें उनके उदाहरण देने पड़ जाते हैं कि देखिए यहाँ पर आकर एक मुहावरा आ जाता है, मुंह में राम और बगल में छुरी।
1: यानी वो सिर्फ अपनेपन का या आपसी प्यार का दिखावा कर रहे होते हैं, जबकि पीठ पीछे वो शत्रुता निभाने वाले लोग होते हैं।
0: बिल्कुल
1: और
0: वही।
1: ये एक
0: हाँ
1: ऐसी प्रसिद्ध लोकोक्ति या कहावत है, इसका मतलब होता है कि बाहर से बहुत सज्जन, मित्रवत या भोला भाला दिखना, लेकिन मन में कपट और मौका मिलते ही नुकसान पहुंचाने की योजना बनाना।
0: बिल्कुल सही कहा। तो हमारे एक श्रोता लिखते भी हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी हिंदी साहित्य का मुहावरा जो हमारी भाषा में खूब प्रयोग किया जाता है। ऊपरी तौर पर मीठी मीठी बातें करना या दोस्ती का ढोंग रखना, लेकिन मन में बैर रखना और नुकसान पहुंचाने की फिराक में रहना, ये मुहावरा कपटी और पाखंडी लोगों के व्यवहार को दर्शाने के लिए उपयोग किया जाता है। वैसे आजकल सोशल मीडिया पर यही हो रहा है, एक तरफ का आपके लाइक करते हैं लोग और पीठ पीछे जहर भी उगलते हैं।
1: एक अन्य संदेश में हमारे श्रोता का कहना है कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का हर मौका तलाशते रहते हैं। यहाँ इस मुहावरे से जुड़े कुछ मुख्य पहलू भी दिए गए हैं, कपटी या धोखेबाज होना, और कुछ उदाहरण उन्होंने देकर समझाया है।
0: वही एक श्रोता लिखते हैं कि भाई इसका अर्थ तो हम सभी जानते हैं कि जो व्यक्ति आपसे ऊपर से मीठी मीठी बातें कर रहा है, लेकिन आपके अंदर ही अंदर वो नुकसान पहुंचाने की ताकत भी रखता है आपके लिए मन में, मतलब आपके लिए मन में द्वेष रखता है, और यही इस मुहावरे का अर्थ है। ऐसे कितने ही लोग हैं जो ऊपर से हमारे साथ मीठी मीठी बातें करते हैं, लेकिन मन में हमारे लिए उनके द्वेष होता है।
1: एक अन्य संदेश में बात कही गई है कि ये कहावत समाज में बढ़ते खोखलेपन को दर्शाती है। लोग अपनी असली पहचान और इरादों को छुपाने के लिए धर्म, मीठी भाषा, झूठी हमदर्दी, सभी तरह के मुखौटे पहन लेते हैं। जब समाज में दिखावा ही सफलता की चाबी बन जाता है, तो लोग अंदर से जहरीले और बाहर से अमृत जैसा दिखने का नाटक करने लगते हैं।
0: बिल्कुल, ऐसे बहुत सारे लोग हमारे आसपास होते हैं चंचल, जिन्हें हम पहचान नहीं पाते, और जब
1: हाँ
0: पहचानते हैं तब तक बहुत देर भी हो जाती है
1: जी,
0: कई बार, है ना। एक श्रोता लिखते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी इस प्रसिद्ध लोकोक्ति को समझाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब सभी जानते हैं, मीठी मीठी बातें करके मित्रवत व्यवहार करना, लेकिन मन या दिल में शत्रुता रखते हुए नुकसान पहुंचाना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, इसलिए उनकी मीठी मीठी बातों से बचना जरा दुनिया के लोगों में है जादू भरा।
1: क्या बात है। और ऐसे बहुत सारे संदेश हमें मिल रहे हैं। एक अन्य संदेश में लिखा है कि कपटी या धोखेबाज होना, यही इस मुहावरे का अर्थ है, लेकिन ये ऐसे लोगों पर, ऐसे व्यक्ति के लिए प्रयोग की जाती है जो बाहर से मीठा और बड़ा मित्र होने का व्यवहार करते हैं, लेकिन मन में बैर, जलन या नुकसान पहुंचाने की योजना वो रखते हैं। और अंग्रेजी में इस कहावत को क्या कहा जाता है, ये भी इन्होंने हमें लिखकर भेजा है।
0: अच्छा, वही एक श्रोता लिखते हैं कि ये मुहावरा उन कपटी लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है जो सामने बहुत मीठा बोलते हैं, सम्मान करते हैं, लेकिन पीठ पीछे नुकसान पहुंचाने का मौका तलाशते रहते हैं। और यहाँ कुछ उन्होंने इसके बारे में बताया भी कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं, प्रयोग भी किया, जैसे हम अपने प्रश्न पत्र में होता था ना
1: हाँ
0: कि
1: हाँ
0: हम कॉपी में क्या
1: उदाहरण देकर
0: करते थे,
1: समझाइए।
0: उदाहरण देके समझाते थे, ठीक उन्होंने वैसे ही उदाहरण भी देते हुए हमें समझाया है। बहुत अच्छी बात है कि आपने इस कहावत के बारे में ज्यादा से ज्यादा अपने विचार हम तक पहुंचाए हैं।
1: तो अब एक गीत सुन लिया जाए और चलते चलते सुनते हैं प्रोग्राम का आखिरी गाना।
0: बिल्कुल।

0: तो हम उम्मीद रखते हैं कि अब जो हमारे श्रोता है वो अपना भोजन भी सेहतमंद लेंगे और उनके जो रिश्ते हैं उन्हें भी सेहतमंद बनाएंगे। यानी
1: हाँ
0: कि
1: बिल्कुल,
0: डिजिटल युग से जुड़ना बहुत जरूरी है, लेकिन इसकी सीमा क्या है इसको भी वो समझेंगे।
1: हाँ बिल्कुल, हर एक चीज की जो सीमा रेखा है वो हमें खुद ही तय करनी होती है चंचल। जैसे अभी इस वक्त हमें क्या तय करना है?
0: कि हमारा समय क्योंकि समाप्त हो रहा है, हमें लेनी है इजाजत।
1: हाँ, तो सखी सहेली कार्यक्रम से मंदाकिनी जोशी
0: और
1: और
0: चंचल वर्मा को इजाजत दीजिए।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार। सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं।

0: सेल्यूलॉइड के सितारे इस कार्यक्रम में पिछले हफ्ते आपने सुनी बातचीत अभिनेता विपुल देशपांडे से। इनसे बातचीत कर रहे हैं जयंत पत्रिकर। आज इस बातचीत का दूसरा भाग सुना जाए।
1: है अपना दिल तो आवारा, मगर ये आपकी आवारगी जो फिल्म लाइन में शुरू है, अभिनय की दुनिया में बसर कर रहे हैं, इसमें एक फिल्म आई थी 2020 में, स्टेट ऑफ सीज, ओटीटी प्लेटफॉर्म की एक बड़ी माकूल फिल्म मानी जाती है, बहुत अच्छी फिल्म ये बनी थी, इसके बारे में हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि इससे जुड़े हुए सारे नाम जो है वो विदेश के हैं।
2: हाँ, ये कॉन्टिलो पिक्चर्स ने प्रोड्यूस की थी
1: जी,
2: और इसमें मैथ्यू लिटमोर ये डायरेक्टर थे जो कि हॉलीवुड से थे, रिचर्ड हेंकल ये डीओपी थे, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी कैमरामैन
1: जी,
2: ये भी हॉलीवुड से थे, और एंटोन लियोन ये एसोसिएट डायरेक्टर, ये तीनों की टीम वहां से थी।
1: अच्छा।
2: और उनके साथ इनके कुछ एसोसिएट्स भी हॉलीवुड से आए। हालांकि मैट्रिक्स नाम की एक बहुत खूबसूरत फिल्म थी शायद वैन डैम की, वो उसके डीओपी भी रह चुके हैं रिचर्ड हेंकल, तो बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स इन्होंने किए
1: जी जी।
2: तो अचानक एक दिन मैं नागपुर में ही था उस दौरान, 2019 की बात है शायद, और मुझे कॉल आया कि यार एक ऐसा ऐसा कैरेक्टर है
1: जी,
2: बहुत खूबसूरत डीएसपी का कैरेक्टर है। मैंने बोला यार मैं पुलिस वाले का काम मत बोला यार प्लीज। ही सेड कि यार भाई तू सुन तो ले कैरेक्टर क्या है। मेरा ठीक है, उसने मुझे बताया कैरेक्टर, एक्सप्लेन किया। डीएसपी सूर्यवर्धन शुक्ला करके एक कैरेक्टर मुझे दिया गया जो कि राजवर्धन सिन्हा साहब के रियल कैरेक्टर पे जुड़ा हुआ था
1: जी,
2: जो कि 26/11 अटैक हुआ था उस पे।
1: अच्छा।
2: विश्वास नागरे पाटिल सर थे, उन्हीं का भी एक कैरेक्टर था जो दूसरा मेरे साथ में ऑफिसर थे डीएसपी, वो अच्छा। प्ले कर रहे थे। तो ये सब ब्रीफ किया और मुझे अच्छा लगा, नला ठीक है। मैं नागपुर से मैं जब वापस आया एक दो दिन में, उसके बाद मैं गया उनके प्रोडक्शन हाउस में, मैंने ऑडिशन उनको पहले ही ऑनलाइन ही भेज दिया था
1: जी,
2: दे लाइक्ड इट, दे शॉर्टलिस्टेड, कमर्शियल की जो भी बातें थी वो हुई एंड आई जॉइन्ड द थिंग। मैं उस दिन शूट करने के लिए एप्पल स्टूडियो जो नायगांव
1: जी
2: ताके वहां पे मैं गया। हालांकि मुझे इतने

0: बड़े प्रोजेक्ट का आइडिया नहीं था। मैंने सोचा कि इट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट वेब सीरीज, लेकिन वहां जाके मुझे पता चला कि ये 26/11 पे बनने वाली एक बहुत ही बड़ी वेब सीरीज है, बहुत ही बड़े प्रोजेक्ट बजट पे भी। और इसके हॉलीवुड के, मैं आई एम नॉट सेइंग कि हॉलीवुड मेकर्स है तो आई एम क्रेजी अबाउट इट, बट उनका टेकिंग बड़ा अच्छा था, उनका
1: हाँ,
0: ट्रीटमेंट बड़ा अच्छा था।
1: यही सवाल मेरे मन में भी आ रहा था कि हॉलीवुड का अपना एक तरीका है काम करने
0: हाँ, उनका एक
1: का,
0: अलग तरीका है।
1: तो वो फर्क आपने क्या महसूस किया इसमें?
0: फर्क ये था कि उनके लिए यहां पे कोई बड़ा एक्टर छोटा एक्टर नहीं था।
1: अच्छा।
0: जैसे मैं 2019 के दौरान अगर उनके साथ शूट करा था तो मेरा कम एक्सपोजर था, वेरैज तीन फेसेस थे हमारे यहाँ पे, अच्छे आर्टिस्ट हैं, अर्जुन बाजवा जी हैं, विवेक दहिया है, अर्जुन बिजलानी है,
1: जी
0: काफी अच्छी बातचीत है उनके साथ भी। तीन पोस्टर फेसेस भी थे, एनएसजी कमांडो प्ले कर रहे थे, बट उन्होंने कहीं भी ऐसा कि उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस हमें कम इम्पोर्टेंस ऐसा नहीं दिया,
1: जी
0: उनके लिए सब सेम थे।
1: सबसे
0: तो उनका ट्रीटमेंट वो बताते थे कैसा करना है, वो कन्वे करते थे शॉट के पहले,
1: अच्छा।
0: एंड देन वो ट्रीटमेंट के साथ बैक टू बैक टेक्स बहुत ज्यादा लेते थे, मतलब एक ही सीन हमारा हमने 15-15 20-20 बार शूट किया बहुत बार,
1: जी,
0: लेकिन उनका ये था कि आप करके दिखाओ सर आपको क्या सही लग रहा
1: ओ
0: है ना।
1: अच्छा,
0: हाँ,
1: एक
0: एंड देन
1: कलाकार के रूप में, एक अभिनेता के रूप में आप क्या सोचते
0: आप
1: हैं
0: क्या
1: इस रोल
0: सोचते
1: के बारे
0: हैं।
1: में?
0: हाँ,
1: क्या बहुत बड़ी बात है।
0: बहुत बड़ी बात है,
1: जी
0: तो
1: जी जी
0: वो बड़ा मुझे अच्छा लगा। और हालांकि वो मुझ में पहले से है भी, मैं सोचता हूं कि जैसे मैंने कबीर सिंह की, जैसे मैंने गांधी गोडसे की,
1: जी
0: या फिर मैंने जो भी फिल्में की, अगर वो टेक मुझे कुछ लगा है
1: हाँ
0: तो मैं डायरेक्टर को जाके बोल के आता हूं कि सर आई फील इफ आई डू दिस। तो ये एक छोटा सा किस्सा हुआ था संदीप सर के साथ, संदीप रेड्डी सर के साथ।
1: जी
0: तो मैंने बोला कि एक जो सीन है वो मिडवे चालू होता है, हाफ सीन हो चुका है, हाफ सीन चालू हो रहा है,
1: अच्छा
0: कि एवरीथिंग इज एट स्टेक। वो बोलता है कि एक दिन पहले उसने दारू पी के ऑपरेशन किया है, शराब पी के ऑपरेशन किया है, ये अभी मैं अभी कोर्ट में जाऊंगा, ठीक है, आपको गवाही देनी पड़ेगी, स्टाफ को बोलता है अपने
1: जी
0: डीन ऑफ द हॉस्पिटल।
1: जी
0: अब मुझे लग रहा था ना वो वहां से जो चालू हो रही है लाइन, कि अब मुझे उस पर प्रेशर भी देना था, एवरीथिंग इज एट स्टेक, अब
1: हाँ
0: एवरीथिंग इज एट स्टेक पे वो मैं प्रेशर नहीं दे पा रहा
1: अच्छा।
0: हूं। मैंने सोचा कि एक वर्ड को डालना चाहिए, तो मुझे लगा ब्लडी इज द वर्ड, तो मैंने वो बोल के देखा ब्लडी एवरीथिंग इज एट स्टेक,
1: अच्छा
0: जो मुझे यहां पे अभी लगा, तो वहां पे वो फील आया। मैंने बोला ये करता हूं, तो मैंने एसोसिएट डायरेक्टर को बोला, बोले कि नहीं ब्लडी यूज नहीं कर पाएंगे। मैंने बोला सर नहीं यूज कर पाएंगे तो सर को एक बार बोल के देखो ना। नहीं नहीं यार वो गुस्सा हो जाएंगे, लाइक कि ठीक है छोड़ यार। मैंने वो आए डायरेक्शन के टाइम में तो आए।
1: हाँ
0: मैंने बोला सर एक पॉइंट है। बोले हाँ बोलो। मैं ये ऐसा ऐसा बोलने की मेरी इच्छा है अगर आपको सही लगता है। उन्होंने बोल के देखा, एक सही डायरेक्टर जो है वो उसकी फिल्म को बहुत अच्छे से जानता है,
1: जी,
0: जैसे कैप्टन ऑफ द शिप।
1: बिल्कुल
0: तो उन्होंने बोल के देखा दो बार, बड़ी बड़ी बोला हाँ गुड गुड डू इट एंड इट इज देयर इन द फिल्म।
1: यस।
0: तो ये एक चीज है जो आर्टिस्ट को बोलनी चाहिए। आर्टिस्ट कोई प्रॉपर्टी नहीं है कि आपने जाके रख दी तो वैसी रहे।
1: हाँ,
0: आर्टिस्ट एक कलाकार है, एक खुद सोचने वाला इंसान है,
1: और वो भी अपने रोल के बारे में सोच रहा है।
0: सोच रहा है तो अच्छी
1: बिल्कुल
0: बात है।
1: जी।
0: तो अच्छा मैं इंसिस्ट नहीं करता, मैं एक बार बोल के देखता हूँ,
1: बिल्कुल।
0: क्योंकि उन्हें अच्छा लगा तो वो रखे, नहीं लगा तो नहीं रखे, मैं तो
1: हाँ,
0: उसको ज्याती तौर पे नहीं लेता
1: अभिनेता और निर्देशक के बीच में ये एक संवाद तो बहुत जरूरी
0: बहुत
1: होता है।
0: जरूरी है।
1: हाँ
0: सेम थिंग राजकुमार संतोषी जी के साथ भी वही हुआ।
1: जी
0: हम लोग गांधी जी बैठे हुए हैं और डीएसपी राणा उनको आके बोलते हैं कि महात्मा जी ये जो आपके प्रार्थना स्थल है वहां पे सिक्योरिटी लगानी पड़ेगी।
1: अच्छा।
0: और डीएसपी राणा जो है उनका थोड़ा चाहने वाला है, तो बार बार इंसिस्ट करता है कि महात्मा जी आप सुनिए ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा करते करते एक लास्ट में वो फिर से महात्मा जी बोलता है कि महात्मा जी लेकिन वो बोलते हैं बस प्रार्थना स्थल पे किसी की भी चेकिंग नहीं होगी, और वो जाने को बोलते हैं।
1: अच्छा।
0: तो इसमें मुझे लगा कि जब ये पहले इसने इन्फॉर्मेशन दी कि सर ऐसा ऐसा हो रहा है महात्मा जी, तो महात्मा जी हम चाहते हैं कि आपके इसमें प्रार्थना स्थल पे वो रखा जाए सिक्योरिटी, वो नहीं बोलते हैं। और ये फिर से वो बोलते हैं कि कड़कड़ी सी विनती कर दो है कि, तो उस पर मुझे लगा कि इसमें बापू बोलना चाहिए,
1: हाँ,
0: थोड़ा सा इमोशनल रहे।
1: वो महात्मा बोल रहा है मगर
0: हाँ, अब तक
1: जो
0: प्रोटोकॉल फॉलो कर रहा है,
1: बिल्कुल,
0: लेकिन अभी बहुत ही क्लोजली बोल, अरे करना यार काइंड ऑफ, तो लेकिन बापू ऐसा मुझे लगा। अब फिर से मैंने एक वो स्क्रिप्ट डायरेक्टर था उसको बोला, उसमें नहीं नहीं प्रोटोकॉल ही हो जाएगा वो
1: हाँ,
0: थोड़ी। मैंने बोला भाई ये तो एक तो फिक्शन है,
1: हाँ
0: ठीक है ये कोई हुआ है ऐसी बात नहीं है, तो फिक्शन है। और हम लोग उस जोन में जा रहे हैं कि जहां पे ये आदमी इमोशनल होके उनकी बहुत ज्यादा चिंता है इसलिए बोल रहा है,
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: तो बापू पूरे पूरा नेशन उनको बापू बोलता था, व्हाई नॉट।

0: उसने नहीं बोल दिया। मैंने राज जी को बोला, सेट पे आए वो जब सीन करना था। हाँ चलो चलो, मैंने बोला राज जी ये, हाँ बोलो। मैंने सर ये ऐसा ऐसा है। बापू कैसे बोलोगे? मैं बोला ये ऐसा ऐसा, और फिर मैं ये ऐसा। हाँ बहुत बढ़िया, ही लाइक इट। सो मेरा यही कहना है कि एक आर्टिस्ट के तौर पे हमने उसमें जान डालने की कोशिश करनी
1: बिल्कुल
0: चाहिए,
1: बिल्कुल
0: वही एक एडिशनल चीज है जो आप दे सकते हो। तो दिस इज व्हाट हाउ इट हैपेंस।
1: क्या बात है।
0: तो स्टेट ऑफ सीज का भी वैसे ही रहा कि
1: हाँ
0: मैं जैसे ही वहां गया तो वो चीजें सीखने को मिली उन लोगों के थ्रू। वो पूछते थे कि आप क्या करोगे, कैसे करोगे, तो चीजें होती गई। कोइंसिडेंटली वहां पे जो शिरके नाम से कैरेक्टर था, जो
1: जी
0: विश्वास जी का कैरेक्टर था, वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त विक्रम गायकवाड़ ही प्ले कर रहा था।
1: अच्छा
0: तो विक्रम मराठी के में काफी कैरेक्टर्स करता है,
1: बड़ा नाम
0: बहुत
1: है
0: बड़ा नाम है, शोज
1: जी।
0: करता है। हम लोगों ने साथ में फोर इडियट्स जो की थी, हमने साथ में पहली फिल्म थी,
1: अच्छा
0: तो
1: अच्छा
0: उसने कंटिन्यू किया। उसके बाद उसको मराठी शोज भी मिले, फिल्में मिली। मैं वापस चला गया नागपुर, और वापस आया तो 4 साल बाद मैंने मेरा सफर हिंदी से चालू किया।
1: जी
0: बोले हम लोग अच्छे दोस्त थे। ओवरऑल स्टेट ऑफ सीज एक अपने आप में बहुत सीखने लायक और बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट बना।
1: जी
0: हालांकि लॉकडाउन के चलते उसे शायद जहां तक वो जाना चाहिए उतना एक्सपोजर, उतने व्यूअर्स नहीं मिले। बट आज भी मैं किसी को रिकमेंड करता हूं तो बोलता हूं कि वो जरूर देखिए। आपको 4.5 घंटे का होगा। बहुत ही छोटे छोटे डिटेल्स उसमें दिए गए हैं
1: जी
0: कि
1: जी
0: कैसे कैसे हुआ होगा। मैं रिसेंट फिल्म मैंने एक मैडॉक की अभी की शूट, जो कि निकम नाम की एक फिल्म आ रही है, उसमें भी मैंने एक कैरेक्टर किया जो कि उसी से रिलेटेड है।
1: अच्छा
0: वो भी बड़ा खूबसूरत कैरेक्टर था, उसमें भी डिटेलिंग छोटे छोटे दिए गए।
1: आपने बंबई में फिल्मों और वेब सीरीज के साथ साथ कुछ रंगमंच पर भी काम किया है, तो हम उसकी बात करेंगे, मगर यहाँ एक गुंजाइश एक गीत की है। कौन सा गीत सुनाना चाहेंगे हमारे श्रोताओं को?
0: ये कभी कभी मैं जिंदगी के बारे में जब सोचता हूँ, और बड़े शांत कभी जोन में, मैं बड़ा ही निसर्ग प्रेमी इंसान हूँ। मैं हाल ही में गोवा गया था तो मैं वहां पे घंटों बीच पे बैठा करता था अकेले। मैं गया तो फैमिली के साथ था, लेकिन जब भी टाइम मिलता मैं अकेले बीच पे बैठ जाता। और उस वक्त वो गाना मेरे जहन में आता है, दो लफ्जों की है दिल की कहानी।
1: आइए सुनते हैं।
0: जी सर।

0: लफ्जों की है ये कहानी, हालांकि किसी भी कलाकार की कहानी दो लफ्जों की नहीं रह
1: जी
0: जाती
1: जी
0: जब एक मुकाम वो हासिल कर लेता है। और इससे पहले हम बात कर रहे थे कि आपने थिएटर में भी काम किया है,
1: जी
0: तो एक वो दौर था जब बचपन में आपने
1: काम किया
0: कॉलेज के जमाने तक नागपुर में थिएटर किया था, और अब मुंबई में आके यहाँ थिएटर अलग ही है।
1: बहुत
0: मराठी में तो प्रोफेशनल थिएटर बहुत ज्यादा विकसित हो चुका
1: कई
0: है,
1: नहीं।
0: प्रगति के मार्ग पर है। हिंदी का एक अपना मुकाम है थिएटर का, आपका अनुभव कैसा रहा हिंदी में थिएटर करते हुए यहाँ पर?
1: बहुत खूबसूरत, मतलब मराठी, मैं मराठी होने के बावजूद मराठी में मैंने थिएटर यहाँ पे आने के बाद तो मैं नहीं कर पाया, क्योंकि मेरा ग्रुप जो डेवलप हुआ वो हिंदी का हुआ।
0: जी
1: तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था सुनील उपाध्याय,
0: जी जी
1: उसने मुझे इंट्रोड्यूस किया। रंजीत सर एक अपने आप में, मैंने जैसे कहा कि बहुत सीनियर पर्सनैलिटी है, तो कुंदन रॉय और सुनील उपाध्याय मेरे दोस्त हुआ करते थे, जिन्होंने मुझे बताया कि हम लोग नाटक कर रहे हैं चेखव की दुनिया।
0: अच्छा
1: आंतोन चेखव जो रशियन लेखक थे,
0: बिल्कुल
1: उन्होंने 700 के करीब कुछ ड्रामास लिखे हैं, और उसमें बहुत सारे जो नाटक है वो रंजीत सर ने अनुवादित किए हिंदी में। तो वो सर का नाटक था, तो मुझे बुलाया गया रीडिंग में, और मैंने रीडिंग शुरुआत की रंजीत सर के यहाँ। हम लोग सर्कल बना के बैठते थे, रंजीत सर एक चेयर पर बैठते थे, तो फिर वो एक एक बंदे से जो है पेज का वो शुरुआत
0: पढ़वाते।
1: पढ़वाते थे। मैंने एक वो देखा रंजीत सर के रीडिंग में, डेढ़ पेज के ऊपर जाना ही नहीं होता है,
0: अच्छा
1: क्योंकि हर एक से एक एक चीज पढ़ने को बोलते हैं, और उसको हर एक लहजे में, हर एक शब्द में, हर एक मूड में करेक्ट करते हैं।
0: अच्छा
1: ही कीप वर्किंग ऑन यू फॉर मेनी टाइम्स।
0: ओके
1: अगर कोई चीज, एक शब्द बोला है, उसमें कोई शब्द अक्षर है, वो
0: जी
1: एक
0: जी
1: छोटा सा जैसे कहीं नुक्ता लगाना है या कहीं कुछ प्रेशर देके बात करनी है, वो अगर आप नहीं दे पा रहे हो तो वो बार बार आप पे काम करेंगे। अगर उनको दिखता है कि आप में कैपेबिलिटी है तो दे ही विल वर्क ऑन यू।
0: जी
1: एक लिमिट के बाद में फिर शायद छोड़ दें कि नहीं हो पा रहा है तो किसी दूसरे को
0: अच्छा
1: दिया जाए।
0: अच्छा
1: तो ये उनके साथ मैंने किया है, ये सीखने को मुझे बहुत कुछ मिला कि
0: हाँ
1: एक एक छोटे छोटे वर्ड पे, एक एक छोटे छोटे अक्षर पे कितना प्रेशर दिया जाना चाहिए, जैसे कभी कम या कभी ज्यादा। तो ये ऐसा नहीं कभी कम या कभी ज्यादा, तो ज्यादा को बोलते हुए आप ज्यादा है,
0: उस पर ज्यादा जोर दिया
1: ज्यादा
0: जाता
1: जोर दिया जाता है, तो तभी वो ज्यादा हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं
0: जी
1: जो
0: जी
1: मैं उनसे सीखा,
0: जी
1: और थिएटर में हम लोगों ने जहां जहां परफॉर्म किया, अपने आप में एक हिंदी जो आप करते हो, हिंदी मराठी बातें एक ही है, ऐसा नहीं,
0: हाँ
1: परफॉर्म ही करता है आर्टिस्ट, लेकिन एक नेशनल लैंग्वेज में जब आप काम करते हो तो आपको एक सिर्फ रीजनल लोग नहीं देखते, आपको पूरी इंडिया से लोग अलग अलग जगह से देखने आते हैं, उनकी आप सबकी एक अलग अलग वो होती है।
0: जी जी
1: कहीं कोई पंच होता है तो एक पर्टिकुलर जगह से ही आपको एक लाफ्टर मिलता है, कहीं कुछ होता है, वो सीखने को मिलता है। जैसे रंजीत सर भी कहते थे कि मराठी में इसे बहुत खूबसूरत वर्ड है प्रयोग,
0: जी हर नाटक का जो शो है उसे प्रयोग कहा जाता है,
1: एक्सपेरिमेंट,
0: एक्सपेरिमेंट।
1: क्योंकि आपको लगेगा इस बार ये करके देखता हूं,
0: जी
1: दूसरी बार दूसरा कुछ करके देखो,
0: बिल्कुल
1: जो
0: बिल्कुल
1: कि टेलीविजन में, फिल्म्स में पॉसिबल नहीं है।
0: बिल्कुल। इसी से जुड़ा एक सवाल अभी मन में आ रहा था कि अक्सर कलाकार ये कहते हैं कि अभिनय तो हम करते हैं, मगर जो मजा नाटक यानी रंगमंच पर अभिनय करने का है वो किसी और मीडियम में नहीं है।
1: नहीं आएगा, सही बोला आपने। अपना अपना मजा है,
0: हाँ
1: इसमें भी मजा है, लेकिन जो थिएटर में मजा है,
0: हाँ
1: लाइव परफॉर्मेंस,
0: लाइव परफॉर्मेंस
1: वो चीज जो है वो आपको एक गूजबम्प दे जाती है
0: जी जी जी और उसका जो भी रिएक्शन आना है वो सब उसी वक्त लाइव
1: तुरंत
0: तुरंत आना है।
1: तुरंत यू फील सो गुड कि जो मैंने किया उसका किस लेवल, अच्छा एक कलाकार उसके लेवल भी पहचान सकता है कि कहीं पे कम आया, कहीं पे ज्यादा आया,
0: जी
1: कहीं पे बहुत ज्यादा आया।
0: जी
1: तो ये चीज जो है, जो लाइव परफॉर्मेंस है, उसमें बहुत बहुत फर्क पड़ता है, और मैं एंजॉय करता हूं डेफिनेटली। और आप 15 दिन, महीना भर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हो, लंबे लंबे छह छह दस दस पंद्रह पंद्रह लाइनें डायलॉग्स हैं या फिर पेजेस आप याद कर रहे हो, हालांकि हर एक कैरेक्टर को पूरा का पूरा नाटक ही ध्यान में हो जाता है एक टाइम में।
0: जी
1: तो महीने भर की प्रैक्टिस के बाद में वो जो आपका बेबी है, जो आपको उधर डिलीवर करने को मिल रहा है, वो आपको जो मजा देता है वो अलग ही है, मतलब उसका कहीं भी कंपैरिजन कहीं और किया नहीं जा सकता।
0: बिल्कुल
1: तो दैट मेक्स सेंस, और वो जो एक बार हो गया वो तो फिर
0: जी। अपनी बातों में आपने अपने कुछ लिखने का भी जिक्र किया था कि कुछ लिखा है आपने, और आप राजकुमार संतोषी साहब से जब मिलने गए और वो घर पे नहीं थे तो उनके सेट आउट में आप जो है अपनी कल्पना में डूब गए थे और आप इमेजिन कर रहे थे कि

0: ऐसा सीन होगा। तो मैं ये कह रहा था कि लेखक बनने की कोई राह कभी बनी नहीं, या निर्देशक होना आप चाहते थे? हाँ
1: मैं यहाँ पे जरूर बताना चाहूंगा कि लॉकडाउन के दौरान
0: हाँ
1: मैं जब नागपुर में था
0: जी
1: और वहां पे थोड़ी बहुत एक्सेस पॉसिबल थी क्योंकि छोटा शहर है तो आप कहीं जा सकते थे, तो वहां मैं रामटेक गया। रामटेक में मेरे बहुत अजीज दोस्त थे अमोल खंते,
0: जी
1: उनका एक एडवेंचर विलेज है, वो
0: हाँ
1: भी खाली था क्योंकि लोग तो आ नहीं सकते थे,
0: जी
1: तो मैं रिक्वेस्ट करके वहां चला गया। वहां पे खाली इसमें नेचर के साथ
0: हाँ
1: मैं बैठा रहता था, एक कॉपी और पेन लिए,
0: अच्छा
1: और वहां मुझे एक पर्टिकुलर कहानी एक रियल इंसिडेंट से प्रेरित होके लिखने की इच्छा हुई और मैंने वो वहां पे लिखी। 5-6 दिन में वहां पे था तो मैं लिख रहा था दिन रात।
0: अच्छा
1: फिर मैं वापस आया, नागपुर में भी रुका तो वहां भी मैं वो कहानी को डेवलप करता था। मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है अमन कबीर, वो भी नागपुर से, उसके साथ मैंने वो डेवलप की कहानी।
0: अच्छा
1: और एक रियल लाइफ इंसिडेंट है जो कैसे प्रेरित करता है, थोड़ा सा डार्क कॉमेडी भी है
0: अच्छा
1: और
0: अच्छा
1: लाइट कॉमेडी है उस
0: तो ये
1: टाइप
0: कहानी मंच पर आ रही है या पर्दे पर?
1: का। हम चाहते हैं उसे पर्दे पे लाना,
0: हाँ
1: हमारी बातचीत भी हुई काफी कुछ लोगों के
0: जी
1: साथ, लेकिन शायद एक फाइनेंसर या एक प्रोड्यूसर की और जरूरत है
0: जी जी
1: जो शायद उच्च और समय लगे, बट वी वुड लाइक टू डू दैट। तो वो प्रोजेक्ट एक जरूर है, IPC 324 ये उसका हमने टाइटल दिया था,
0: अच्छा
1: IPC 324। और वो जरूर बगल में, पर मैंने साथ ही साथ एक शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की यहाँ पे
0: जी
1: जो कि यूट्यूब पे अवेलेबल है,
0: हाँ
1: जिसका नाम है द लास्ट नाइट विथ हर। वो मैंने एक मेरे दोस्त के साथ फिल्म बनाई, 18 मिनट की शॉर्ट फिल्म
0: जी जी
1: है, एक बहुत ही खूबसूरत थॉट के साथ बनाई हुई। और फिर मैंने एक गाना वीडियो एल्बम भी मैंने डायरेक्ट किया जिसका नाम है पिया की दासी।
0: ओह क्या
1: या
0: बात है।
1: तो मैं आपको गाना दूंगा अगर आप यहाँ पे भी कर पाए। सूफी सॉन्ग है
0: जी
1: और वो रिलीज हुआ है कुछ 9 से 10 प्लेटफॉर्म्स पे अलग अलग, जैसे सारेगामा या
0: अच्छा
1: जी म्यूजिक टाइप के, तो वहां पे वो रिलीज हुआ है। तो वो हमने किया, वो मेरा एक दोस्त है राजीव वर्मा जिसने लिखा हुआ था, कंपोज भी उसने किया,
0: जी
1: और
0: जी
1: बड़े खूबसूरत तरीके से हमने उसको हिल स्टेशन पे शूट भी किया।
0: चलिए
1: हालांकि
0: इसी गीत की झलक हम अपने श्रोताओं को सुनवाते हैं।
1: बिल्कुल सर, थैंक यू। इसका नाम है, शीर्षक है पिया की दासी।
0: जी आइए सुनते हैं।

0: विपुल जी, ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एक सीरीज आई थी, मिसेस सीरियल किलर
1: जी,
0: हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। वो कैसे प्रोजेक्ट आप तक आया और कैसा रहा वो सारा अनुभव?
1: वो प्रोजेक्ट भी मुझे ऐसी एक लीडिंग कास्टिंग डायरेक्टर के थ्रू आया।
0: अच्छा,
1: मिसेस सीरियल किलर, जिसमें हमारे देश के बहुत ही लीडिंग और बहुत ही सराहे हुए मनोज वाजपेयी साहब कैरेक्टर कर रहे थे, और मुझे उसमें एक सिक्योरिटी इंचार्ज की भूमिका दी गई।
0: अच्छा,
1: छोटा सा किरदार था, लेकिन जैसे मैंने बताया कि हर एक, जैसे ऑडिशन भी हमें देना चाहिए, वैसे हर एक छोटा किरदार भी आपको कहीं ना कहीं आगे लीड दे सकता है।
0: जी,
1: जब
0: जी।
1: तक जैसे मैंने एक साथ ही, मैं अभी इसकी बात निकली, एक छोटे किरदार से, तो हम लोग रुद्रा नाम की एक सीरीज आई थी जिसे डायरेक्ट कर रहे थे राजेश मापुस्कर साहब।
0: अच्छा,
1: बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अच्छे प्रतिभावान दिग्दर्शक है
0: जी।
1: रुद्रा में लीड थे अजय देवगन साहब, तो वो कैरेक्टर मुझे आया। हालांकि मैंने बोला कि नहीं यार, एक दिन का छोटा सा कैरेक्टर नहीं करता हूँ। फिर बहुत बार बात हुई, उन्होंने कहा कि यार, वो डायरेक्टर सर ने बोला कि आपसे ही कराएं।
0: अच्छा,
1: उनको अच्छा लगा और उनको थोड़ी टॉवरिंग पर्सनालिटी चाहिए अजय देवगन साहब के सामने। मैंने बोला, अजय देवगन साहब को के सामने कौन टॉवरिंग दिखेगा? नहीं नहीं, आपकी हाइट की वजह से आप वो हो जाएंगे। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा कि वैसे में मैं घर पे बैठने वाला हूँ, क्योंकि उस दिन मेरे पास काम था नहीं।
0: अच्छा,
1: तो मैं एटलीस्ट घर पे अगर कोई ऑडिशन दूं, उससे बेटर मैं वहां पे जाकर ऑडिशन दे दूं।
0: बिल्कुल,
1: मतलब मैं परफॉर्म कर लूं, लोग कहीं ना कहीं तो देखेंगे।
0: बिल्कुल,
1: थिंग्स हैपन दैट वे ओनली। आई वेंट देयर, दे लाइक माय वर्क। हालांकि बातचीत हमेशा होती है मेरी, बट शायद उनके जहन में कोई ऐसा करेक्टर आया इन फ्यूचर जो मुझे वो रिकमेंड करते, एटलीस्ट उन्होंने मेरा काम देखा हुआ है। सेम वे मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मैंने किया था इंडियन पुलिस फोर्स, जो कि रोहित शेट्टी सर का था।
0: जी जी जी।
1: तो वो एक कैरेक्टर उसमें भी छोटा था, आई वॉज पार्ट ऑफ कोर टीम, बट परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन्स बहुत कम थे।
0: अच्छा,
1: बट रोहित सर के साथ काम करना, उनका वर्किंग स्टाइल देखना एक अपने आप में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। जिस तरह से पूरा झोंक देते हैं अपने आप को,
0: जी, जी।
1: उनकी वो और उनकी पूरी टीम, वो देखने लायक है, वो समझने लायक है, सीखने लायक है। तो वो बड़ा अच्छा लगा। फिर उसी दौरान बरसाते नाम का एक प्रोजेक्ट मेरे पास आया, बालाजी टेलीफिल्म्स, एकता कपूर जी के प्रोडक्शन में।
0: क्या बात।
1: तो हालांकि फादर का कैरेक्टर जब मुझे बोला गया टू अ हीरोइन हु इज इन 20s,
0: अच्छा,
1: मैंने बोला यार कुछ साल तो रुक जाओ। तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, वो अडॉप्टेड डॉटर होगी आपकी।
0: अच्छा,
1: और अभी जैसे मेरा भी बेटा 15 साल का है, तो जो रहेगी आपकी बेटी वही 12-13 साल की एक रहेगी, और ये अडॉप्टेड डॉटर होगी, ऐसा
0: अच्छा,
1: दिखाएंगे।
0: अच्छा,
1: और कैरेक्टर अच्छा था। जब मैं कैरेक्टर का स्क्रीन प्ले मैंने पढ़ा, उसके बारे में पढ़ा ब्रीफ क्या है, तो कैरेक्टर अच्छा था। और मैं हमेशा कैरेक्टर के प्रोफाइल को ज्यादा महत्व देता हूं कि आप जो परफॉर्म करने वाले हो
0: जी जी,
1: क्या उसमें कोई गुंजाइश है कि आप कुछ अलग कर पाओ, क्या कोई वेरिएशन आप दे सकते हो।
0: अच्छा,
1: दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। इसलिए मैं निगेटिव कैरेक्टर्स को भी बहुत ज्यादा अहमियत देता हूं।
0: हाँ,
1: क्योंकि एक पॉजिटिव कैरेक्टर अच्छा अच्छा गुड़ी गुड़ी सब अच्छा करेगा, थोड़ा बहुत कॉमेडी करेगा, लेकिन एक जो निगेटिव कैरेक्टर है वो अच्छा काम भी, एक्सप्रेशन भी दे सकता है, गुड़ी गुड़ी सरकास्टिक विलन, तो
0: कई शेड्स
1: हो सकते हैं
0: जी।
1: सो जितने रस वो दिखा सकता है उतने एक पॉजिटिव इसमें शायद ही आते होंगे। तो मुझे निगेटिव कैरेक्टर्स करने में बड़ा मजा आता है।
0: अच्छा,
1: तो मैंने किए भी हैं कुछ नेगेटिव कैरेक्टर। मैंने कोड रेड नाम की सीरियल की थी जिसमें भाऊ जमींदार का कैरेक्टर किया था।
0: हाँ,
1: मैंने सुना था वेरी गुड थिंग, जिसमें वो लोगों को अपने पासे में लेत के, यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में ये हुआ था, ऐसा ट्रू स्टोरी थी।
0: जी जी।
1: उनको गलत बीज देता है और जब वो खराब हो जाते हैं तो उनकी जमीन हथिया लेता है।
0: ओह,
1: इस टाइप का एक कैरेक्टर था, लेकिन बड़ा मजा आया वो करते हुए। तो ये सब चीजें ऑन बेसिस, तो बरसाते में मुझे ऐसी लगा कि वो पॉजिटिव ही कैरेक्टर था
0: जी,
1: लेकिन उसमें बहुत सारे वेरिएशन थे।
0: अच्छा,
1: तो बरसाते मेरा एक ऑलमोस्ट एक साल वो शो चला। एक वो सेटअप जो है अपने आप में, बालाजी टेलीफिल्म बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है इंडस्ट्री का
0: जी,
1: तो वो एक देखने को मिला कि मल्टी कैमरा सेटअप, ह्यूज सेट्स और वेरी प्रोफेशनल एंड कट टू कट एटीट्यूड ऑफ द पीपल।
0: अच्छा,
1: वो एक अपने आप में सीखने के लिए एक अच्छा ये था। बरसाते बहुत अच्छी मेरी जर्नी रही।
0: जी जी, जी। क्या बात है। कार्यक्रम के इस मोड़ पे हमारे श्रोताओं को कौन सा गीत या कोई गाना

0: आप सुनवाना चाहेंगे?
1: अगेन बीइंग पॉजिटिव ऑन द नोट्स, मैं बहुत ज्यादा वैसा भी नहीं हूँ कि बी पॉजिटिव बी पॉजिटिव. जब किसी दिन आपका मूड सही नहीं है तो आप नॉर्मल भी रह सकते हो, उदास भी रह सकते हो. लेकिन ऐसे ही वक्त कुछ ऐसे गाने हैं जो मुझे बड़ा अच्छा फील करा जाते हैं
0: जी.
1: जिसमें से एक स्वदेश का गाना था, यूं ही चला चल रही.
0: हाँ हाँ, मकरंद देशपांडे,
1: मकरंद जी थे उसमें.
0: हाँ, वो फिल्म
1: शाहरुख भाई ने भी उसमें
0: हाँ,
1: साथ में उनके किया, और बहुत ही खूबसूरत एक उनकी कारवान में वो चले जा रहे हैं
0: जी जी,
1: और ये गाना चल रहा है. और अभी बारिश आने ही वाली है.
0: हाँ,
1: जून में हम बात कर रहे हैं आज, तो आई एम श्योर कि इन अ वीक्स टाइम वी विल गेट अ गुड रेन.
0: हाँ,
1: और इस मौसम में बढ़िया अपनी गाड़ी या बुलेट, मतलब जो भी है पॉसिबल आपको, और वो लेके आप चलो.
0: हाँ,
1: और फिर ये गाना अगर सुनो तो आप स्वदेश में ही पहुंच जाते हो.
0: क्या बात है, चलिए सुनते हैं यही गीत
1: जी.

0: विपुल जी, ये जो लंबा समय आपने इस क्षेत्र में बिताया है, अलग अलग तरह के अनुभव, और हम अभी इस गीत के पहले जो बात कर रहे थे कि एक अभिनेता कई बार मन में सोचता है कि काश मैं इस कहानी का डायरेक्टर होता, ये आपके मन में भी आया होगा। तो अभी क्या आगामी समय में आपके जो है प्रोजेक्ट्स क्या क्या होने वाले हैं, आपने भविष्य में क्या कुछ योजनाएं बनाई होंगी कि मुझे आगे क्या करना है, उसके बारे में जानना चाहेंगे।
1: मैं हमेशा इसी फील्ड से रिलेटेड जुड़ा रहना चाहूंगा।
0: जी
1: तो सबसे ज्यादा रिसेंटली 4 महीने पहले मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की, एक एनजीओ है सेंटर ऑफ साइंस फॉर विलेजेस वर्धा में,
0: अच्छा
1: जिसके लिए मैंने एक डॉक्यूमेंट्री शूट की। आई प्रोड्यूस

0: It created it actually with a friend of mine who is camera. मैं चाहता हूं कि ऐसे ही कुछ डॉक्यूमेंट्रीज या इंफॉर्मेटरी फिल्म्स, ऑडियो विजुअल्स
1: जी।
0: मैं एक साइड बनाता रहूं, एक छोटा सा प्रोडक्शन हाउस जिसके साथ साथ हम हमारी फिल्म्स को भी फंड कर पाए,
1: अच्छा
0: हमारे खुद के प्रोडक्शन के अंडर. हम जैसे मैंने आपको बताया IPC 324, एक मेरे दिमाग में बहुत अच्छी स्टोरी है जो रंजीत सर को भी स्टोरी बहुत पसंद आई,
1: जी
0: बट हालांकि वही फाइनेंस के चलते वो फिलहाल तो बैक बर्नर पे है, बट आई एम श्योर कभी ना कभी फ्रंट बर्नर पे आके हम उसे पकाएंगे.
1: जी
0: और फिल्म्स मेजरली मैं करना चाहता हूं, ऐसा अभी चॉइस तो होता नहीं है, लेकिन आई एम स्टिल वेटिंग फॉर गुड कैरेक्टर.
1: जी
0: मैंने वागले के बाद में अभी वागले की दुनिया के बाद में अभी कोई लंबा कमिटमेंट साइन तो नहीं किया है,
1: जी
0: तो आई एम वेटिंग फॉर इट कि जो लेवल पे मनोज वागले ने डिलीवर किया था उसी लेवल का कोई एक अच्छा
1: और
0: किरदार.
1: एक सवाल हमेशा अभिनेताओं से खास करके पूछा जाता है कि बचपन से हम तरह तरह की कहानियां पढ़ते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, और कोई ऐसा कैरेक्टर होता है, कोई रोल होता है जो जहन में बस जाता है कि काश मुझे ये करने को मिल जाए, तो वो कौन सा कैरेक्टर है, कौन सा चरित्र है जो आप निभाना चाहते हैं, अब तक मौका नहीं मिला?
0: ये अभी आजकल इतना एक्सपोजर बढ़ा हुआ है
1: जी जी
0: बिकॉज दायरे OTT अपने आप में इतना बड़ा है, इतने सारे चैनल्स आए हैं, तो बहुत अलग है. अगर पहले के इसमें से देखा जाए तो बच्चन साहब की एक फिल्म थी
1: जी
0: मैं आजाद हूं, वो कैरेक्टर मुझे बड़ा पसंद आता था
1: अच्छा
0: क्योंकि एक ऐसा इंसान इस शहर में आता है जिसका कोई लेना देना है नहीं उस शहर से और बड़ा ही फकीर टाइप का है, और वो उस शहर को बदलने के लिए, उस सिस्टम को बदलने के लिए सबसे लड़ जाता है.
1: ओहो क्या बात।
0: तो वो एक बड़ा खूबसूरत, और उसका गाना भी उतना ही खूबसूरत था, इतने बाजू इतने सर गिन ले दुश्मन ध्यान से,
1: हाँ
0: हारेगा वो हर बाजी जब खेले हम जी जान से.
1: वाह वाह
0: तो ये एक बड़ा खूबसूरत सा गाना उस इसमें था और फिल्म भी उतनी खूबसूरत थी. तो मैं चाहता हूं इस टाइप का जो एक चैलेंजिंग किरदार हो वो करने को कभी मिले तो मजा आए.
1: हमारे श्रोताओं के लिए कौन सा गीत आपके मन में आ रहा है?
0: मेरे ख्याल से ये जो गाना मैंने अभी बताया ये गाना
1: यही
0: ही
1: गाना सुन
0: बहुत
1: लें।
0: एप्ट
1: बिल्कुल
0: होगा कि हम जब जी जान से खेलते हैं,
1: जी
0: जी जान से लड़ते हैं,
1: जी
0: तो दुश्मन तो मैं बाद में बोलूंगा दुश्मन, नॉट नेसेसरी कि हमेशा दुश्मन ही सामने हो, लेकिन हम अगर जी जान से कोई चीज करते हैं, पैशनेटली कोई चीज करते हैं,
1: बिल्कुल
0: तो आपको मजा आता है और वो चीज होती जरूर है मुकम्मल.

0: दुश्मन जरूरी नहीं कि कोई शख्सियत हो,
1: शख्सियत हो,
0: हमारे मन के अंदर जो बुरे विचार हैं,
1: ट्रू,
0: वो भी दुर्भावनाएं जो होती हैं, वो भी हमारी दुश्मन है,
1: ट्रू ट्रू। और ये इन सबको लड़ने के लिए आपका पैशन होता है
0: जी,
1: आपकी फैमिली होती है, जैसे कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया हमेशा जब भी पॉसिबल हो, अभी भी मुझे कभी लगता है तो दे आर देयर टू हेल्प मी। आपका खुद का एक परिवार है, आपके दोस्त हैं, ये सब आपको उन सब चीजों के लड़ने के लिए प्रेरित करते हैं और लिव लाइफ हैप्पीली, दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग।
0: क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। विपुल जी, आपका अब तक का जो करियर ग्राफ रहा है
1: जी,
0: इसमें आपने वेब सीरीज की है, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे कई जगह आप एक्टिव रहे हैं, आपने मंच पर भी अपने आप को आजमाया है, आपने फिल्मों में काम किया है, टीवी सीरियल्स में आप आए हैं। विपुल देशपांडे कहां बहुत ज्यादा सहज होते हैं, बहुत कंफर्टेबल होते हैं?
1: बतौर कलाकार विपुल देशपांडे ने हर जगह सहजता से काम करना चाहिए
0: जी जी।
1: बट अगर पर्सनल बात की जाए तो थिएटर, ये एक रंगमंच जो है,
0: हाँ,
1: ये किसी भी कलाकार के लिए शायद सबसे करीबी होता है।
0: अच्छा।
1: क्योंकि वहां पे जो आपके व्यूअर्स का रिस्पॉन्स है आपको तुरंत मिल जाता है।
0: हाँ।
1: और उसे बहुत खूबसूरती से रंजीत साहब कहते थे कि उसे प्रयोग कहा जाता है, उसे शो या प्ले नहीं कहा जाता, प्रयोग। हर एक प्रयोग जो होता है उसमें आप अलग अलग एक्सपेरिमेंटल कर सकते हो कि कहीं पे आपने ये पंच लिया, कहीं पे आपने थोड़ा लंबा पॉज लिया, सो यू नो यू कैन कीप प्लेइंग, आप खेलते हो उसमें
0: जी, जी जी।
1: तो वो एक बहुत ही बेहतरीन माध्यम है जो कि आपको आपके प्रेक्षकों से जोड़े रखता है। तो मेरे ख्याल से रंगमंच मेरा सबसे फेवरेट रहेगा, और नो डाउट फिल्म्स, ओटीटी, टेलीविजन, ये इसलिए कि आप एक जगह काम करके बहुत सारे करोड़ों लाखों लोगों के सामने पहुंच सकते हैं, जो कि रंगमंच में पॉसिबल नहीं है
0: जी जी। हम जो भी अपने जीवन में प्राप्त करते हैं, अचीव करते हैं, तो उसके लिए हम किसी के प्रति कृतज्ञ होते हैं
1: जी,
0: और जिनसे हम प्रेरित होते हैं ऐसे भी कुछ लोग होते हैं, तो वो जो टर्निंग पॉइंट होता है जहां से जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आया है, तो हम हमेशा चाहते हैं कि ये कृतज्ञता किसी रूप में व्यक्त की जाए। तो विपुल, आप किसे के प्रति अपने कृतज्ञता व्यक्त करेंगे?
1: ये कृतज्ञता शायद मैं मेरे माता पिता के प्रति ही व्यक्त करना चाहूंगा।
0: हाँ हाँ।
1: भले ही उन्होंने पहले मुझे वो अपॉर्चुनिटीज, उन्हें भी पता नहीं था कि एक्सपोजर नहीं था जो मुझे वो दे पाते, NSDFTI, ये सब चीजें हमें पता नहीं थी।
0: हाँ।
1: लेकिन उसके बाद जब मैंने बोला कि मुझे इस फील्ड में काम करना है, तो मेरी माँ ने, मेरे पिताजी ने मुझे काफी सपोर्ट किया, आज भी करते हैं
0: जी जी।
1: एक कलाकार की जिंदगी बड़ी अनसर्टन होती है, तो कभी कभी ऐसा लगता है कि, तो सभी तरह से वो मुझे सपोर्ट करते हैं आज भी।
0: हाँ।
1: और यहाँ पे जैसे इंस्पिरेशन की अगर बात करें, तो डेफिनेटली मैं बचपन से, जैसे मैं बड़ा हुआ हूं
0: जी,
1: और मैंने सर को बोला भी था कि बच्चन साहब हमेशा इंस्पिरेशन रहे हैं, उनको देख के, उनकी आवाज, उनका कद काठी, भगवान की दया से कद काठी मैं थोड़ा मैच कर लेता हूँ
0: जी जी।
1: बाकी बहुत सारी चीजें उनसे ही सीखी है, मतलब एकलव्य जैसा सफर रहा है।
0: हाँ।
1: जो कि दूर से देख के, ऑब्जर्व करके सीखने वाली बात होती रही है।
0: वाह।
1: वो भले फेस टू फेस और पर्सन टू पर्सन, मतलब
0: जी,
1: ट्रेनिंग ना हुई हो, बट ये ऑब्जर्वेशन वाला, एकलव्य वाला जो है, वो मुझे लगता है मेरा इसमें बहुत रहा है। और मैंने बच्चन साहब को ये बोला भी था
0: जी, जी,
1: कि आपसे ही सीखते आए हैं बचपन से।
0: सीखने की जो ये प्रक्रिया है, इसमें यहीं से कहीं संघर्ष भी शुरू होता है, तो हम इस पे बात करेंगे, मगर यहाँ इस मोड़ पे एक गाना सुनते हैं आपकी पसंद का।
1: जब संघर्ष की बात आई है, तो एक मिल्खा सिंह जो थे, मिल्खा जी,
0: हाँ,
1: उनके फिल्म का एक गाना है कि जिंदा है तो प्याला पूरा भर दे।
0: हाँ।
1: ये मुझे बड़ा बेहतरीन गाना लगता है।
0: क्या बात है
1: जी,
0: चलिए सुनते हैं।

0: इस गीत से पहले विपुल हम बात कर रहे थे कि जीवन में हम कुछ करते हैं और किसी मुकाम तक पहुंचते हैं तो उसमें संघर्ष की अपनी भूमिका होती है।
1: जी
0: इस संघर्ष के बारे में अब तक जितनी बातें आपसे हुई है तो आपके एक अलग सोच रखते हैं संघर्ष के बारे में। और जहां तक फिल्मी दुनिया की बात है, ये तमाम जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है इसमें काम करने वाले लोग, सबकी अपनी अलग कहानी होती है और सबका अलग संघर्ष होता है।
1: बिल्कुल
0: तो वो कौन सा विचार है जो आप इस संघर्ष के बारे में कहना चाहते हैं, वो अलग बात जो है आपके मन में?
1: संघर्ष, जैसे कि शायद पहले भी हमारी बात हुई कि संघर्ष जिंदगी में हमेशा रहेगा। जिंदगी है तो संघर्ष है,
0: जी
1: और अगर संघर्ष नहीं चाहिए तो युडाय है। तो ये तो खैर नहीं होता है, हम लोग करते रहते हैं। और मैं चाहता हूं कि हर किसी इंसान को जिस फील्ड में जाना है उसके लिए शायद कोई गाइडेंस अवेलेबल हो
0: अच्छा
1: तो बहुत अच्छी बात होती है।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: अभी यहां पे ये गाइडेंस ऑलमोस्ट अवेलेबल नहीं है। हालांकि राहत इंदौरी साहब के कुछ शेर है जो मैं हमेशा पसंद करता हूं कि हमसे पहले भी मुसाफिर कई गुजरे होंगे यहां से कम राह के पत्थर तो हटा देते हैं। तो मैं ये चाह रहा था कि ये चीज एटलीस्ट मेरे बाद में जितने लोग आना चाहते हैं इस इंडस्ट्री में
0: हाँ
1: उन्हें एक गाइडेंस के तौर पे, एक ब्रदरली फ्रेंडली गाइडेंस के तौर पे अवेलेबल हो। तो 2018 में स्ट्रगल स्मार्ट नाम से एक छोटा सा स्टार्टअप मैंने चालू किया था
0: अच्छा
1: जिसमें एक एक्सपोजर वर्कशॉप मैंने कहा था। कलाकार को कला सिखाना बहुत कम दिनों में पॉसिबल नहीं है, लेकिन आप उसे थोड़ा ब्रशअप कर सकते हैं, उसे बता सकते हैं, एक्सपोजर दे सकते हैं इंडस्ट्री का।
0: जी
1: जो हमने किया, मैंने ट्राई किया, उसमें से 6 पार्टिसिपेंट्स आए थे, 3 मेल 3 फीमेल। उसमें से 3 पार्टिसिपेंट्स आज फुल फ्लेज ऑलमोस्ट इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
0: वाह
1: बतौर कलाकार।
0: वाह वाह
1: और उसके बाद भी हमने कुछ ऑनलाइन सेशंस लिए, सिम्बायोसिस कॉलेज के साथ भी मैंने सेशंस लिए 2 साल। उसमें यतिन कारेकर जी, अश्विनी कर्शिकर मैडम, राजेंद्र शिराडकर जी
0: जी
1: और शंतनु रोड़े जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं
0: जी
1: डायरेक्टर,
0: जी
1: ऐसे बहुत सारे लोगों ने योगदान दिया। ये कंटिन्यू करना चाह रहा था बट देन आई गॉट बिजी विथ

0: मोर प्रोजेक्ट्स
1: हाँ
0: वो हो नहीं पाया, बट मैं अभी भी चाहता हूं कि एक ऐसा मैं कुछ जरिया बनाऊं कि जो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से लोग आए और एक मिनिमम फी स्ट्रक्चर में उसको एक्सेस कर पाए, और जो यहाँ पे लोग हैं जो फॉर एग्जांपल जिनके पास समय है जो
1: जी
0: गाइड कर सकते हैं, जैसा अगर कोई कलाकार एक्टिंग उस दिन असाइनमेंट नहीं है तो वो फ्री होता है, उसके पास में अगर समय है तो वो आके हमारे साथ समय बिताएं, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स हो,
1: जी जी जी
0: लोगों को उसके बारे में पता चलता रहे,
1: क्या
0: तो
1: बात
0: ये
1: है।
0: मेरा सबसे जरूरी है। अदरवाइज तो वहां पे घर पे बैठ के थोड़ा सा डरते ही है कि कौन जाएगा कैसे जाएगा। तो इस पे भी एक इंदौरी साहब का शेर था कि लोग हर मोड़ पे रुक के संभलते क्यों हैं,
1: अच्छा
0: अगर इतना डरते हैं तो घर से निकलते क्यों हैं।
1: ओह क्या बात
0: दिस इज वन ऑफ द थिंग। तो ये हमने
1: हाँ
0: रेगुलर बेसिस पे करना चाहिए, और मैं चाहता हूं कि ये मैं
1: जी
0: कंटिन्यू
1: जी
0: करूं। तो स्ट्रगल स्मार्ट मैंने नाम भी इसलिए ऐसा चुना और वो मुझे मिल भी गया, strugglesmart.com, कि आपको स्ट्रगल करना है तो स्मार्टली करो
1: अच्छा
0: और उसको दिल से करो, उसको एंजॉय करके करो। संघर्ष कोई गलत बात नहीं है या कुछ निगेटिव सोच वाली बात नहीं है, पॉजिटिव
1: हाँ
0: बात है।
1: इसमें कोई फिलहाल जो भारत में किसी कोने में कोई कलाकार रह रहा है और वो चाहता है कि आपसे जुड़े, इस आपके स्ट्रगल स्मार्ट से जुड़े, तो क्या इस वेबसाइट पे ऐसी कोई व्यवस्था है?
0: ये व्यवस्था हमारी, जब मैंने कहा था कि 2018 में चालू किया था, ये दो
1: जी
0: दो तीन साल रेगुलर बेसिस पे चलती रही। लोग कांटेक्ट कर सकते थे, हम उनको डिटेल्स भेज के हमारे प्रोग्राम्स से अलाइन कर सकते थे। जैसा मैंने कहा कि 3-4 साल से मैं कुछ ज्यादा बिजी हो गया बाकी प्रोजेक्ट्स के साथ, तो फिलहाल strugglesmart.com वेबसाइट मेरी ऑपरेटिव नहीं है, इट इज विथ मी,
1: अच्छा
0: द डोमेन नेम इज ऑल्सो विथ मी, जो हमारे
1: ओके
0: साथ ही है।
1: जी
0: मैं
1: जी
0: उसे फिर से एक्टिव करना चाहता हूँ, और तब तक अगर बाई चांस किसी को करना हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगा कि मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे वो कांटेक्ट कर सकते हैं। आई डेफिनेटली आई वुड लव टू गाइड देम। विपुल देशपांडे ऑफिशियली मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, इस पे हम डेफिनेटली उनको गाइड कर सकते हैं। और बहुत जल्द मैं चाहूंगा कि स्ट्रगल स्मार्ट भी एक्टिव हो और मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को गाइड कर पाऊं, जितना मैं कर सकता हूं। मैं बहुत बड़ा
1: जी
0: कलाकार
1: जी
0: तो हूं नहीं, लेकिन जितना मैं कर सकता हूं मेरे ख्याल से वो मेरे लिए एक
1: निश्चित रूप
0: योगदान।
1: से, और जितने भी कलाकार हैं जो संघर्षरत हैं और जो आना चाहते हैं, तो उनकी ओर से भी मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देता हूं। और यहां हम कोई गाना सुनते हैं।
0: ये किस्सा भी शायद हमारी बात हुई थी
1: जी
0: कि लोग यहाँ पे आपको कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड लेते,
1: हाँ
0: कि आपको बोलते हैं कि हाँ भी आप आ जाओ, आपको बोला जाता है कि आप कोर टीम के सदस्य हो,
1: हाँ
0: सपोज टू बी कि आप बहुत अच्छा, आपका कैरेक्टर होगा, लेंथ होगी, तो होता है। लेकिन एक मेरे साथ भी वाकया हुआ है कि मैंने एक बहुत बड़ी वेब सीरीज की
1: जी
0: जिसमें मुझे कोर टीम का सदस्य बनाया गया और बहुत अच्छा रिस्पेक्ट, बहुत अच्छे ट्रीटमेंट के साथ रखा गया, लेकिन परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सीन नहीं थे।
1: हाँ
0: तो
1: आप मुख्य कलाकारों में तो हैं,
0: बिल्कुल
1: मगर इतने ऐसे सीन नहीं है, डायलॉग्स नहीं है, काम नहीं है, और कोई उस रोल का अपना अलग महत्व
0: इम्पोर्टेंस,
1: नहीं है।
0: महत्व नहीं है।
1: ओह
0: तो वो बड़ा ही मुझे खलता रहा कि यार मैं, एक लिमिटेड टाइम होता है हर एक के पास।
1: हाँ
0: आज मेरे पास में इस उम्र के यही है 10 साल,
1: जी
0: उसके
1: जी
0: बाद शायद मैं दूसरे जोन में जाऊंगा, शायद वो सीनियर सिटीजन वाला मैं करूंगा, या 15 साल बाद कुछ और सीन रहेगा।
1: हाँ
0: तो मैं इस दौरान जितनी चीजें करना चाहता हूँ, करना चाहता हूँ कि उसको मैं न्याय दे सकूं। तो दूसरी बार जब उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया तो मैंने कहा भाई मुझे 50 दिन मत बुलाओ, मुझे आप एक ही दिन बुलाओ, बट वो एक दिन में एक सीन ऐसा मेरा होना चाहिए कि जिसमें मैं परफॉर्म कर रहा हूं,
1: लगे कि मैंने काम
0: लगे कि
1: किया।
0: विपुल देशपांडे ने कुछ काम किया है, कुछ योगदान दिया है।
1: जी जी जी
0: तो
1: जी
0: मेरा
1: बिल्कुल
0: सीधा सीधा मानना है कि अगर मैं ताज हूं तो ताज को सर पे सजाए लोग,
1: ओहो
0: और अगर मैं खाक हूं तो खाक तो उड़ा देनी चाहिए।
1: क्या बात है, क्या बात है,
0: तो बस यही एक चीज थी जो मैं ऐड करना चाह रहा था।
1: क्या बात, क्या बात।
0: बाकी संघर्ष की बात हो रही थी, उसमें दंगल का एक टाइटल ट्रैक है, वो गाना है कि माँ के पेट से मरघट तक है तेरी कहानी पग पग प्यारे। तो
1: वाह
0: संघर्ष की शुरुआत माँ के पेट से होती है और वो मरघट तक होती है।
1: क्या बहुत ही खूबसूरत
0: बहुत
1: गाना है,
0: खूबसूरत गाना
1: आइए सुनते हैं।
0: जी।

0: तो जितनी आपकी भविष्य की योजनाएं हैं उनके लिए जो आप करना चाहते हैं आगे, जितने आपके सपने हैं जो अभी पूरे होने बाकी है, उनके लिए हम विविध भारती परिवार की ओर से, विविध भारती के तमाम सुनने वालों की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ आने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, विविध भारती का, आपकी पूरी टीम का, कि मुझ जैसे नाचीज को भी आपने यहाँ पे आने का मौका दिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, और मैंने आने के बाद वॉल ऑफ फेम आपका और
0: जी
1: लॉबी ऑफ फेम भी देखा। यहाँ पे
0: हाँ
1: कौन
0: हाँ
1: नहीं आया है,
0: जी जी
1: मुझे बड़ा ही गर्व हो रहा है कि मैं इसी जगह पे आके बैठा हूँ और एक प्रोग्राम में आपसे बात कर रहा हूँ, रूबरू हो रहा हूँ। थैंक यू सो मच।
0: बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभिनेता विपुल देशपांडे से जयंत पात्रिकर की बातचीत का दूसरा भाग अभी आपने सुना। रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग, संपादन सहायक काजल भदरके, प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान।

सुन रहे थे अभी आप विविध भारती के कार्यक्रम आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। संध्या के 5 बजे हैं। अब सुनिए हमारे युवा श्रोताओं का कार्यक्रम युववाणी।

0: हेलो दोस्तों, मैं हूं आज आपका दोस्त और होस्ट संजीव गौतम और स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम युववाणी में, जिसमें होगी आज की बात कुछ रोचक जानकारियों के साथ और साथ ही करवाएंगे आपका मनोरंजन कुछ फिल्मी गीतों के साथ। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज का दिन भारत के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। आज हम चंद्रयान 3 की ऐतिहासिक सफलता को याद करते हुए उन वैज्ञानिकों के समर्पण, परिश्रम और दूरदर्शिता को नमन करते हैं जिन्होंने भारत का तिरंगा चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव तक पहुंचा दिया। यह उपलब्धि केवल विज्ञान की जीत नहीं बल्कि भारतीय विशेषकर युवाओं के सपनों और आत्मविश्वास की जीत है। दोस्तों, चंद्रयान 3 हमें सिखाता है कि कठिनाइयां चाहे कितनी भी बड़ी हों, यदि लक्ष्य स्पष्ट हो और प्रयास निरंतर हो तो सफलता निश्चित मिलती है। यह मिशन देश के युवाओं को विज्ञान, तकनीक, नवाचार और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। यही युवा शक्ति विकसित भारत की सबसे बड़ी ताकत है। तो साथियों, इसी प्रेरणादायक विषय को और विस्तार से समझने के लिए आइए सुनते हैं यह वार्ता, चंद्रयान 3 की सफलता और उसके महत्व, जिसमें वार्ताकार हैं हरगुण कौर।
1: अंतरिक्ष की खोज हमें यह सिखाती है कि संकल्प और दृढ़ता के साथ हम किसी भी सीमा को पार कर सकते हैं। चंद्रयान 3 की सफलता केवल तकनीकी उपलब्धि नहीं है बल्कि यह हमारे वैज्ञानिक, तकनीकी और राष्ट्रीय समर्पण की कहानी भी है। आज हम न केवल उन उपलब्धियों का सम्मान कर रहे हैं जो हमें यहाँ तक ले आए, बल्कि हम उन प्रयासों की भी सराहना कर रहे हैं जिन्होंने हमें चंद्रयान 3 की सफलता की ओर मार्गदर्शित किया। चंद्रयान 3 भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर है, लेकिन इस सफलता की यात्रा में कई महत्वपूर्ण मिशन और प्रयास शामिल हैं जो इसके निर्माण और सफल लैंडिंग का नींव बने। आइए हम उन मिशनों की महत्वता को जानें जिन्होंने चंद्रयान 3 की सफलता की नींव रखी। हमारी अंतरिक्ष यात्रा की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी, लेकिन इस यात्रा का आधुनिक युग 22 अक्टूबर 2008 को शुरू हुआ जब भारत ने पहला चंद्रमा मिशन चंद्रयान 1 लॉन्च किया। इस मिशन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि इसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा स्वदेशी रूप से विकसित किया गया था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा के ऑर्बिट में प्रवेश किया और 2 नवंबर 2008 को चंद्रमा की कक्षा में स्थापित हो गया। इसके मुख्य उद्देश्यों में चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेतों की खोज और चंद्रमा के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन शामिल था। चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर हाइड्रोक्सिल और पानी के अणुओं की खोज की, जिससे वैज्ञानिकों को यह पता चला कि चंद्रमा की सतह पर

पानी के संकेत मौजूद हैं। इसने चंद्रमा की सतह की 3D मैपिंग की, जिससे चंद्रमा के भूगोल और भूवैज्ञानिक संरचनाओं के बारे में नई जानकारियां प्राप्त हुई। यह खोजें महत्वपूर्ण थी और अंतरिक्ष अनुसंधान की दिशा बदलने में सहायक रही। इसके बाद मंगलयान या मार्स ऑर्बिटर मिशन को 5 नवंबर 2013 को लॉन्च किया गया। यह भारत का पहला अंतर्ग्रह मिशन था और इसका उद्देश्य मंगल ग्रह का वातावरण और सतह का अध्ययन करना था। मंगलयान ने 24 सितंबर 2014 को सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में प्रवेश किया और भारत को मंगल पर सफलता प्राप्त करने वाला एशिया का पहला देश बना दिया। इसने मंगल ग्रह की सतह पर विभिन्न प्रकार की जानकारी प्रदान की, जिसमें वहां की मौसम परिस्थितियों, भूगोल और वायुमंडल की संरचना शामिल है। मंगलयान के द्वारा प्राप्त डेटा ने वैज्ञानिकों को मंगल की सतह पर मीथेन के संकेत खोजने में मदद की, जो जीवन का संभावित संकेत हो सकता है। इस मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम की क्षमताओं को विश्व स्तर पर मान्यता दी। इसके कुछ वर्ष बाद चंद्रयान 2 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। इसमें 3 प्रमुख घटक थे, ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर। चंद्रयान 2 के विक्रम लैंडर का नाम डॉक्टर विक्रम साराभाई के नाम पर रखा गया था। हालांकि विक्रम लैंडर की 6 सितंबर 2019 को चंद्रमा की सतह पर लैंडिंग में तकनीकी समस्याएं आईं और इसका संचार संपर्क टूट गया, जिससे रोवर प्रज्ञान चंद्रमा की सतह पर नहीं उतर सका। लेकिन ऑर्बिटर ने मिशन के दौरान सफलतापूर्वक कार्य किया। इसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र की विस्तृत छवियां और उच्च गुणवत्ता वाली तस्वीरें भेजी और चंद्रमा की सतह की जियोलॉजिकल और भौगोलिक जानकारी प्रदान की। चंद्रयान 2 ने चंद्रमा के विभिन्न तत्वों की उपस्थिति का पता लगाया और चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्र में पानी के बर्फ के संकेतों की पुष्टि की। इसके डेटा ने चंद्रमा की सतह और जियोलॉजिकल संरचना के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान की और यह भविष्य के अभियानों के लिए आवश्यक डेटा और जानकारी उपलब्ध कराता है। इस मिशन ने भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। अब बारी आती है उस मिशन की, जिसकी सफलता का जश्न हम 23 अगस्त को मनाएंगे। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था और इसको लॉन्च करने की घोषणा 29 मई 2023 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चीफ श्री एस सोमनाथ जी ने की थी। चंद्रयान 3 एक अत्यंत महत्वपूर्ण और उच्च महत्वाकांक्षी मिशन था। यह मिशन चंद्रयान 2 के बाद चंद्रमा पर सफल सॉफ्ट लैंडिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास था। चंद्रयान 3 का प्रमुख उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक उतरना और वहां पर व्यापक वैज्ञानिक प्रयोग करना, विशेषकर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में, जिसे अभी तक पूरी तरह से अन्वेषित नहीं किया गया था। चंद्रयान 3 के 3 प्रमुख घटक लैंडर, रोवर और एक ऊपरी चरण थे। इस मिशन में ऑर्बिटर शामिल नहीं था, क्योंकि चंद्रयान 2 का ऑर्बिटर पहले से ही चंद्रमा की कक्षा में सक्रिय था और उसने कई महत्वपूर्ण डेटा एकत्रित किया था। विक्रम लैंडर को विशेष रूप से चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग के लिए तैयार किया गया था। इसमें उन्नत प्रणोदक प्रणाली और सॉफ्टवेयर सुधार शामिल थे, जो लैंडिंग के दौरान सतह की गति और आघात को नियंत्रण में रखने में मदद करते थे। लैंडर विक्रम का मुख्य उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र में उतरना था। यह क्षेत्र महत्वपूर्ण था, क्योंकि चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव में पानी की बर्फ मौजूद होने की संभावना थी, जो भविष्य के चंद्रमा मिशनों के लिए एक संभावित संसाधन हो सकता है और चंद्रमा पर स्थायी उपस्थिति की संभावनाओं को बढ़ा सकता है। चंद्रयान 3 ने 23 अगस्त 2023 को चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग की। लैंडर विक्रम ने चंद्रमा की सतह पर उतरने के बाद विभिन्न वैज्ञानिक प्रयोग किए। इसमें चंद्रमा की सतह की रासायनिक विश्लेषण किए, प्रज्ञान रोवर ने महत्वपूर्ण डेटा एकत्र किया, प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा की सतह पर घूमते हुए खनिजों का अध्ययन किया, सतह का तापमान मापा और जियोलॉजिकल गतिविधियों का विश्लेषण किया। रोवर ने विभिन्न वैज्ञानिक उपकरणों का उपयोग कर चंद्रमा की सतह पर पानी की संभावनाओं की खोज की और खनिजों की संरचना की जानकारी प्राप्त की। इस मिशन की सफलता ने न केवल भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण की क्षमताओं को सिद्ध किया, बल्कि यह भी दर्शाया कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में अग्रणी है। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा की सतह पर निरंतर

0: अनुसंधान और खोज के लिए एक मजबूत आधार प्रदान किया और भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। इस मिशन ने चंद्रमा पर भविष्य के स्थायी अभियानों और अनुसंधान की संभावनाओं को खोलते हुए वैश्विक अंतरिक्ष अनुसंधान समुदाय में भारत की भूमिका को और भी महत्वपूर्ण बना दिया। चंद्रयान 3 की सफलता ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की तकनीकी दक्षता और समर्पण को भी स्पष्ट रूप से दर्शाया। यह मिशन भविष्य में चंद्रमा पर खोज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था और भारतीय अंतरिक्ष अन्वेषण के क्षेत्र में एक नई दिशा प्रदान करता है। इन मिशनों की सफलता का आधार आधुनिक विज्ञान में किए गए सुधार हैं। चंद्रयान 3 जैसे मिशनों के लिए अत्याधुनिक रॉकेट प्रौद्योगिकी, सटीक नेविगेशन सिस्टम और उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक उपकरण आवश्यक थे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने अपने मिशनों के लिए स्वदेशी तकनीकों को विकसित किया जो हमें वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाए रखती है। इन मिशनों की सफलता ने न केवल तकनीकी विकास को बढ़ावा दिया बल्कि हमारे युवाओं को भी प्रेरित किया। यह दिन बच्चों और युवाओं को प्रेरित करने का अवसर प्रदान करता है ताकि वे भविष्य में विज्ञान के क्षेत्र में करियर बना सके। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का भविष्य उज्जवल है। हम चंद्रमा पर स्थायी ठिकाना बनाने, मंगल पर मानव मिशन भेजने और अन्य ग्रहों पर अनुसंधान करने के लिए तत्पर हैं। यह समय है कि हम अपनी उपलब्धियों का उत्सव मनाएं और भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा के लिए तैयार हों। यह दिन हमें याद दिलाता है कि जब हम एकजुट होकर काम करते हैं तो हम न केवल अपने देश की सीमाओं को पार करते हैं बल्कि मानवता के लिए नई ऊंचाइयां हासिल करते हैं और अपने भविष्य की अंतरिक्ष यात्रा को सफल बनाएं।
1: दोस्तों, अभी सुनिए आपने ये वार्ता जिसमें वार्ताकार थी हरगुण कौर। साथियों, आज जब भारत अंतरिक्ष विज्ञान में नई ऊंचाइयां छू रहा है तब युवाओं के लिए अवसरों के द्वार भी तेजी से खुल रहे हैं। अंतरिक्ष केवल तारों, ग्रहों और रॉकेटों की दुनिया नहीं है बल्कि यह भविष्य के करियर, नवाचार और राष्ट्र निर्माण का भी एक बड़ा क्षेत्र है। आज का युवा यदि सपने देखने का साहस रखता है तो अंतरिक्ष क्षेत्र उसे उन सपनों को साकार करने का मंच भी देता है। दोस्तों, अंतरिक्ष के क्षेत्र में करियर की अनेक संभावनाएं हैं। आज इसरो, निजी अंतरिक्ष कंपनियां, अनुसंधान संस्थान और तकनीकें स्टार्टअप से जुड़कर वैज्ञानिक, इंजीनियर, डेटा विश्लेषक, मिशन प्लानर, रोबोटिक्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशन एक्सपर्ट या अंतरिक्ष तकनीक सलाहकार बन सकते हैं। इसके साथ ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मशीन लर्निंग, भू आधारित अवलोकन, अंतरिक्ष कानून और स्पेस टूरिज्म जैसे नए क्षेत्रों में भी अवसर लगातार बढ़ रहे हैं। यदि आपकी रुचि गणित, भौतिकी, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स या एरोस्पेस में है तो यह क्षेत्र आपके लिए सुनहरा भविष्य लेकर आ सकता है। आवश्यकता है केवल जिज्ञासा, मेहनत और निरंतर सीखने की। आइए हम सभी युवाओं को यह संदेश दें कि अंतरिक्ष अब दूर नहीं बल्कि आपके करियर का उज्जवल भविष्य बन सकता है। सपने देखिए, तैयार कीजिए और भारत को अंतरिक्ष की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाइए। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी लेकिन उससे पहले वक्त तो चला है आप सभी के मनोरंजन का, तो करवाते हैं आपका मनोरंजन इस फिल्मी गीत के साथ जिसे हमने लिया है फिल्म बोर 2 से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने।

0: दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म बोर 2 से, जिसे गाया था अरिजीत सिंह और निकिता गांधी ने। साथियों, आज का युवा केवल नौकरी की तलाश करने वाला नहीं बल्कि नए भारत का निर्माता भी है। जब युवा बड़े सपने देखते हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं तब इतिहास बनता है। ऐसा ही इतिहास रचने का काम भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने किया है। सीमित संसाधनों में विश्व स्तरीय उपलब्धियां हासिल कर इसरो ने पूरी दुनिया को भारत की वैज्ञानिक क्षमता का परिचय दिया है। दोस्तों, इसरो केवल उपग्रह और रॉकेट बनाने वाली संस्था नहीं बल्कि नवाचार, आत्मनिर्भरता और राष्ट्र सेवा का प्रतीक है। चंद्रयान, मंगलयान, आदित्य L1 और स्पेसएक्स जैसे मिशनों ने साबित किया है कि भारत विज्ञान और तकनीकी के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयां छू रहा है। इन संकल्पों के पीछे वर्षों की मेहनत, अनुशासन, टीमवर्क और दृढ़ संकल्प छिपा है। यदि आप विज्ञान, गणित, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस या अनुसंधान में रुचि रखते हैं तो इसरो आपके सपनों को दिशा देने वाला एक बेहतरीन मंच बन सकता है। आज देश को ऐसे युवाओं की आवश्यकता है जो नई तकनीकों का विकास करें, समस्याओं का समाधान खोजें और भारत को वैश्विक स्तर पर अधिक मजबूत बनाएं। आइए इसरो की उपलब्धियों से प्रेरणा लेते हुए हम भी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित करें, निरंतर सीखते रहें और देश की प्रगति में अपना योगदान दें। याद रखिए, बड़े सपनों की शुरुआत छोटे छोटे प्रयासों से होती है और यही प्रयास एक दिन भारत को नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे। तो फिलहाल साथियों, हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी लेकिन उससे पहले वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, तो मिलते हैं ब्रेक के बाद।
1: वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
2: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
3: लग जा गले के फिर हसी रात।
1: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं। हर लफ्ज में छुपी है बीते लम्हों की कहानी।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाए होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज की धड़कन

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: सुनिए 8 जून 2026 से प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2:30 से 3 तक आकाशवाणी झांसी पर।
3: मिलजुल कर हम काम करें तो हो जाए सब दंग। उमंग।
4: दोस्तों सपने वही सच होते हैं जिन्हें पूरा करने का साहस और उनके लिए निरंतर मेहनत करने का संकल्प होता है। आज का युवा यदि अपने लक्ष्य पर अडिग रहे तो वह दुनिया के किसी भी मंच पर भारत का नाम रोशन कर सकता है। इसका ताजा उदाहरण है भारत के गौरवशाली गगनयात्री शुभांशु शुक्ला। दोस्तों उत्तर प्रदेश की धरती से निकलकर भारतीय वायुसेना के एक कुशल अधिकारी ग्रुप कैप्टन और परीक्षण पायलट बनने तक का उनका सफर हर युवाओं के लिए प्रेरणादायक है। उन्होंने 2000 से अधिक उड़ान घंटों का अनुभव अर्जित किया है, अनेक लड़ाकू विमान और परिवहन विमानों का सफल संचालन किया तथा अपनी उत्कृष्ट सेवा, अनुशासन और साहस के बल पर गगनयान मिशन के लिए चयनित होकर देश का नाम रोशन किया है। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष मिशन में भारत का प्रतिनिधित्व करने का अवसर पाकर उन्होंने यह सिद्ध किया है कि प्रतिभा, लगन और दृढ़ इच्छा शक्ति के सामने कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। दोस्तों शुभांशु शुक्ला की सफलता में हमें यह सिखाती है कि जीवन में बड़ी उपलब्धियां पाने के लिए निरंतर सीखना, चुनौतियों का सामना करना और कभी हार ना मानना आवश्यक है। आज विज्ञान, तकनीक, रक्षा, अंतरिक्ष और नवाचार के क्षेत्र युवाओं के लिए नए अवसरों से भरे हुए हैं। यदि हम अपने कौशल को निखारें और पूरे समर्पण के साथ आगे बढ़ें तो हम भी देश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। आइए हम शुभांशु शुक्ला के जीवन से प्रेरणा लेकर और संकल्प लें कि अपने ज्ञान, अनुशासन और मेहनत के बल पर भारत को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपनी भूमिका निभाएंगे, क्योंकि आज का जागरूक और क्रमशील युवा ही विकसित, आत्मनिर्भर और सशक्त भारत की सबसे बड़ी पहचान है। तो फिलहाल साथियों हमारी चर्चा तो आगे भी जारी रहेगी, लेकिन उससे पहले लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद।

0: सुनो गांव वालों, केवाईसी अपडेट का मैसेज अनदेखा ना करें, तुरंत केवाईसी अपडेट कराएं। अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसकी स्वघोषणा दें। और अगर कोई बदलाव है तो पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण दिखाएं। खाता सक्रिय रखकर बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठाएं। अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
1: आरबीआई कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: दोस्तों, पानी हमारी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है और वर्षा जल तो प्रकृति का एक बहुत ही कीमती तोहफा है। अगर आज हमने इसे बचाने की कोशिश नहीं की तो आने वाले समय में पानी की कमी और भी बढ़ सकती है। इसलिए इसमें युवाओं की भूमिका सबसे अहम है, क्योंकि बदलाव लाने की ताकत भी उन्हीं में सबसे ज्यादा होती है। बारिश का पानी यूं ही बहकर बर्बाद ना हो, यह हम सबकी जिम्मेदारी है। अगर हम चाहें तो समाज में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। छतों पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग करना, गड्ढों और टैंकों में पानी जमा करना और लोगों को इसके बारे में जागरूक करना, ये छोटे छोटे कदम भी बहुत बड़ा असर डाल सकते हैं। तो आइए हम सब मिलकर वर्षा जल बचाएं, धरती को हरा भरा बनाएं और आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी सुरक्षित रखें। यही हमारी सच्ची जिम्मेदारी भी है और देश के लिए हमारा योगदान भी। तो साथियों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम। इसी क्रम में सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत, जिसे हमने लिया है फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, जिसे गाया है अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने।

दोस्तों अभी सुना आपने गीत जिसे हमने लिया था फिल्म लाल सिंह चड्ढा से, जिसे गाया था अरिजीत सिंह और शिल्पा राव ने। साथियों अब हमारी स्टूडियो की घड़ी हमें आगे बढ़ने की इजाजत नहीं दे रही है, तो कैसा लगा हमारा कार्यक्रम हमें सुझाव पत्रों के माध्यम से और फेसबुक इंस्टा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। हमारे कार्यक्रम का ऑफिशियल अकाउंट akashvanizhansi.in के नाम से है, पिन कोड है 284128। इसी के साथ अपने मित्र संजीव को दीजिए जाने की इजाजत। नमस्कार।

युवाणी। जी हाँ, अभी आप सुन रहे थे अपना ये मनोरंजक कार्यक्रम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से। संध्या के 5:30 हुए हैं। अब सुनिए भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। भजन संध्या के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए हरिहरन का गाया ये राम भजन।

हरिहरन की मनमोहक आवाज में अभी आपने ये भजन सुना, और लीजिए अब सुनिए एक बार फिर हरिहरन को साथियों संग इस हनुमत भजन में।

0: चित्रा सिंह की आवाज में गाया ये सुमधुर भजन अभी आपने सुना। और अब वक्त हो चला है कार्यक्रम में एक छोटे से अंतराल का। आप बने रहिए हमारे साथ। वक्त बदलता है, दौर बदलते हैं,
1: पर कुछ धुने कभी पुरानी नहीं होती।
2: लग जा गले के फिर।
0: ये वो यादगार नगमे हैं जो यादों में आज भी महकते हैं, हर लफ्ज में छुपी है।

0: रहती हो।
1: आज का संगीत जो हर पल को बना दे यादगार।
2: तेरी मेरी गल्लाएं होगी मशहूर, करना कभी तू मुझे नजरों से दूर।
3: जब बीती कल की मिठास और आज

0: सुनते रहिए नए पुराने गीत सुहाने रोज शाम 6:35 पर
1: सिर्फ FM 103 आकाशवाणी झांसी पर।
2: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: श्रोताओं, सुन रहे हैं आप भक्ति संगीत का कार्यक्रम भजन संध्या। लीजिए अब सुनिए कविता कृष्णमूर्ति और रॉबिन चटर्जी को इस भजन में।

अभी आपने सुना जगजीत सिंह की आवाज में ये मनमोहक भजन। इसी के साथ ही कार्यक्रम भजन संध्या अब समाप्त होता है। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM

103 पर। संध्या के 6 बजे हैं। अब सुनिए किसान भाइयों का लोकप्रिय कार्यक्रम किसान वाणी। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है।

0: किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सभी किसान भैयन खां और पंच भैयन खां पुष्पिन भैया और
1: नीलम बहन की नमस्कार। तो देखो पुष्पिन भैया, जैसे ही अपन के कार्यक्रम को टाइम हो और वैसे ही अपन आ गए अपने किसान भैयन के लाने उम्दा उम्दा बतकाओ लेके। तो आज हम सबसे पहला बात कर रहे सह फसली खेती की। तो किसान भैया, सह फसली खेती वह पद्धति है जिसमें एक ही खेत में एक ही टाइम पे दो या दो से ज्यादा फसलें वैज्ञानिक तरीका से उगाई जाती हैं। और सह फसली इसके लाभ है कि भूमि अच्छी और उपयोगी होते है, किसानन की आय बढ़त है, कीट एवं रोगन को प्रकोप कम होते है, मिट्टी की उर्वरता बनाए रखने की में मदद मिलत है और एक फसल खराब होने पे दूसरी फसल से नुकसान की भरपाई हो सकत है।
0: बिल्कुल सही बात कही नीलम बहन। हमारे किसान भैया आजकल का कर रहे एकल फसल लगाउते हैं,
1: जिसे
0: अंग्रेजी में मोनो टाइप कहते हैं। एकल फसल, जैसे किसान भैया ने मूंगफली लगा दी, कछू किसान भैया ने उड़दा लगा दे, कछू किसान भैया ने तिल बो दो। अपनों के अब जो है कि हमारे किसान भैया सह फसली खेती करें, जैसे कि ज्वार लगाए, ज्वार के संगे संगे हमारे किसान भैया मूंग लगा सकते हैं।
1: हाँ भैया,
0: अगर दो फसलें एक संगे लगा रहे तो उसे का है कि एक रिस्क कम हो जाती नुकसान की, कि अगर एक फसल खराब होगी तो दूसरे से अपन का उगी भरपाई हो जाते है। दूसरों का है कि अगर सह फसली खेती हमारे किसान भैया कर रहे, उसे कहा होता है कि एक दलहनी फसल लगा दी अपन ने, तो दलहनी फसल अगर जो खेत में लगी है तो समझो कि जो वायुमंडल की नाइट्रोजन है उसको फिक्सेशन करने को काम दलहनी फसल की जड़ में जो राइजोम पाए जात वे जो वायुमंडल में नाइट्रोजन है उसके फिक्सेशन को काम कराते, यानी पौधा का देवे को काम कराते हैं। तो जो मट्टी है, जो मृदा है, वो खेत की ऊखा नाइट्रोजन की कम जरूरत हो, यानी दूसरी फसल का भी नाइट्रोजन मिल जाता है, यानी जिसे यूरिया कहते हैं हमारे किसान भैया। तो अगर दलहनी फसल लगाए संगे और दूसरी एकल फसल भी संगे लगाए तो जो समझो कि नाइट्रोजन की भरपाई व फसल कर देते। आगे जो होते कि अगर किसान भैया सह फसली लगाए हैं तो बीज की मात्रा भी कम लगाते है, दूसरों का है सिंचाई की भी आवश्यकता कम पड़ता है। काहे से कि अगर सह फसली हमारे किसान भैया खेती कर रहे हैं तो उनमें जो होते है कि एक फायदा और होते है, कीट और रोग को प्रकोप भी कम होते है।
1: हाँ भैया,
0: कि एक फसल अगर बड़ी है दूसरी छोटी है तो उतना प्रकोप कीट को रोग को नहीं होते। तो सह फसली खेती अगर हमारे किसान भैया कर रहे, अगलो फायदा जो होते कि उनमें जो कृषि लागत है उसमें कमी आउत है, और अगर हमारी कृषि लागत में कमी आ रही तो निश्चित है कि किसान भैया इनका अधिक मुनाफा होते। और अगर हमारे किसान भैया सह फसली खेती करें तो किसान भैया इनकी आय दोगुनी हो वो संभव है।
1: बिल्कुल भैया। और देखो आप बात कर रहे हैं बाजरा ज्वार की बुवाई की, तो ई मौसम में हमारे किसान भैया इनकी बुवाई कौन तरीका से करें, सो हमारे किसान भैया इनको बता दो।
0: बिल्कुल नीलम में, और इस समय पे हमारे किसान भैया ज्वार बाजरा जी के अपन मोटे अनाज कहते हैं श्री अन्न।
1: हाँ भैया,
0: तो श्री अन्न, श्री मतलब हो लक्ष्मी जू, ऐसो अन्न जी में जिसे लक्ष्मी जू की प्राप्ति हुए वो कैसे, वो जो है कि अगर हमारे किसान भैया मोटे अनाज ज्वार बाजरा की अगर खेती कर रहे, ज्वार बाजरा कोदो कुटकी सामा फिकार जी मोटे अनाज होते हैं, इनमें क्या होते कि एक तो कम पानी की आवश्यकता होती है इन फसलों में, कम पानी की जरूरत होबे से कहा है कि इस समय पे देखो अपन देख रहे हैं कि एक तो बरसात कम हो रही, आगे भी मौसम जो जानकारी दे रहा है कि हर साल की अपेक्षा इस साल कम पानी बरसे, यानी बरसात कम है।

0: पर जब अपन किसान भैयान का जो पतो है कि वैज्ञानिक भैया सलाह दे रहे कि बरसात इस बार कम है, औसत जो बरसात होते है उसे कम बरसात दिखाई दे रही, तो ऐसे में अपनी तैयारी ऐसी हो चाहिए हमारे किसान भैया उन फसलों को चुनाव करें, वे फसलें अपनी खेतन में लगाएं जिनका पानी की जरूरत कम हो।
1: बिल्कुल।
0: तो अगर हम बात करें मोटे अनाज की, श्री अन्न की, तो ये जो फसलें हैं इनका पानी की आवश्यकता बहुत कम है, नाम मात्र को पानी चाहने, एकाध अगर बरसात होगी तो फसल आराम से हो जाते। और बात करें अपन इनकी उपज की, तो आजकल अच्छी प्रजातियां श्री अन्न की आ रही हैं, चाहे ज्वार की बात करें हम, चाहे बाजरा की बात करें, चाहे कोदे की बात करें, चाहे सामा की बात करें। और इसके संगे संगे भारत सरकार के तमाम प्रोग्राम है मोटे अनाज का बढ़ावा देवे के लाने, तो अगर हमारे किसान भैया मोटो अनाज उगाऊ थे, इसकी खेती करते हैं, तो बाजार में जो MSP पे रेट है उसे ज्यादा कीमत पे भी संस्थान खरीदते हैं। कैसे, मांग ज्यादा बढ़ रही है और मांग इसे बढ़ रही है कि मोटे अनाज को प्रयोग जो हमारे किसान भैया कर रहे खाबे में, इनमें भरपूर मात्रा में प्रोटीन और फाइबर होते जो हमारे शरीर के लाने, हमारे स्वास्थ्य के लाने लाभप्रद है।
1: बिल्कुल। और देखो क्या तरह की बीमारी हो रही है उनमें भी हमारे किसान भैया हैं, और जो भी आजकल मुल्कन बीमारियों में जो कितने फायदेमंद है हमारे सभी भैया बहने, देखो ईखो खाएं तो वे स्वस्थ भी रहें। और भैया देखो अपन कौन बतकाओ करें,
0: बतकाओ तो कौन कौन का बहुत ही करने, बतकाओ इसे करने कि देखो इस समय बुआई को समय चल रहा, हमारे किसान भैया लगे हैं। अब बात करते हैं हमारे जो किसान भैया जैसे मूंगफली लगा रहे हैं, उन किसान भैया का भी देखो अपन बताओ दे सलाह उनका जो दही जाते है कि देखो मूंगफली को समय बिल्कुल अब भरमारी को चल रहा, और ये भराव में हमारे किसान भैया जल्दी बुआई कर दे, ठीक है। और बुआई करवे के पहले एक योजना जरूर बना ले, बाई योजना जो है कि अच्छी प्रजाति के बीज अपन खा लेने, जो उन्नत प्रजाति है उन्नत प्रजाति के बीज लेके, और फिर बीजन का करने उपचारित,
1: उपचारित बिल्कुल
0: ठीक है, बीज शोधन करके ही हमारे किसान भैया बुआई करें। बीज शोधन करवे के लाने हमारे किसान भैया ध्यान दें, 2 ग्राम थीरम प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिलावने हैं और बीज उपचारित करने, और थीरम अगर नहीं मिल रही जाए दवा तो एक दवा आउट है कार्बनडाजिम, कार्बनडाजिम अपन का लेने हैं 2.5 ग्राम, 2.5 ग्राम दवा प्रति किलोग्राम बीज की दर से मिला के बीज उपचारित करके बीज शोधन करें कि बुआई करें, तो आने वाले समय में अपन का कीट रोग को प्रकोप ना मिले। और इसके संगे देखवे में आते फसल पीरी पड़ रही नीचे से कटुआ कीट लग गो, अगर बीज शोधन करके हमारे किसान भैया बुआई करें तो आगे जिस समस्या को सामना ना करना पड़े।
1: बिल्कुल। तो भैया देखो बतकाओ तो हम खूब ही कर रहे हैं, कहना अपने किसान भैया को सुनवा दे भेजे संदेश।
2: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
3: पुतला बोल रहे
2: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
3: मतलब
2: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुन रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी है? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ,
3: पर हम तो सब यही डाले हैं।
2: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
3: सच है
2: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
3: ठीक है भाई, मैं भी आज तो जैविक खेती शुरू करूँगा।
4: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।

0: संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है।
1: अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं,
2: अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं,
3: क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा।
4: बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा,
5: योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी,
4: नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जनसेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण।
5: फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण।
4: प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
6: तो नीलम बहन।
7: हाँ।

0: देखो अबे अपन ने और अपने किसान भैया ने जो संदेश सुने, और अपन बता दें कि देखो अपन जो भी संदेश किसान भैया का सुनवाऊ थे उन संदेशन के माध्यम से भी कछु ना कछु जानकारी अपन देते रहे,
1: बिल्कुल
0: चाहे किसान बीमा की हो चाहे फसल बीमा की हो। तो किसान भैया ध्यान दें कि जो संदेश है इन्हें भी बड़ी गौर से सुने।
1: और सुनवे के संगे
0: हाँ,
1: संगे गुने भी
0: बिल्कुल। और देखो नीलम बहन, अब बात कर रहे थे अपन
1: भेंट वार्ता की।
0: भेंट वार्ता की, और भेंट वार्ता की इसे बात कर रहे थे कि देखो पानी बरस रहा हो कहता हूँ, नहीं बरस रहा हो, इस साल पानी की औसत बरसात है वह कम है।
1: कम है,
0: ऐसे में हमारे किसान भैया का क्या करने हैं, जल संचयन, पानी का बचाव ने है,
1: बिल्कुल
0: यानी जल है तो कल है। तो अपन एक भेंट वार्ता अपने किसान भैया का सुनवाऊ थे, जल संचयन से फसल खुशहाल, कैच द रेन अभियान, इ पे जानकारी दे रहे श्री तुलसीराम जी जो भूमि संरक्षण अधिकारी हैं चिरगांव में, और इनसे बात का ओपन करा थे।
1: बिल्कुल भैया, तो सुने।
0: किसान भाइयों, हम समय समय पे आपको नई नई जानकारी से अवगत कराते रहते हैं। आज हम बात करते हैं जल संचयन पर, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग पर। जल संचय कितना जरूरी है आज के समय में खेती को संकट से उबारने के लिए और फसलों को खुशहाल बनाने के लिए अचूक उपाय है जल संचयन। भारत सरकार का कैच द रेन अभियान इसी सोच पर आधारित है कि वर्षा के जल को हम कैसे संजोएं, जहां भी पानी बरसे, जहां भी पानी गिरे। आज इसी विषय पर हम गहराई से बातचीत करेंगे। हमारे साथ है तुलसीराम प्रजापति जी जो भूमि संरक्षण अधिकारी हैं चिरगांव में। सर, आपका आकाशवाणी की तरफ से एवं आकाशवाणी के तमाम श्रोताओं की ओर से हार्दिक स्वागत है।
2: धन्यवाद
0: सर। हमारे किसान भाइयों को बताइए कि जो ये कैच द रेन अभियान है ये क्या है?
2: किसान भाइयों, कैच द रेन अभियान ये भारत सरकार द्वारा प्रचालित अभियान है जो भारत सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाया गया है, और इसका मुख्य उद्देश्य यह है कि वर्षा का जो जल है, वर्षा के जल को संग्रह करना, और संग्रह के द्वारा एक एक बूंद को किसानों के खेतों में करना, खेत का पानी खेत में रहे और गांव का पानी गांव में रहे, इस कंसेप्ट पर यह तैयार किया गया है। और इसके तहत पांच मुख्य घटक हैं। पहला घटक है वर्षा जल संग्रह, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसके तहत जो हमारी सरकारी बिल्डिंग है या किसान के द्वारा जो भी बिल्डिंगें हैं उनके द्वारा पानी को किसी तरह से अंदर ले जाना। दूसरा है कि जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के अतिरिक्त जो भी पानी होता है मेड़बंदी के द्वारा पानी ले जाना। तीसरा है कि किसी भी तरह से हम किसानों के खेतों में पेड़ों का लगाएं, ज्यादा ज्यादा वृक्षारोपण करें ताकि रहे। चौथा है जन जागृत अभियान, इसके तहत किसानों को, लोगों को, देश के लोगों को स्कूल के द्वारा या बच्चों के माध्यम से किसी तरह से कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि वैज्ञानिकों द्वारा, सभी के द्वारा माध्यम से ये एक ऐसा जन जागृत अभियान अपनाएं कि एक एक बूंद को सुरक्षित करें और इस अभियान में जुड़ें। और एक तरह से इसमें भारत सरकार के अधिकारी भी फील्ड में आते हैं और देखते हैं कि किस तरह ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है।
0: सर, हमारे किसान भाई सोचते हैं कि पानी को रोकना या पानी को संजो कर रखना बड़े बड़े बांधों का, बड़े बड़े डैमों का काम है। खेत में हमारे किसान भाई छोटे छोटे ऐसे कौन कौन से उपाय अपनाएं जो कम पैसे में तैयार हो जाएं, कम खर्च में बन जाएं और जल संचय कर सकें।
2: किसान भाइयों को मैं ये बताना चाहता हूं कि हम छोटी छोटी विधियों के द्वारा भी बहुत ज्यादा पानी का संग्रह कर सकते हैं। जैसे अगर हमारे खेत में ढालूदार खेत है तो उसमें हम मेड़बंदी का प्रयोग कर सकते हैं। मेड़बंदी से पानी का संग्रह खेत में रहता है, और जब गर्मी होती है, ग्रीष्मकालीन समय होता है, तो ग्रीष्मकालीन समय में हम गहरी जुताई का भी प्रयोग कर सकते हैं। गहरी की जुताई से क्या होता है कि जो हमारे, एक तो इसका फायदा यह है कि जो हमारे हानिकारक जीव कीट पतंगे हैं वो मर जाते हैं और अधिक से अधिक पानी इसमें संग्रह हो जाता है। तीसरी चीज यह है कि जब बरसात होती है तो हम पेड़ों के किनारे हम पेड़ भी लगा देते हैं, इन पेड़ों को लगाने से भी वर्षा का जल संग्रह होता है। चौथी चीज यह है किसान भाइयों कि हम लोग जो आपका खेत है जहां पे थोड़ा सा गहरा है वहां पे हम तालाब का भी उपयोग करके अच्छी तरह से हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। चौथी चीज ये भी है किसान भाइयों से, ये भी है कि जो हमारे पुराने ट्यूबवेल वगैरह हैं जो खराब हो चुके हैं, जिनको हम वेस्टेज मांगते हैं, वहां पे वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग बना करके खेत का पानी

0: इकट्ठा करके भी हम वहां पे प्रयोग कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग कम जल वर्षा चाहने वाली फसलों का भी प्रयोग कर सकते हैं, जैसे ज्वार, बाजरा और सिरियन और अरहर वगैरह। तो इससे ये होता है कि इन सब चीजों का प्रयोग करने से हमारा ग्राउंड वाटर बढ़ता है, और ग्राउंड वाटर चूंकि बहुत जरूरी है, पीने के लिए भी जरूरी है और हमारी खेती के लिए भी जरूरी है, ऐसी दशा में भी हमको ये छोटी छोटी चीजें प्रयोग करके किसान भाई अपने वर्षा जल संरक्षण को बढ़ा सकते हैं।
1: सर बात करते हैं कि हमारे किसान भाई अगर जल संचय करते हैं तो मिट्टी की संरचना में सुधार होगा, साथ ही साथ जो फसल की उत्पादकता है उसमें भी वृद्धि होगी, इस बारे में भी बताइए।
0: बिल्कुल, जब हम अगर मृदा संरक्षण के संबंध में जो भी जल संरक्षण की प्रक्रिया अपनाते हैं तो उसका मृदा संरक्षण पे और मृदा साथ साथ पौध संरक्षण पर भी हमारा प्रभाव होता है। कैसे? जल संरक्षण का हम प्रयोग करते हैं, पौधे में जो जरूरत पड़ती है तो वो पौधे भी अच्छा वृद्धि करते हैं। तो जल इसके साथ साथ जब हमको पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम उन पानी का एज ए खेत तालाब के माध्यम से या मेड़बंदी जब कर देते हैं तो जहां ज्यादा डिप्रेशन होता है तो उसका भी समय पर हम पानी का प्रयोग खेतों में कर सकते हैं और हमारी फसल इससे अच्छी हो जाती है।
1: सर आपके विभाग के द्वारा कोई ऐसी योजना है जिसके द्वारा हमारे किसान भाई खेत तालाब बना सकते हैं, साथ ही साथ उसको बना करके जल संचय कर सकते हैं, और इसमें जो वित्तीय मदद है वो किसान भाइयों को कैसे प्राप्त होगी?
0: हाँ बिल्कुल सर, किसान भाइयों को मुझे बताते हुए ये हर्ष हो रहा है कि हम कृषि विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश में, जिसमें कि झांसी जनपद भी है, एक योजना चलाई जा रही है जिसका नाम खेत तालाब योजना है। खेत तालाब योजना सभी योजना में जो भी किसान होते हैं, जो इच्छुक किसान हैं, वो हमारी विभाग की एक वेबसाइट है upagriculture.com में जा करके अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसान के द्वारा पंजीकरण कराए जाने के बाद फिर ₹1,000 दे करके उनका टोकन कटता है, और टोकन कटने के बाद जब किसान, अगर हमारा जैसे इस समय पर टारगेट किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि 325 का है, 325 के टारगेट में अगर हम ज्यादा अगर टारगेट हो जाता है तो हम लोग मुख्य विकास अधिकारी महोदय या जिलाधिकारी महोदय के द्वारा जो जिसको निर्देशित करते हैं उनकी अध्यक्षता में एक लॉटरी करते हैं, और लॉटरी में जब किसान चयन हो जाता है तो चयन किसान के द्वारा हमारे जो फील्ड के कर्मचारी हैं, जो तकनीकी सपोर्ट मिलता है, किसानों के खेत में जाते हैं, किसान के खेत का सर्वे करते हैं, और सर्वे करने के उपरांत जमीन और जगह उपयुक्त होने पर हमारे किसान के हमारे जो कर्मचारी हैं वो उसको एक तरह से पास कर देते हैं, और उसके बाद किसान को ये हम लोग कहते अनुरोध करते हैं कि वो अपने खेत के में तालाब का निर्माण शुरू कराए। जब किसान तालाब का निर्माण शुरू करा देता है तो उसके तहत, मतलब एक तालाब की जो लागत है ₹1,05,000 है, ₹1,05,000 में से हम ₹52,500 का भुगतान किसान को काम पूरा होने पर कर देते हैं।
1: सर अब बात आती है पात्रता की, इस योजना का लाभ उठाने के लिए कौन कौन से किसान पात्र हैं?
0: खेत तालाब योजना के तहत मैं किसान भाइयों को यह बताना चाहता हूं कि हमारे जो भी कृषक हैं जिनके पास जमीन है और वो इसके लिए पात्र हैं, ऐसी सरकार के द्वारा ऐसी कोई योग्यता निर्धारित नहीं की गई है, इसका सभी किसान जिनके पास जमीन है इस योजना का लाभ ले सकते हैं। बस केवल ये हमें देखना होता है कि जो जमीन है जहाँ पे खेत तालाब बनाने लायक उपयुक्त है वहाँ पे सर्वे में वो जमीन में पानी रुकने की एक जगह हो ताकि हम उसका खेत के तालाब का पानी प्रयोग कर सकें।
1: डॉक्टर साहब, जैसा कि हमारा बुंदेलखंड क्षेत्र पथरीला है और यहाँ पानी की बड़ी दिक्कत है, किल्लत भी रहती है, तो यहाँ के किसानों के लिए ये जो खेत तालाब योजना है ये कितनी फायदेमंद साबित हो रही है?
0: मैं बताना चाहता हूँ सर कि खेत तालाब योजना बुंदेलखंड के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बुंदेलखंड की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा उथली पुथली है, मतलब कहते हैं कि बड़े वो है असमतल, समतल नहीं है। तो समतल न होने की वजह से जहाँ पे हमारा पानी रुकने के यहाँ पे साधन अच्छे हैं और उस जहाँ पे गहराई है या जहाँ पे हमारा वो पहले ऊंचाई के बाद नीचे गहराई है, ऐसे जगह में हम खेत तालाब योजना का प्रयोग करके हम अधिक से अधिक जल संरक्षण कर सकते हैं। क्योंकि बुंदेलखंड की जो मिट्टी है यहाँ पे कंकरीली है, पथरीली है और साथ साथ काली मिट्टी भी है, तो यहाँ पे पानी बह करके चला जाता है जो इसके लिए, तो आप पानी जब संरक्षण कर लेते हैं तो खेत तालाब योजना के तहत किसान भाइयों से फायदा यह रहता है कि जब पानी नहीं बरसता है या पानी लंबा स्पेल आता है, पता चला 15 दिन बाद पानी बरसता है, तो ऐसे समय पर हमारी जो फसल है मुरझा

0: बढ़ने लगती है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि अपना किसी पंप सेट के माध्यम से उसमें पानी लगा करके हम पानी का फसल को बचा सकते हैं। जैसे हम लोग पता है कि बुंदेलखंड में महावट जरूरत होती है, तो चना है, मसूर है और गेहूं की फसल है, यदि अगर जब पानी नहीं बचता है तो उस समय पर अगर हम इसका प्रयोग करके फसल को अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकते हैं और जीवनदायिनी सिंचाई करके हम इसको लाभ प्राप्त कर सकते हैं।
1: बिल्कुल डॉक्टर साहब, सही कहा आपने और इतनी अच्छी जानकारी दी। चलते चलते किसान भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे?
0: हाँ, मेरा तो किसान भाइयों से ये अनुरोध है कि इस वर्ष अल नीनो प्रभाव के कारण पानी की जल वर्षा की संभावना काफी कम है। अभी जैसा कि पता है कि जब जुलाई से अब तक का 41% वर्षा कम हुई है, तो इससे यह है कि आप अपने खेतों में जुताई करने के बाद आप जो मोटे अनाज के हैं, जिसे हम सिरियन कहते हैं, सिरियन है, ज्वार है, बाजरा है, अरहर है, जो कम जल चाहने वाली फसलें हैं, उनका ज्यादा से ज्यादा आप बुआई करें। और इसके साथ साथ आपको कैच द रेन अभियान का जो एक मुख्य सिद्धांत है कि हम एक भी बूंद खेत के पानी की बाहर नहीं जाने देंगे, उसके आधार पर आपको अपने खेत में मेड़बंदी करनी है और मेड़बंदी करने के साथ साथ पौधरोपण भी करना है ताकि वर्षा का जल संग्रह हो सके। इसके साथ साथ आपसे और अनुरोध है कि जो आप मृदा में आप किस पोषक तत्व की कमी है और कौन सा पोषक तत्व आपको जरूरत है, इसके लिए कृषि विभाग के द्वारा और हमारे सभी के द्वारा मृदा परीक्षण भी कराया जाता है। कृपया मृदा परीक्षण करा करके संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें और जिससे कि खेत की उपजाऊ बनी रहे और मृदा खराब ना हो। यही मेरी आपसे अनुरोध है कि कृपया वैज्ञानिक खेती की तरफ बढ़ें।
1: तुलसीराम प्रजापति जी, आज आपने हमारे किसान भाइयों को बहुत ही अमूल्य और व्यवहारिक जानकारी दी। आपने बताया कि कैसे कैच द रेन अभियान को अपनाकर हम न सिर्फ अपनी फसलों को खुशहाल बना सकते हैं बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम जल को सुरक्षित कर सकते हैं। आज आप हमारे कार्यक्रम में आए, आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद
2: किसान भैया। हरवाबे, अपन ने जो भेंटवार्ता सुनी, विषय है तो जल संचयन से फसल खुशहाल, और विशेषज्ञ हते तुलसीराम, भूमि संरक्षण अधिकारी जिला चिरगांव। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो किसान भैया सुन रहे हुए वे सुने और सुनवे के संगे संगे गुने भी। और भैया देखो, अगाऊ अपन बतकाव करें उनके पहले कायना करवा देवे अपन को मनोरंजन, तो लियो सुनो जो लोगी जिखो गाँव है, हर प्रसाद कुशवाहा संगी साथी।

एक पल ना दोई लल ना खेले, एक पल ना दोई लल ना खेले, कहा सिया हर साए के बनिया भर बेचली सियाजू लल।

0: हाँ तो देखो नीलम्बन, अब अपन ने और अपने किसान भैया ने जो उमदा सुलोक गीत सुनो, इके गाबे बा भैया ते हर प्रसाद कुशवाहा और उनके संगी साथी।
1: बिल्कुल भैया, और हम आशा करते हैं हमारे सबरे भैयन को खूब ही नौ नौ
0: बिल्कुल
1: लगे हुई है।
0: बिल्कुल। और देखो नीलम्बन, देखो बरसात को मौसम चल रहा,
1: हाँ
0: ठीक है, ऐसे में हमारे किसान भैया अपनों ख्याल रखें, संगे संगे अपने जो दुधारू जानवर है, जो पशुधन है, उनको भी ध्यान रखें।
1: बिल्कुल
0: ध्यान जो रखना है कि देखो समय समय पे हमारे किसान भैया जो अपनों पशुधन है, जो दुधारू जानवर हैं, उनमें समय पे टीकाकरण जरूर कराएं। और टीकाकरण करावे को समय भी जो ही है, बरसात के पहले पहले टीकाकरण हो जाते हैं। जो किसान भैया रह गए जिनने नहीं कराओ अपने जानवरन में, अपने पशुअन में, वे टीकाकरण FMBG ये कहते हैं, खुरपका और मुंहपका, इको टीकाकरण जरूर करा लेवे। कह से कि ये बीमारी बहुत ज्यादा फैलती है, और इनमें होत का है कि एक जानवर रखा अगर जब बीमारी लग गई और उके संपर्क में दूसरे जानवर आउट है, तो उगे भी जब लग जाते, यानी एक जानवर रखा अगर जा बीमारी आ गई, तो अगर 2-4-10 जानवर हमारे किसान भैया रखें तो सबका जब बीमारी लग जाते।
1: बिल्कुल। और भैया देखो, एक संगे हमारे कार्यक्रम को टाइम सो तो ही पूरा हो रहा, सो किसान भैया उठाओ कागज कलम, लिखो कार्यक्रम को पतो, कार्यक्रम किसान वाणी द्वारा के निदेशक आकाशवाणी झांसी, पिन कोड नंबर है 284-1।

अभी किसान भाइयों के लिए किसान वाणी कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। ये कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं, FM 103 पर।

आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है। आइए श्रोताओं, अब हम आपको अपने केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा बता दें। अब से थोड़ी ही देर में 6:35 पर आप सुनेंगे फिल्मी गीतों का कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। रोजाना की तरह प्रादेशिक समाचार आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से 7:19 पर। खुशबू माटी की बुंदेली लोकगीतों का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से 7:31 पर। आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से अनुप्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 8:00 से। एक गीतकार फिल्म संगीत का ये कार्यक्रम आप सुनेंगे हमारे केंद्र से रात्रि 8:15 पर। रोजाना की तरह समाचार संध्या और न्यूज एट 9 का समय रहेगा रात्रि 8:45 से। ये आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से सुनेंगे। विविध भारती के कार्यक्रम आप सुनेंगे रात्रि 9:00 से 10:00 तक आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से।

रात्रि 10 बजे से आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से खेलों पर आधारित विशेष कार्यक्रम खेल दर्पण। सुगम संगीत गीत गजलों पर आधारित ये कार्यक्रम आप सुनेंगे रोज की तरह रात्रि 10:30 से। आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी और अंग्रेजी के समाचार आप सुनेंगे रात्रि 11 बजे से।

आकाशवाणी का ये झांसी केंद्र है FM 103 पर। संध्या के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है गीतों का कार्यक्रम, नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम का आगाज हम कर रहे हैं हीरो हिंदुस्तानी।

हीरो हिंदुस्तानी। अभी आपने सुना इस फिल्म में रूप कुमार राठौर, हेमा सरदेसाई और सपना अवस्थी को। गीत के बोल लिखे थे राहत इंदौरी ने। और अब सुनिए दिल है तुम्हारा फिल्म से ये नगमा, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। संगीत दिया है नदीम श्रवण ने और गीत को लिखा है समीर ने।

दिल है तुम्हारा। अभी आपने इस फिल्म का नगमा सुना, अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में। और लीजिए, आप सुनिए उत्तम सिंह के संगीत निर्देशन में आनंद बख्शी का लिखा ये गीत, फिल्म दिल तो पागल है से। गीत में आवाजें हैं लता मंगेशकर और उदित नारायण की।

दिल तो पागल है। अभी आपने इस फिल्म में लता मंगेशकर और उदित नारायण को सुना। लीजिए अब सुनिए फिल्म बरसात में अलका याग्निक कुमार सानू को। गीत के बोल समीर के हैं, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

0: अभी आप सुन रहे थे कुमार सानू और अलका याग्निक को फिल्म थी बरसात। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से अंतराल का, आप बने रहिए हमारे साथ। हम यूं गए और यूं आए।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहने, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800 1805 145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर

0: प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
1: काय भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
2: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
1: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
2: हेलो किसान फोन इन जोका है भैया?
1: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उनको समाधान करवे के लाने बैठत है विशेषज्ञ भैया।
2: कैसे पाए समस्या को समाधान?
1: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
2: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
1: फोन नंबर है 0510-232-0068।
2: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अपना हो हमारे किसान भैया परेशान।

0: श्रोताओं, सुन रहे हैं आप नए पुराने गीत सुहाने। और लीजिए, अब सुनिए कार्यक्रम में लता मंगेशकर का गाया फिल्म अलग अलग से ये गीत। गीत के बोल आनंद बख्शी के हैं, धुन बनाई है R.D. वर्मन ने।
1: दूर, बहुत दूर, बहुत दूर आसमान पर रहता है एक जादूगर। क्या क्या खेल दिखाता है, कभी हमें हंसाता है,

मुकेश की आवाज में अभी आपने ये नगमा सुना, फिल्म थी तीसरी कसम। और लीजिए अब सुनिए किशोर कुमार को फिल्म कुदरत में। गीत के बोल मजरू के हैं, धुन बनाई है आर डी वर्मन ने।

कुदरत फिल्म में अभी आपने किशोर कुमार को सुना। गीत के बोल मजरू सुल्तानपुरी के थे, धुन बनाई थी आरडी वर्मन ने। इस गीत के साथ ही कार्यक्रम नए पुराने गीत सुहाने अब यहीं समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 पर। अब से बस थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रादेशिक समाचारों को।

महात्मा गांधी ने कहा था, स्वयं के साक्षात्कार का अनुपम रास्ता है दूसरों की सेवा में स्वयं को होम कर देना। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, किसी भी समाज की उन्नति का पैमाना मैं इस बात को मानता हूं कि उस समाज में स्त्री ने कितना विकास किया है। जीवन कठिन प्रतीत हो सकता है, लेकिन आपके करने योग्य हमेशा कुछ न कुछ होता है जिसे करके आप सफल हो सकते हैं। ये विचार है स्टीफन हॉकिन के।

0: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों की भीड़, श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर की कामदगिरी की परिक्रमा। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं मनीषा पाठक। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बीते 9 वर्षों में प्रदेश में बड़ा बदलाव आया है। आज लखनऊ में एक निजी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने 2017 से अब तक 9 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया है। उन्होंने कहा कि आज उत्तर प्रदेश आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर और सुशासन के कारण देश का अग्रणी राज्य बन चुका है। आज प्रदेश गन्ना, चीनी और एथेनॉल उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ने इन 9 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की।
1: हमने 9 वर्षों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, प्रति व्यक्ति आय को 3 गुना करने में सफलता प्राप्त की, वीमेन वर्कफोर्स को प्रदेश के अंदर 3 गुना से अधिक उनकी उपस्थिति देश के अंदर शासकीय सेवा हो या फिर प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन की जो कार्रवाई हुई है उनमें उनकी उपस्थिति वहां हुई है। ये आंकड़े वह है जिसने उत्तर प्रदेश के नौजवानों के सामने पहचान के उस संकट से उभारने में मदद की।
0: एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर गठित संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों से विचार विमर्श किया। बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने बताया कि वन नेशन वन इलेक्शन एक अच्छी व्यवस्था होगी जो समय, पैसों और संसाधनों की बचत करेगी। बैठक में ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री एके शर्मा ने कहा कि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और राष्ट्रहित में लिया गया ऐतिहासिक निर्णय है जिसे शीघ्र लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इससे देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी और विकसित भारत के संकल्प को गति मिलेगी। वहीं कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने इस पहल का समर्थन करते हुए कहा कि देश में एक साथ चुनाव कराना देश हित में है, इससे बार बार चुनाव पर पड़ने वाला आर्थिक दबाव कम होगा और जनता को भी सुविधा होगी।
2: 1952 से लेकर के 1967 तक देश के सभी पार्लियामेंट्री चुनाव और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हुए थे। एक साथ चुनाव होने के नाते समय की बहुत बड़ी बचत हुई और आर्थिक रूप से भी जो आज भारी दबाव पड़ रहा है बार बार के चुनाव से, उससे उस समय राहत थी हमारे देश के भीतर। वन नेशन वन इलेक्शन का लोकसभा का चुनाव और विधानसभा के चुनाव भी साथ साथ हों तो देश की विकास की गति तेजी से बढ़ेगी और आर्थिक गति भी उससे बढ़ सकती है।
0: राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने आज लखनऊ के संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान के 30वें दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। इस समारोह में 279 विद्यार्थियों को उपाधियां दी गईं। इस दौरान उत्कृष्ट शिक्षकों, शोधकर्ताओं, चिकित्सकों और विद्यार्थियों को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कारों और स्वर्ण पदकों से सम्मानित किया गया। नेफ्रोलॉजी के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर नारायण प्रसाद को गवर्नर गोल्ड मेडल प्रदान किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि लोगों का स्वास्थ्य केंद्र सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि सरकार स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न योजनाएं चला रही है जिससे लोगों के जीवन में परिवर्तन आ रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने R3 भाषा मूल्यांकन का फ्रेमवर्क जारी किया है जिसके तहत तीसरी भाषा यानी R3 का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर की आंतरिक परीक्षाओं के जरिए किया जाएगा। इस साल R3 के लिए कोई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। बोर्ड ने कहा कि जो छात्र R3 पास नहीं कर पाते हैं उन्हें भी 10वीं कक्षा में प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन 10वीं कक्षा में रहते हुए उनके लिए इसे पास करना आवश्यक होगा। CBSE ने स्पष्ट किया कि 8वीं कक्षा वाला 3 भाषाओं का कॉम्बिनेशन 9वीं कक्षा में भी जारी रहेगा और इनमें से किसी एक को R3 के तौर पर चुना जाएगा। अयोध्या के श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण में एंटी करप्शन कोर्ट ने मामले में गिरफ्तार आरोपी

0: शंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर कर ली है। पुलिस की टीम कल सुबह इनकी कस्टडी लेकर पूछताछ करेगी। वहीं आरोपी लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर आज अयोध्या विकास प्राधिकरण ने अंतिम नोटिस चिपका दिया है। अयोध्या विकास प्राधिकरण में ओएसडी महेंद्र कुमार सिंह ने बताया कि 3 जुलाई को जारी नोटिस के बावजूद लवकुश मिश्रा की पत्नी सुप्रिया मिश्रा की ओर से कोई पत्रावली या दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। अब एडीए ने उन्हें 15 जुलाई तक मानचित्र और अन्य आवश्यक अभिलेखों के साथ उपस्थित होने का अंतिम अवसर दिया है। श्री सिंह ने कहा कि निर्धारित समय तक जवाब या वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
1: इनकी पत्नी सुप्रिया जी हैं, उनके द्वारा एक निर्माण किया गया है और उस निर्माण का नक्शा हमारे यहाँ से स्वीकृत नहीं है, इसीलिए जब चालानी कार्रवाई प्रस्तुत की गई जेई के द्वारा तो उनके खिलाफ नोटिस जारी की गई। पहली नोटिस पे वो उपस्थित नहीं हुई, इसलिए दूसरी नोटिस जारी की गई जिसमें 15 तारीख नियत। अब ये प्रोसीडिंग है जो नगर नियोजन अधिनियम 1973 है उसकी प्रोसीडिंग अगली कार्रवाई की जाएगी।
0: सुप्रीम कोर्ट की पहल पर वाराणसी के ज्ञानवापी प्रकरण को आपसी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारित करने के उद्देश्य से आज जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में दोनों पक्षों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में वादी और प्रतिवादी पक्ष के अधिवक्ताओं के साथ संबंधित पक्षकार भी मौजूद रहे। हालांकि दोनों पक्षों के बीच हुई बातचीत के बाद भी किसी प्रकार की सहमति नहीं बन सकी और वार्ता बेनतीजा रही। बैठक के बाद दोनों पक्षों ने स्पष्ट किया कि ज्ञानवापी विवाद का अंतिम समाधान न्यायालय के निर्णय से ही संभव है। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। चित्रकूट में आज आषाढ़ मास के अमावस्या मेले के दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान कर कामदगिरी की परिक्रमा की। पेश एक रिपोर्ट।
2: आषाढ़ मास की अमावस्या के अवसर पर आज सुबह से ही चित्रकूट में श्रद्धालुओं ने स्नान किया और भगवान मदगजेन्द्रनाथ और कामतानाथ मंदिर सहित विभिन्न मंदिरों और मठों में जाकर देवी देवताओं के दर्शन किए। कामदगिरी पर्वत की परिक्रमा का सिलसिला भी पूरे दिन जारी रहा। भक्तों की भारी भीड़ के मद्देनजर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। मेला क्षेत्र और आसपास के इलाके की निगरानी ड्रोन कैमरों की मदद से की जा रही है। रामघाट निर्मोही अखाड़ा टेम्पो स्टैंड यूपीडी तिराहा चित्रा गोकुलपुर परिक्रमा मार्ग तथा मेला क्षेत्र के अन्य भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार नजर रखी जा रही है। पुलिस ने लोगों से सुरक्षा निर्देशों का पालन करने और किसी भी अफवाह पर ध्यान न देने की अपील की है। अजय प्रताप सिंह, आकाशवाणी समाचार, चित्रकूट।
0: प्रदेश सरकार ने बेड एंड ब्रेकफास्ट और होम स्टे नीति 2025 में हितधारकों को सुविधाएं देने के लिए इसके प्राविधानों में संशोधन किए हैं। पेश एक रिपोर्ट।
3: एसओपी संशोधन के अनुसार अब होमस्टे प्रतिष्ठान में कम से कम एक और अधिकतम 8 कमरे पंजीकृत कराए जा सकते हैं। 9 कमरों से अधिक भवन वाली इकाइयां इस नीति के अंतर्गत पंजीकरण के पात्र नहीं होंगे। प्रदेश के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि 16 बिस्तरों वाली डॉर्मेट्री भी इस श्रेणी के अंतर्गत पात्र इकाई मानी जाएगी। उन्होंने बताया कि ऑटो रिन्यूअल पंजीकरण समाप्ति की तिथि से 3 माह पहले पोर्टल पर कराया जा सकेगा। समाचार कक्ष से शैलेंद्र शर्मा।
0: प्रदेश के मुख्य सचिव एसपी गोयल ने सभी प्राधिकरण और विभागों को ईवी चार्जिंग स्टेशनों की स्थापना के लिए उपयुक्त जमीनें चिन्हित करने के निर्देश दिए हैं। आज इस संबंध में एक बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना उत्तर प्रदेश में स्वच्छ, हरित और सतत परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने कहा कि सभी संबंधित विभागों और प्राधिकरणों के साझा प्रयासों से प्रदेश में आधुनिक सार्वजनिक ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का तेजी से विकास किया जाए। राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज हल्की बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों में राज्य के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना जताई है। इस दौरान उमस भरी गर्मी की स्थितियां बने रहने का भी अनुमान है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, बीते 9 वर्षों में 3 गुना हुई प्रदेश के आम नागरिक की आय, 9 लाख लोगों को मिला रोजगार। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर संयुक्त संसदीय समिति ने लखनऊ में राजनीतिक दलों से किया संवाद। ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने कहा, विकसित भारत के संकल्प को गति देगा वन नेशन वन इलेक्शन। श्री राम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा प्रकरण के आरोपियों रमाशंकर मिश्रा और सुभाष श्रीवास्तव की 14 घंटे की पुलिस रिमांड मंजूर। लवकुश मिश्रा के निर्माणाधीन मकान पर अयोध्या विकास प्राधिकरण ने लगाया नोटिस। और आषाढ़ मास की अमावस्या पर चित्रकूट में उमड़ी भक्तों

0: की भीड़। श्रद्धालुओं ने मंदाकिनी नदी में स्नान करके कामतगिरी की परिक्रमा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे एफएम पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: महात्मा गांधी के अनुसार युद्ध भूमि से भागने से अच्छा है हम लड़खड़ाएं, गिर जाएं, लेकिन फिर से शक्ति बटोर कर खड़े हो जाएं। स्वामी विवेकानंद के अनुसार तुम ईश्वर में कभी भी विश्वास नहीं कर सकते जब तक स्वयं में विश्वास न कर लो। एपीजे अब्दुल कलाम का कथन है, लक्ष्य के प्रति एकाग्र समर्पण लक्ष्य को पाने का एकमात्र साधन है।
2: ये आकाशवाणी झांसी है एफएम 103 पर। सुनिए बुंदेली लोकगीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। खुशबू माटी की कार्यक्रम के अंतर्गत लीजिए सबसे पहले सुनिए धर्मेंद्र पाल का गाया ये राई गीत।

0: बुढ़िया गीत सुना नेहा गौतम की आवाज में। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं बुंदेली लोक गीतों का कार्यक्रम खुशबू माटी की। कार्यक्रम में यहाँ हम लेंगे एक छोटा सा अंतराल, आप बने रहिए हमारे साथ।
1: डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया जैसे रोग संचारी रोग होते हैं। इनसे बचने के लिए घर के दरवाजे और खिड़कियों पर जाली लगवाएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें, पानी की टंकी को ढक कर रखें, पूरी बांह वाले कपड़े पहनें, कूलर की नियमित सफाई करें और अन उपयोगी वस्तुओं में पानी ना जमा होने दें।
2: अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 1800-1805-145 पर कॉल करें।
1: राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित में जारी।
3: भैया कछु अनमने दिखा रहे, का बात है
4: भैया? एक तरफ तो गैया बीमार है और भैया फसलन में नए कीट और भैया खरपतवार से परेशान है।
3: है अपन को भैया पता नहीं है, आकाशवाणी झांसी से हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम को।
4: हेलो किसान फोन इन झोंका है भैया?
3: अरे भैया हेलो किसान फोन इन कार्यक्रम में किसान भैया से जुड़ी भाई तमाम प्रकार की जो भी खेती बाड़ी समस्या है उसको समाधान करवे के लाने बैठे है विशेषज्ञ भैया।
4: कैसे पाए समस्या को समाधान?
3: अरे भैया प्रत्येक गुरुवार को अपन 2 बजे से लेके 2:30 तक फोन कर सकते हैं और फोन लगाओ और समस्या को समाधान पाओ।
4: अरे भैया तो फोन नंबर तो बता दो।
3: फोन नंबर है 0510-232-0068।
4: तो भैया बहुत ही नोनी बात बताई अपन ने, तो अब ना हो हमारे किसान भैया परेशान।
0: श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम खुशबू माटी की। लीजिए अब सुनिए गोपीराम कुशवाहा व साथियों को इस कहरवा गीत में।

अभी आपने सुशीला देवी व रामनाथ अहिरवार का गाया ये लोक भजन सुना। अब सुनिए हरविंद कुमार नीरज की आवाज में ये साक्षरता गीत।

हरविंद कुमार नीरज की आवाज में अभी आपने ये साक्षरता गीत सुना। इसी के साथ ही कार्यक्रम खुशबू माटी की अब यहीं संपन्न हुआ। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से विविध भारती के कार्यक्रम।

बाज आए ऐसे फैशन से। हवा महल कार्यक्रम में आज हम आपको नाजनीन का लिखा ये प्रहसन सुनवा रहे हैं। इसके निर्देशक हैं जयदेव शर्मा कमल।

0: Shaving box. अरे रेजर तो इसमें है ही नहीं, फिर दाढ़ी कैसे बनाऊंगा? रेहाना,
1: अरे ओ भाई रेहाना,
0: ओफो न जाने इस घर को क्या होता जा रहा है। अभी तक तो सिर्फ रेजर गायब था और अब बेगम भी गुम हो गई।
2: तौबा है, अच्छी खासी मैं घर में हूँ, फिर भी यूँ चीख रहे हैं जैसे कि मैं लंदन में हूँ। क्या बात है, क्यों सदा लगाई थी?
0: इसमें वो रेजर नहीं है।
2: उसे तो मैंने फेंक दिया।
0: फेंक दिया, लेकिन क्यों?
2: वो भी कोई रेजर था, बिल्कुल पुराने फैशन का।
0: क्या मतलब?
2: अजी वैसा रेजर तो बाबा आदम के जमाने के लोग इस्तेमाल करते थे।
0: ये तुम क्या कह रही हो? अरे भाई मैं कल ही तो खरीद कर लाया था और आज तुमने फेंक दिया।
2: जनाब आज का जमाना तरक्की का है, दुनिया की हर शय बदल रही है।
0: जी
2: जी हाँ, लोग पुराने को छोड़कर नए को अपना रहे हैं, लेकिन एक आप हैं कि वही कदर के वक्त के फैशन से चिपके हुए हैं।
0: तकरीर तो काबिले तारीफ है आपकी, लेकिन ये बताइए मेरी दाढ़ी का अब क्या होगा?
2: वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। ये लो बिल्कुल नए किस्म का शानदार रेजर, मेरे भाईजान इसी तरह का रेजर इस्तेमाल करते हैं, तुम भी करो ना, तब तक मैं चाय बना कर लाती हूँ।
0: नए किस्म का मेरे भाईजान इस्तेमाल करते हैं। चल भाई राशिद, अब इसी से दाढ़ी खुरस डाल, वरना कहीं बेगम साहिबा ने इसे भी पुराने फैशन का करार दे दिया तो फिर बिना दाढ़ी बनाए ही ऑफिस जाना पड़ेगा। चाय तैयार हो गई हो तो ले आओ।
2: कहो कैसा था रेजर, शेप ठीक से बनी कि नहीं?
0: हाँ ठीक बनी। अरे कम्बख्त ने गाल को जगह जगह से काट कर पानी पर के मैदान बना दिया। ये देखो
2: नया था ना, इसलिए धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी तो फिर देखने से कमाल। ये लो
0: लो
2: चाय पी लो।
0: अरे ये कब कहाँ से आ गया?
2: कल नया स्टील का सेट खरीदा है, अच्छा है ना?
0: लेकिन
2: बिल्कुल ऐसा ही मैंने फूफी जान के घर में देखा था, बहुत खूबसूरत लगा तो मैंने भी ले लिया।
0: लेकिन इसकी क्या जरूरत थी, वो चीनी मिट्टी वाला सेट तो अभी ठीक ठाक था।
2: अच्छा छोड़िए भी, वो जमाने गए जब लोग मिट्टी के बर्तनों में खाते पीते थे।
0: अब तुमसे तो वो बहस करे जिसके पास फालतू दिमाग हो।
2: इसमें बहस कैसी, वो मिट्टी के कप निगोड़े हुड़क चिल्लू जैसे मुझे एक आंख भी न भाते थे। जुमे को खाला जाना ही थी, मैंने उन्हें उसी कप में चाय दी तो वो हंसकर बोली, क्यों रेहाना ये टी सेट क्या मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में निकला था? उफ क्या बताएं, मारी शर्म के मैं तो पानी पानी हो गई।
0: और इसीलिए तुमने उन्हें फौरन नादान में फेंक दिया।
2: तो और क्या करती, एक बार तो ना कर गई, अब क्या दूसरे मेहमानों के आगे भी अपनी बची खुची नाक कटवाऊं?
0: जी नहीं कतई नहीं, मैं कुतुब मीनार की तरह अपनी नाक ऊंची रखी है, भले मैं कंगाल हो जाऊं। हां
2: तुम तो नाहक परेशान हो रहे हो, ये सेट मैंने पैसों से थोड़े ही खरीदा है।
0: तो फिर क्या आसमान से टपका है या आपकी वो खाला जान खरीद के दे गई है?
2: हटो भी, अल्लाह न करे हम लोग किसी के भरोसे जिंदगी गुजारे। ये सेट तो मैंने अपनी चार पुरानी फैशन की साड़ियों और वो तुम्हारी दो पैंटे थी ना उनके बदले में लिया है।
0: क्या मतलब, जहाँ तक मुझे याद है ना तो तुम्हारे पास कोई पुराने फैशन की फालतू साड़ी थी और न मेरे पास पैंट, फिर तुमने किन कपड़ों के बदले में ये सेट खरीद डाला?
2: तौबा तौबा, वो चारों साड़ियाँ कहीं पहनने लायक भी नहीं रह गई थी।
0: क्यों क्या हो गया था उनमें?
2: अरे चारों साड़ियों के प्रिंट आउट ऑफ डेट हो चुके थे। उस दिन पार्टी में चाचा जान की लड़की नजमा को देखा था ना,
0: देखा
2: कितनी खूबसूरत डिजाइन थी उसकी साड़ी की, उसके आगे तो मेरी साड़ी ऐसे लग रही थी जैसे
0: मखमल के आगे ताज। क्यों
2: हाय तुम कितने अच्छे हो तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली।
0: लेकिन मेरी अच्छी बेगम, अच्छी बेगम, भाई मेरी पैंटों ने क्या कसूर किया था जो तुमने उन्हें टी शर्ट पर भेंट चढ़ा दिया?
2: अरे वो 24 इंच की मोरी वाली पतलून में थी कि अब तो कोई बेल बॉटम भी नहीं पहनता, मैं तो कब से मौके की तलाश में थी कि कब मौका

0: स्मार्ट लग रहे हो, क्या फिटिंग है आज तो ऑफिस में तुम ही तुम नजर आओगे।
1: बस अब रहने दो, इस मार क्या खाक लग रहा हूँ। अरे सारस लग रहा हूँ सारस, वो कमबख्त टांगों से जो कितने चिपकी हुई है, हवा तक पास होने का नाम नहीं।
0: अब ज्यादा दर्शन उसी बातें मत करो, लो लंच बॉक्स लो।
1: लंच और इस बालिश भर के डिब्बे में?
0: हाँ आज से इसी में लंच ले जाओगे तुम।
1: क्यों, मेरा वो चार कटोरों वाला बड़ा सा कटोरदान क्या हुआ?
0: कुछ तो अगड़ से काम लो, भला इस पैंट के साथ वो घंटा घर मार का कटोरदान मैच करेगा?
1: और लीजिए, अब साला ये फैशन खाने पीने में भी शामिल हो गया। लगता है तुम्हारा ये नया फैशन मुझे भूखा मार डालेगा। भला इस डिब्बे में कितना खाना आया होगा?
0: अच्छा खासा खाना आता है इसमें, मेरे मायके में सारे लोग इसी में खाना ले जाते हैं, और फिर दोपहर में वैसे भी खाना कम खाना चाहिए।
1: क्यों?
0: टोन निकल आती है, स्मार्टनेस खत्म हो जाती है और आदमी बेडौल हो जाता है।
1: बस बस बोर मत करो, मेरे जूते कहाँ हैं?
0: ये रहे।
1: ये क्या है?
0: जूते हैं और क्या है।
1: लेकिन मुझे तो ये उगलदार नजर आ रहे हैं, मेरे वो अपने पुराने जूते क्या हुए?
0: अजी मिट्टी डालो उन पुराने मेजर पुमा जूतों पर, इन्हें पहनो, इन्हें कहते हैं लॉन्ग बूट।
1: लॉन्ग बूट?
0: जीन्स पर यही पहने जाते हैं।
1: सुनो रेहाना, मैं ऑफिस जा रहा हूँ, कोई सड़क पर तारकोल फैलाने नहीं जा रहा जिसमें मुझे इन घुटनों तक ऊंचे ऊंचे जूतों की जरूरत पड़ेगी, समझी? मेरे तो वही पुराने जूते लाओ।
0: उफ, वही पुराने पुराने की रेट, 100 दफा कहा है कि नए फैशन के लिहाज से रहा।
1: अच्छा, बस बस, नया फैशन नया फैशन, ला दो जूते। साले नए फैशन की तो ऐसी की तैसी, या खुदा इस नए फैशन की बला से अरे दुश्मन को।
0: कोई बात नहीं, पहनोगे आदत पड़ जाएगी ना, सब ठीक हो जाएगा।
1: अरे आदत क्या बन जाएगी?
0: प्लीज उठो उठो।

0: मुझे बुलाया डियर।
1: यस डार्लिंग, कम ऑन, हाँ हाँ आ जाओ। देखो ये है तुम्हारा घर।
0: हाउ स्वीट।
2: क्या कहा? किसका घर? कैसा घर? आखिर ये चुड़ैल है कौन?
0: शट अप, मैं चुड़ैल नहीं, मेरा नाम लैला है। क्यों डियर?
2: अरे चल हट कल मुझे।

0: बड़ी आइडिया है डार्लिंग वाली। ओ डियर, तुम तो कहते थे मुझे यहाँ बड़ा आराम मिलेगा, मैं रानी बनकर रहूंगी। ओ माय गॉड, लेकिन यहाँ तो, यहाँ से चलो डियर, यहाँ मेरा दम घुटता है।
1: अरे मैं तेरी जान ले लूंगी कमीनी, शर्म नहीं आती तुझे? पराए मत को डियर कहते। ए जी, तुम बोलते क्यों नहीं, ये दिकोरी कौन है?
2: अरे भाई ये लैला है। लैला,
1: तुम्हारा इससे क्या ताल्लुक है?
2: मेरा ताल्लुक, मेरा ताल्लुक तो वही है जो शीरी का फरहाद से और सोनी का महवाज से था। मैं इसका मजनू हूँ।
0: क्या आ गया समझ में? इतनी देर से ऐसे डांट रही थी जैसे घर की नौकरानी न होकर मालकिन हो।
1: क्या कहा? मैं नौकरानी हूँ? चल चल मुझे, मैं अभी तुझे मजा सिखाती हूँ।
2: अरे अरे अरे, क्या कर रही हो रहना? बस बहुत हो चुका, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। भाई लैला मेरी बीवी है और तुम उस पर हाथ उठा रही हो।
1: क्या कहा? ये तुम्हारी बीवी है?
2: जी हाँ, ये मेरी नई शरीक हयात है।
1: या खुदा, ये तो सुनने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती?
2: लो, अब इसमें होने की क्या बात है? भाई तुम तो खुश होना चाहिए कि मैंने अपनी सभी पुरानी चीजों को अपने से अलग कर दिया है।
1: ये तुम क्या कह रहे हो?
2: ठीक कह रहा हूँ, और आपके आज का जमाना तरक्की का है, लोग बदल रहे हैं, पुरानी चीजों को छोड़कर नए को अपना रहे हैं। इसीलिए मैं भी नया फैशन टीवी भी ले आया।
1: जहन्नुम में जाए नया और पुराना, मैं क्या जानती थी कि नए के चक्कर में मेरी दुनिया ही तबाह हो जाएगी। देखो जी, इसे फौरन घर के बाहर करो वरना मैं,
2: वरना क्या,
1: मैं जान दे दूंगी, खुदकुशी कर लूंगी।
2: ओके, लेकिन खुदकुशी भी नए फैशन की होनी चाहिए।
1: ठीक है, तो तुम राज प्रकृति के साथ, मैं जा रही हूँ।
2: हाँ हाँ, जाओ शौक से जाओ।
1: क्या मतलब?
0: मतलब मैं समझाती हूँ, ये रही मेरी नकली बालों की विग और ये मैंने उतारा चश्मा।
1: तुम शैतान कहेंगी।
0: भाभी मैं,
1: उफ, कंबख्त ने ऐसा रूप धरा कि मैं पहचान भी ना पाई। खामखा मुझे रुला दिया।
2: खामखा नहीं रहना, इस पल भर की रुलाई ने तुम्हें जिंदगी भर के रोने से बचा लिया। अगर हम लोग ये नाटक ना खेलते तो तुम्हारे सिर से नया फैशन का भूत उतरना मुश्किल था।
1: चलो हटो, तुम बड़े बहु।
0: अच्छा भाभी, अब मैं चलती हूँ।
1: कहाँ चलती हो? बैठो ना, चाय लेकर आती हूँ।
2: चाय?
1: हाँ चाय, आपको कोई एतराज है?
2: एतराज बिल्कुल है।
0: अच्छा मैं भी तो सुनो, आखिर क्या?
2: वो ये कि हम लोग चाय पुराने फैशन के टी शर्ट में पियेंगे।
0: हाँ बाबा, वही पुराना टी शर्ट लाऊंगी, मुझे नहीं रखनी कोई नए फैशन की चीज घर में।

बाज आए ऐसे फैशन से। नाज़रीन का लिखा ये प्रहसन अभी आपने सुना। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। लखनऊ केंद्र की इस प्रस्तुति के साथ ही आज का हवा महल कार्यक्रम अब समाप्त होता है।

0: लिखते हैं व्यंग्य, लिखते हैं कविताएं और उपन्यास। अपना लेखन उन्होंने देश में ही नहीं विदेशों में भी पहुंचाया है। वो है विवेक रंजन श्रीवास्तव।
1: देखा जाए तो बड़ा महत्वपूर्ण है कि हर विधा में व्यंग्य एक स्प्रिट की तरह काम करता है। हम कविता में भी व्यंग कविताएं लिख सकते हैं, अलग से आजकल व्यंग पूरे लेख जो होते हैं समसामयिक घटनाओं पर, वो हर अखबार के संपादकीय पन्ने का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन गए।
0: सुनिए आज के मेहमान 15 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना, मैं और मेरी तन्हाई, सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: ये आकाशवाणी।

श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक गीतकार। हमारे आज के गीतकार हैं चिरपरिचित गीतकार शैलेंद्र। हिंदी सिनेमा के स्वर्णिम दौर की बात हो और गीतकार शैलेंद्र का नाम ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। सरल शब्दों में कहें, गहरे जीवन दर्शन को अपने शब्दों में पिरो देना, यही खासियत है उनकी। तो लीजिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं हम एक ऐसे ही चुनिंदा गीत के साथ, जिसे हमने लिया है फिल्म जिस देश में गंगा बहती है। गीत को आवाज दी है मुकेश ने, संगीत दिया है शंकर जयकिशन ने।

सच्चाई और गहरे जीवन दर्शन में लिखे गए इनके गीत ही तो खासियत है इनकी। तो लीजिए उन्हीं की एक और रचना सीमा में, सुनिए मन्ना डे व साथियों को।

तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। सीमा फिल्म का ये गीत आपने सुना मन्ना डेवा साथियों की आवाज़ों में। गीत शैलेंद्र का लिखा हुआ था, गीत को संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, आप इस समय सुन रहे हैं फिल्म संगीत के कार्यक्रम में एक गीतकार शैलेंद्र को। हिंदी सिनेमा के सबसे महान गीतकारों में से एक शैलेंद्र, जिन्हें 1950 और 1960 के दशक में कई सदाबहार गीत लिखे, उनके लिखे हुए नगमे आज भी उतने ही लोकप्रिय हैं जितने उस जमाने में थे। आइए सुनते हैं अनाड़ी फिल्म में मुकेश को इस खूबसूरत से गीत में।

शंकर जयकिशन के संगीत निर्देशन में आपने ये गीत सुना फिल्म अनाड़ी से। गीत को आवाज़ दी थी मुकेश ने और गीत लिखा था शैलेंद्र ने। शैलेंद्र जी ने बड़े ही सहज और सरल शब्दों में ये बताया कि सच्ची खुशी धन और दौलत में नहीं बल्कि खुले दिल, सादगी और अपनत्व में बसती है। उनके अधिकांश गीतों में हमें जीवन दर्शन देखने को मिलता है। आइए सुनते हैं एक और ऐसा ही नगमा फिल्म श्री

सुनना मगर ये किसी से न कहना, तिनके गले के सहारा न बहना, बिन मौसम मल हार न गाना, आधी रात को मत चिल्लाना वरना पकड़ लेगा पुलिस वाला।

0: मन्ना डे व साथियों की आवाजों में गाया। अभी आपने ये गीत सुना, फिल्म थी श्री 420, गीत शैलेंद्र का था, धुन बनाई थी शंकर जयकिशन ने। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम एक गीतकार में, आज शैलेंद्र को। कार्यक्रम में हम यहाँ एक लेंगे छोटा सा अंतराल, आप बने रहिएगा हमारे साथ।
1: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
2: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना, जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना, हर संकट का समाधान है भारतीय सेना, भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारत।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: वो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल हर जगह

0: கடற்படை பாரதிய சேனா.
1: अंतराल के बाद एक बार फिर हम हाजिर हैं आपकी खिदमत में. श्रोताओं, आप सुन रहे हैं एक गीतकार शैलेंद्र को, और लीजिए अब सुनिए कार्यक्रम में अंतिम प्रस्तुति मुकेश की आवाज में फिल्म मधुमति से. गीत को संगीत दिया है सलिल चौधरी ने और शब्द रचना है शैलेंद्र की.

मधुमती फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम एक गीतकार अब यही संपन्न हुआ। श्रोताओं, आज आपने सुना शैलेंद्र को। ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है FM 103 पर। अब से बस कुछ ही पलों में आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या, तत्पश्चात होंगे अंग्रेजी में समाचार।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन

0: से होगा। और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। अब समाचार विस्तार से। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीयों के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कहा कि भारत ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि व्यापारिक जहाजों पर हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्थे नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिमाण स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।
0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए।
1: अंक्लॉस में दर्शाए गए अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप नौ वहन यानी नेविगेशन और उड़ान की स्वतंत्रता, समुद्र में अन्य कानून उपयोगों जैसे लॉफुल यूजेस ऑफ द सी और बिना रुकावट के व्यापार को बनाए रखने में के महत्व पर हम जोर देते हैं। ये हमारा हमेशा से ये मत रहा है। हम इस बात की एक बार और पुष्टि करते हैं कि समुद्री विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से और अंक्लॉस के अनुसार सुलझाया जाना चाहिए। हम यह भी दोहराते हैं कि 10 साल पहले मध्यस्थता ट्राइब्यूनल ने फैसला सुनाया था और यह फैसला एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह संबंधित पक्षों के बीच विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने का आधार भी है।
0: लॉरेंस बिश्नोई गिरोह पर अभियोग के संबंध में प्रवक्ता ने कहा कि भारत लगातार ये कहता रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध, आतंकवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी, मानव तस्करी, अवैध हथियारों की तस्करी और संबंधित आपराधिक नेटवर्क समाज के लिए बड़ा खतरा है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एक रिपोर्ट।
2: यह समझौता लोगों के हितों को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसे समाज के हर वर्ग को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौते और डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन के एक साथ लागू होने से भारत के निर्यात के लिए नए अवसर खुलेंगे। इस समझौते के तहत भारतीय निर्यातकों को ब्रिटेन में कई प्रमुख क्षेत्रों में शुल्क पूरी तरह समाप्त होने का लाभ मिलेगा। प्रोसेस्ड फूड उत्पादों पर 70% तक, समुद्री उत्पादों पर 21% से अधिक, इंजीनियरिंग सामान और ऑटो कंपोनेंट्स पर लगभग 18%, चमड़े और फुटवेयर उत्पादों पर 16% तक तथा वस्त्र और परिधान पर लगभग 12% तक लगने वाला शुल्क अब शून्य हो जाएगा। इससे ब्रिटेन के बाजार में भारतीय उत्पादों की प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। किसानों, मछुआरों, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमियों तथा विनिर्माण क्षेत्र को नए अवसर मिलेंगे। साथ ही वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं में भारत की भागीदारी और मजबूत होगी। समझौतों के तहत भारत ने अपने संवेदनशील क्षेत्रों की सुरक्षा भी सुनिश्चित की है। इनमें डेयरी उत्पाद, अनाज, मोटे अनाज, खाद्य, तेल, तिलहन, सेब और कई प्रकार की सब्जियां शामिल हैं। रोहन के साथ अमन यादव, आकाश।

0: आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भारत ब्रिटेन व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता को भारत की व्यापार यात्रा में एक अहम पड़ाव बताया है। नई दिल्ली में उन्होंने कहा कि कल से लागू होने वाले इस समझौते से भारत और ब्रिटेन के बीच द्विपक्षीय व्यापार और निवेश संबंधों में एक नए दौर की शुरुआत होगी।
2: यह भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और उद्देश्यपूर्ण मुक्त व्यापार समझौतों में से एक है। इसमें व्यापक क्षेत्रीय कवरेज है और शुल्क तथा गैर शुल्क बाधाओं में भारी कमी आई है। इस समझौते में परंपरागत टैरिफ उदारीकरण से कहीं आगे बढ़कर सरकारी खरीद, पहली बार प्रभावी सरकारी खरीद, लघु तथा मध्यम उद्यम, नवाचार, श्रम रोजगार और लैंगिक समानता जैसे मुद्दों को शामिल किया गया है।
1: श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने हैदराबाद में 15वें ब्रिक्स ट्रेड यूनियन फोरम TUF शिखर सम्मेलन 2026 का शुभारंभ किया। उन्होंने एक ऐसी वैश्विक व्यवस्था की वकालत की जो श्रमिकों पर केंद्रित हो और जहां सामाजिक न्याय और मानवीय गरिमा तकनीकी प्रगति का आधार बने। उन्होंने कहा कि भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय लचीलेपन, नवाचार, सहयोग और स्थिरता पर केंद्रित है और ये समावेशी और समान विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। 12वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक कल से हैदराबाद में होगी। 2 दिन की बैठक में ब्रिक्स सदस्य देशों के श्रम और रोजगार मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। श्रम और रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। भारत का सबसे बड़ा वैश्विक वस्त्र कार्यक्रम भारत टेक्स 2026 आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में शुरू हुआ। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने इसका उद्घाटन किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री सिंह ने कहा कि भारत टेक्स प्रधानमंत्री का दृष्टिकोण है। उन्होंने कहा कि ये अब एक अंतर्राष्ट्रीय आयोजन बन चुका है और हर साल इसमें प्रदर्शकों, खरीदारों, विक्रेताओं और आगंतुकों की संख्या में वृद्धि हुई है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भूमि अधिग्रहण की पूरी प्रक्रिया के प्रबंधन के लिए रेल भूमि पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। रेलवे को आधुनिक बनाने के उद्देश्य से किए गए सुधारों पर नई दिल्ली में संवाददाताओं से श्री वैष्णव ने कहा कि बिजली संयंत्रों में उत्पन्न होने वाली फ्लाई ऐश को अब कंटेनरों में भेजा जाएगा ताकि इसकी बारीक धूल पर्यावरण को प्रदूषित न कर सके।
3: अभी तक क्या चैलेंज आता था, रेल ट्रांसपोर्टेशन में जब उसको वैगन में भरते हैं तो फ्लाई ऐश बहुत फाइन होती है, उसको लोड करने के टाइम में बड़ा पॉल्यूशन होता है, फिर जब उसको ट्रांसपोर्ट करो, जब ट्रेन 100 की स्पीड से चलेगी तो बहुत सारी फ्लाई ऐश निकल के बाहर आ जाती है और पूरे रास्ते उसका ट्रांसपोर्टेशन का प्रॉब्लम होता है। सो दैट्स व्हाई वी ब्रॉट दिस रिफॉर्म। फ्लाई ऐश के लिए स्पेशल कंटेनर डिजाइन किया है जिसमें लोडिंग होगी टॉप से।
1: निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। आयोग ने बताया कि मतदाता सूची का मसौदा 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। अंतिम मतदाता सूची 3 अक्टूबर को जारी होगी। आयोग ने कहा कि दावे और आपत्तियां 30 अगस्त तक दर्ज की जा सकती हैं। एक देश एक चुनाव पर बनी संयुक्त समिति ने लखनऊ दौरे के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश विधानमंडल के पीठासीन अधिकारियों, विपक्ष के नेताओं और सदस्यों के साथ बातचीत की। समिति ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और राज्य के कुछ कैबिनेट मंत्रियों के साथ भी बातचीत की। समिति ने प्रस्तावित संशोधनों, विधायी प्रक्रिया, संवैधानिक सिद्धांतों, केंद्र राज्य संबंधों पर संभावित असर और क्षेत्रीय मुद्दों पर भी चर्चा की। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी उपलब्ध हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने आज भोजशाला विवाद को सुलझाने के लिए रोजाना सुनवाई करने पर सहमति व्यक्त की। हालांकि न्यायाधीश सूर्यकांत, जॉय माल्य बागची और न्यायाधीश वी मोहना की पीठ ने याचिकाकर्ताओं की अंतरिम आदेश की उस मांग को ठुकरा दिया जिसमें पुरानी स्थिति बहाल करने को कहा गया था। एक रिपोर्ट।
4: पुरानी व्यवस्था के अंतर्गत तय दिनों पर पूजा के साथ साथ शुक्रवार को नमाज पढ़ने की इजाजत थी। पीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वह विवादित जगह के पास शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे के बीच नमाज पढ़ने के लिए एक अलग खुली जगह उपलब्ध कराए। पीठ ने कहा कि ये व्यवस्था फिलहाल अस्थायी है और मामले के अंतिम नतीजे पर निर्भर करेगी। पीठ ने मामले को बेहद संवेदनशील बताते हुए दोनों पक्षों से संयम बरतने को कहा। शीर्ष अदालत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती देने वाली कई अपीलों पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें कहा गया था कि धार जिले में विवादित भोजशाला परिसर

0: देवी सरस्वती को समर्पित एक मंदिर है और वहां नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी गई थी। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 में अब तक प्रत्यक्ष कर के रूप में 7,73,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि एकत्र की है। वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि की तुलना में इसमें 16% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज हुई है। इसमें 3,35,000 करोड़ रुपए से अधिक का कॉरपोरेट कर और 4,11,000 करोड़ रुपए का गैर कॉरपोरेट कर शामिल है। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने कहा है कि संविधान लोकतांत्रिक स्थिरता और राष्ट्रीय एकता का आधार बना हुआ है और इसमें संशोधन करने की संसद की शक्ति देश को बदलते समय की जरूरतों को पूरा करने में सक्षम बनाती है। उपराष्ट्रपति ने नई दिल्ली में द वॉयस ऑफ जस्टिस जस्टिस गवई स्पीक्स नामक पुस्तक का विमोचन करते हुए ये बात कही।
2: This publication is much more than a compilation of speeches and reflections. It is an important constitutional and institutional document, reflecting judicial thought shaped by experience, constitutional discipline, and public responsibility. The title, The Voice of Justice, is particularly meaningful because justice in a constitutional democracy is ultimately sustained by reason, fairness, restraint, and institutional.
1: और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 561 अंक लुढ़ककर 77,055 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 159 अंक फिसलकर 24,052 पर आ गया। अंतरबैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 58 पैसे कमजोर होकर 96.20 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
1: और अब खेल खबरें। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा, वहीं स्पेन 2010 में विश्व कप जीतने के बाद इस बार विश्व कप फाइनल में पहुंचने की पूरी कोशिश करेगा। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 15 ओवर में 2 विकेट पर 80 रन बना लिए हैं। इससे पहले टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी इंग्लैंड की टीम 47 ओवर और 5 गेंद में 258 रन बनाकर आउट हो गई। मौसम विभाग ने ओडिशा में कल तक मूसलाधार वर्षा और कुछ स्थानों पर तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग ने बताया कि बिहार में भी कल तक मूसलाधार वर्षा होने की संभावना है। अगले 2 दिन में पूर्वोत्तर भारत, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल में ही ऐसी स्थिति बनी रहने की उम्मीद है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने होर्मुज जलडमरू मध्य में सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई। ईरान और अमेरिका से संघर्ष के स्थायी समाधान के लिए फिर से बातचीत शुरू करने का आग्रह किया। भारत ने कहा, पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक और व्यापार समझौता कल से लागू होगा। अधिकांश भारतीय निर्यातित वस्तुओं पर कोई शुल्क नहीं लगेगा। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य की अवधि 10 दिन और बढ़ाई। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में देर रात फ्रांस का मुकाबला स्पेन से होगा और बर्मिंघम में खेले जा रहे पहले एकदिवसीय क्रिकेट मैच में इंग्लैंड ने भारत को 259 रन का लक्ष्य दिया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: Good evening. This is Akashvani and I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. India reiterates its call for safe and unimpeded navigation through Strait of Hormuz, urges Iran and US to return to dialogue for a lasting solution to the conflict. New Delhi says ongoing protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir are direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation and denial of fundamental rights to local population. Comprehensive economic and trade agreement between India and United Kingdom granting zero duty access to most of Indian exports comes into force from tomorrow. Election Commission extends schedule of ongoing special intensive revision of electoral rolls in Haryana and Andhra Pradesh by 10 more days. France to clash with Spain in first semi-final of FIFA World Cup in Texas tonight. And in men's cricket,

0: जानी मानी लेखिका और निर्देशिका सीमा कपूर से एक मुलाकात।
1: क्या होता है जब राइटर एक चीज लिखता है तो उसका एक ख्वाब होता है कि इसको मैं जीवंत कैसे करूं। अब इसको कलाकारों के साथ पीछे के पेड़, जंगल, पहाड़, झरने, इनको जीवंत करना है आपको, तो फिर आप निर्देशक बनना चाहते हैं और सारी लिमिटेशंस के साथ आप उन चीजों को सेलुलॉइड पे उकेरते हैं पेंटिंग की तरह।
0: जरूर सुनिएगा ये दिलचस्प बातचीत बॉम्बे टॉकीज में 18 जुलाई शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
3: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला, सईद को पकड़ा लिया। और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये
4: एक और लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
2: दास्तान सई परांजपे की, उजाले उनकी यादों के, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए,
7: ये विविध भारती है और इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए। तो अगला गीत है आपके लिए मन्ना डे, आशा भोसले, मोहम्मद रफी, सुधा मल्होत्रा, एसडी ताबिश और साथियों की आवाजों में। गीतकार है साहिर लुधियानवी, संगीतकार है रोशन और फिल्म का नाम है बरसात की रात।

साथियों, कार्यक्रम आपके लिए अब समाप्त होता है। सलमा सैयद को दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए विविध भारती, देश की सुरीली धड़कन।

0: सुनते हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये न सुन।

0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: तुम देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: वो है कार्यक्रम त्रिवेणी।
2: तुम आ गए हो, नूर आ गया।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।

संगीत का रोशन की धुनें वाकई बेमिसाल हैं। मेलोडी उनके संगीत की विशेषता है। भारतीय संगीत की समृद्ध विरासत से प्रेरित उनकी धुनें बार बार हमें अपने माधुर्य से लुभाती हैं।

संगीत का रोशन नाम है भारतीय सिने संगीत के आकाश के एक रोशन सितारे का, जिनकी कशिश भरी धुनें हमें ठिठकने पर मजबूर कर देती हैं। रोशन साहब की शैली अपने समकालीन सभी संगीतकारों से जुदा थी। उनकी धुनों में भारतीय शास्त्रीय संगीत का सौंदर्य नजर आता है। संगीत में वाद्यों की भीड़ नहीं, बावजूद इसके धुनों में गजब का आकर्षण है, मिठास है।

संगीत का रोशन का पूरा नाम था रोशन लाल नागरथ। उनका जन्म 14 जुलाई सन 1917 को अविभाजित भारत के पंजाब प्रांत के गुजरांवाला में हुआ था। अब ये स्थान पाकिस्तान का हिस्सा है। छोटी उम्र में ही रोशन संगीत सीखने लगे थे। उसी दौरान वो लखनऊ के भातखंडे संगीत महाविद्यालय में संगीत का अध्ययन करने लगे। ख्वाजा खुर्शीद अनवर की प्रेरणा से 1940 की शुरुआत में रोशन आकाशवाणी दिल्ली में इसराज वादक की हैसियत से काम करने लगे। उनके भीतर कहीं एक बेचैन संगीतकार भी करवटें ले रहा था, जिसे बाद में भारतीय सिनेमा

मुकेश और रोशन एक दूसरे के पूर्व परिचित थे और परिचय का ये सिलसिला बहुत पुराना तब का था जब दोनों दिल्ली में रहा करते थे। 1950 के दशक के शुरुआती दौर में रोशन के संगीत निर्देशन में मुकेश और तलत महमूद ने कई गीत गाए।

सन 60 का दशक रोशन के लिए बहुत भाग्यशाली रहा और इस दौर में रोशन ने कई सफल फिल्मों के लिए संगीत निर्देशन किया। इस दौर की मशहूर फिल्म बरसात की रात की ये कव्वाली उनके संगीत से सजी कालजयी फिल्मी रचना है।

संगीत का रोशन के सुरीले संगीत से सजी कुछ मशहूर फिल्मों के नाम हैं बरसात की रात, आरती, अनोखी रात, दिल ही तो है, बहु बेगम, चित्रलेखा, ममता और ताजमहल।

16 नवंबर सन 1967 को 50 बरस की आयु में अपने सुरीले गीतों की विरासत सौंपकर रोशन इस लौकिक जगत को छोड़कर चले गए। फिल्म जगत और सुरीले संगीत के कद्रदान हमेशा ऋणी रहेंगे महान संगीतकार रोशन के।

0: आप सुन रहे थे महान संगीतकार रोशन पर केंद्रित कार्यक्रम आज के फनकार, प्रस्तुतकर्ता रमेश गोखले। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत, नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: आकाशवाणी का लखनऊ केंद्र है। प्रस्तुत है हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण।
1: खेल दर्पण।

0: नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। खेल दर्पण का आज का अंक लेकर हाजिर हूं मैं मिथिलेश श्रीवास्तव। आज के अंक की प्रस्तुति है आकाशवाणी बरेली की। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दो विशेष खिलाड़ियों से और जानेंगे इन खिलाड़ियों का खेल, कैसे इन्होंने मैदान पर अपना परचम लहराया और भी बहुत कुछ। तो चलिए करते हैं शुरुआत।
1: बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में।
2: नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित शर्मा है
1: जी,
2: और मैं मध्य प्रदेश ग्वालियर से बिलोंग करता हूं और मैं बरेली सेंटर में हॉकी कोच के रूप में प्रशिक्षित हूं।
1: तो बचपन में जो है यही पेरेंट्स बोलते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि पढ़ने से नवाब बनोगे और खेलने से खराब होगे। तो आपकी लाइफ में क्या था?
2: मेरे लाइफ में भी ऐसा ही था। तो जो मेरे पिताजी थे वो मध्य प्रदेश पुलिस से अभी रिटायर हुए हैं
1: जी, जी।
2: वो भी कबड्डी खेला करते थे और स्विमिंग खेला करते थे।
1: अच्छा,
2: तो उस तरीके से तो जैसे कि आजकल माहौल होता है, जो पहले क्रिकेट, हम लोग मैंने पहले सबसे पहले क्रिकेट ज्वाइन किया, फिर उस

0: का जो हमारे जो कॉलोनी था, और कॉलोनी में एक दर्पण हॉकी स्टेडियम था,
1: अच्छा।
0: तो वहां पे हॉकी का काफी पुराना चलता था। फिर वहां जाके मेरे पिताजी वहां लेके गए, फिर वहां से मैं धीरे धीरे करके हॉकी खेलना स्टार्ट किया
1: हॉकी खेलना शुरू किया।
0: जी।
1: लेकिन क्रिकेट नहीं जमा आपको?
0: नहीं, क्रिकेट नहीं जमा। क्रिकेट थोड़ा सा अच्छा गेम है,
1: हाँ।
0: पर यह है कि बस क्रिकेट के लिए थोड़ा सा एक खिलाड़ी है, वही बैटिंग आने के लिए काफी देर तक वेट करना पड़ रहा है, और थोड़ा सा
1: कई बार नहीं भी आती है।
0: नहीं भी आती है।
1: तो इसलिए आपको ये लगा कि हाँ हॉकी में भाई
0: हाँ,
1: हमेशा आपको एक्टिव रहना है।
0: एक्टिव रहना है।
1: अच्छा, लेकिन फुटबॉल में भी तो ऐसा होता है।
0: हाँ, फुटबॉल भी खेला है हमने।
1: अच्छा।
0: फुटबॉल जो ऐसे कभी कभी जो बारिश होती थी उसका स्कूलों में, और उसके बाद जो हमारे जो पास के पार्क वगैरह होते थे उसमें हम हॉकी के साथ साथ फुटबॉल भी खेला करते थे।
1: अच्छा, लेकिन हॉकी को फिर आपने क्यों चुना?
0: हॉकी को इसलिए चुना क्योंकि जब हम पहली बार वहां पे देखा, हमने वहां पे बाहर खड़े हुए कॉलोनी में खड़े हुए थे, पास में ही है कॉलोनी में हमारे, तो देखा वहां पे सर अगर प्रैक्टिस करवा रहे हैं। एक अविनाश भटनागर जी थे सर, हमारे कोच आज भी प्रैक्टिस करवाते हैं। एक रईस कुरैशी जी थे, वो दोनों वहां पे प्रैक्टिस करवा रहे थे। हमने उनको देखा तो ऐसे खड़े हुए थे। फिर हमारे जो सीनियर थे उन्होंने बोला हॉकी अगर खेलना है ना? हाँ खेलना है। बोला आ जाओ। फिर वहां पे जो हॉकी प्रोवाइड करवा दी जाती थी
1: अच्छा।
0: तो वहां जाके एक दो दिन खेला, उसके बाद जो हॉकी अच्छा लगा, और कॉलोनी से भी काफी बच्चे जाते थे तो खेलते खेलते वो हमारा मन लगने लगा उसमें।
1: मन लग गया एक तरह से कहा जाए तो। फिजिबिलिटी जो
0: हाँ,
1: उपलब्धता आपके आसपास थी वो
0: वो
1: हॉकी
0: हाँ, जो एनवायरनमेंट वहां पे जो
1: की।
0: हॉकी का था दर्पण में, दर्पण जो कॉलोनी है वो काफी सारा, मतलब हर तीसरे चौथे घर में से एक हॉकी खिलाड़ी है उधर।
1: अच्छा,
0: हाँ काफी है।
1: बिल्कुल। तो और हॉकी की जहां तक बात की जाए तो बचपन में आपने बताया कि पिताजी पुलिस में थे
0: हाँ
1: और स्विमिंग करते थे।
0: हाँ
1: स्विमिंग नहीं ट्राई किया आपने?
0: नहीं, स्विमिंग नहीं किया। तो
1: अच्छा।
0: वो स्पोर्ट्स से थे तो उनका मतलब यही था कि बच्चे को खेल पढ़ाई के साथ साथ खेल खेलना भी जरूरी होता है।
1: जरूरी है।
0: तो उनका ये कहना था कि आप पढ़ तो रहे ही हैं पर सुबह उठो कोई ना कोई एक गेम खेलो।
1: तो मतलब पिताजी का काफी
0: हाँ,
1: सहयोग भी मिला और उनका
0: पिताजी
1: प्रभाव भी पड़ा,
0: प्रभाव भी रहा।
1: क्योंकि वो उनका नेचर भी था
0: हाँ,
1: और उनका रूटीन भी था।
0: रूटीन भी था।
1: अच्छा, इसके बाद फिर जहां पढ़ाई की बात की जाए, खेल के साथ साथ पढ़ाई को कैसे मैनेज किया आपने?
0: जब ऐसे मैं अभी जो असाई में कोचिंग कर रहा हूँ, तो मैं जब 9th क्लास में था, 8th क्लास में था, तो एक साई का ही सेंटर टीकमगढ़ में था।
1: अच्छा।
0: तो टीकमगढ़ में मेरा चयन हुआ जो ट्रायल देने गए, तो वहां हमने हॉकी खेला। हॉकी खेलने के बाद फिर मैंने भोपाल में भी एक साई का सेंटर है वहां पे भी मैंने प्रयास किया, तो वहां पे भी मेरा चयन हुआ। फिर वहां मैं 3 से 4 साल, वहां चौहान सर थे,
1: अच्छा,
0: भाई एस चौहान सर जो अभी रिटायरमेंट हो गए, हरियाणा के थे, तो उनके अंडर में मैंने 3 से 4 साल वहां पे भोपाल में 2014 तक हॉकी खेली। उसके बाद जब हम आ गए, उसके ओवर एज हुए, तो उसके बाद फिर देखा, उसके बाद फिर धीरे धीरे जब एक खिलाड़ी होता है, खिलाड़ी जब वो पढ़ाई में जाता है तो थोड़ा सा बहुत चेंज आता है, तो फिर धीरे धीरे थोड़ी सी मेहनत की और फिर थोड़ा और मेहनत की, फिर उसके बाद जो बैचलर होती है बीपीएड वगैरह वह किया, उसके बाद एमपीएड किया, फिर थोड़ा सर्टिफिकेट, और जो हमारे सीनियर्स थे
1: जी
0: उन्होंने हमें मोटिवेट किया कि हाँ आप खेल बंद हो गया है तो थोड़ा इस लाइन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि आजकल जो है स्पोर्ट्स कोटा के लिए जो मेडल होता है मेडल वालों के ही जॉब है, तो उसके बाद अगर आपके पास काफी सारे ऐसे जो खिलाड़ी होते हैं वो जो एक मनोबल टूट जाता है उनका जब खेल खेलने के बाद उनको जॉब नहीं मिलती है तो उनका मनोबल टूट जाता है। तो मैं तो उनको ये सबको यही बताना चाहूंगा, अगर मनोबल मत तोड़िए, उसके बाद आपके पास काफी लाइन है, अगर आप उसमें आप घुस जाएंगे तो फिजिकल एजुकेशन में जब जाएंगे हॉकी के साथ साथ और दूसरे गेम के साथ साथ तो काफी लाइन है, आप उससे टीचर भी बन सकते हो, आप कोच भी बन सकते हो, आप प्रोफेसर भी बन सकते हो, तो काफी चीजें हैं। तो मतलब वहीं आप अपना गेम को ड्रॉप मत करो। ऐसे ही मेरे साथ मेरे जो सीनियर्स थे काफी, उन्होंने बताया मुझे कि हाँ अब तू बीपीएड कर, तो फिर मैंने बीपीएड किया जीवाजी यूनिवर्सिटी से। फिर उसके बाद फिर मैंने बोला अब क्या है, अभी तो जॉब नहीं मिल रही है, फिर उन्होंने बोला कि तू और पढ़ाई कर। फिर मैंने LNIP से सर्टिफिकेट कोर्स किया, फिर मास्टर, फिर मैंने और पढ़ाई की, फिर LNIP में मास्टर डिग्री किया। फिर मास्टर डिग्री करने के बाद फिर सोचा कि हाँ,
1: ये LNIP क्या है?
0: LNIP लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है,
1: अच्छा,
0: जो कि ये 1956 में बना हुआ था।
1: अच्छा।
0: हाँ, और भारत का मक्का फिजिकल एजुकेशन कहा जाता है।
1: अच्छा।
0: यहाँ से आपको असिस्टेंट प्रोफेसर, डायरेक्टर, जितने भी फिजिकल एजुकेशन के टीचर्स प्रोफेसर होंगे अच्छे लेवल पे, वो इसी कॉलेज से पास आउट होंगे, और बेसिकली ये एशिया का नंबर 1 कॉलेज माना जाता है
1: जी।
0: फिजिकल एजुकेशन में, और कोचिंग में जैसे अपना NIS पटियाला माना जाता है। तो फिर वहीं से मैंने मास्टर डिग्री किया, मास्टर डिग्री के करने का जो घर ग्वालियर में ही था, तो वहां से डिप्लोमा भी करवाते हैं वहां पे, तो डिप्लोमा इन स्पोर्ट्स

0: कोचिंग में। तो फिर मैंने वह डिप्लोमा स्पोर्ट्स कोचिंग भी किया। जब वो डिप्लोमा मेरा कंप्लीट हुआ उसके बाद फिर मैंने उसमें वैकेंसी आई हुई थी खेलो इंडिया सेंटर में, वहां मैंने अप्लाई किया। तो वहीं ग्वालियर में पास में जो वुमेन्स हॉकी अकेडमी है वहीं मैंने खेलो इंडिया सेंटर में ज्वाइन किया। जब मैं 2 साल मैंने वहां पे वर्क किया उसके बाद फिर जो अपने जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है साई उसमें वैकेंसी आई। उसमें वैकेंसी के आने के बाद फिर मैंने वहां पे फिल किया। जो मैंने हॉकी इंडिया के लेवल 1 लेवल जो हॉकी इंडिया की कोर्सेज करवाती है जो उसमें मतलब कोचेस के लिए लेवल 1 होता है, बेसिक होता है।
1: अच्छा।
0: वो मैंने पास किया। उसके बाद लेवल 1 होता है वह मैंने पास किया। उसके बाद फिर हॉकी इंडिया के लेवल 1 पास किया, हॉकी इंडिया का लेवल 2 पास किया और उसके बाद इंटरनेशनल लेवल 1 जो कोचिंग होती है उससे आप इंटरनेशनल लेवल तक भी आप कोचिंग कर सकते हो।
1: अच्छा।
0: तो वो है लेवल पास किया और उसका दूसरा भी पास किया और अभी तीसरा मैं करके आया हूँ।
1: अच्छा अच्छा।
0: हाँ तो वह गया तो उसका मुझे साई के वैकेंसी में फायदा भी मिला और जो इंटरव्यू वगैरह है वहाँ पे इंटरव्यू भी हुआ। उसके बाद मुझे दिल्ली में इंटरव्यू के बाद मुझे भारत सरकार के सेंटर में बरेली में चयन हुआ।
1: जी जी। तो ये जो आप लेवल्स बता रहे हैं
0: हाँ,
1: इनकी क्या वेटेज होती है, कैसे क्या?
0: ये वेटेज आज के जमाने में जो अपडेट है जो फॉरेन कंट्री में क्या रहता है, जैसे फुटबॉल के पहले लेवल चलते थे तो लेवल 1 लेवल 2 टाइप में, जैसे ही हमारे जो FIH है फेडरेशन इंटरनेशनल हॉकी का तो उनके द्वारा ये हॉकी के बेसिक लेवल स्टार्ट किए हैं। बेसिक लेवल में क्या होता है कि जो अपडेट आ रही है नई नई हॉकी जो स्टार्ट हो रही है कि कैसे आपको ग्रिप पकड़नी है, कौन कौन सी ग्रिप है, बच्चे को किस तरीके से ग्रास रूट लेवल पे इजी तरीके से हम उनको सिखा सकते हैं और कैसे प्लेयर को एनालाइज करना है, कैसे प्लेयर को आइडेंटिफाई करना है, कैसी हमारी स्ट्रेटजी होगी, क्या हम टैक्टिक्स होंगे जब अपोनेंट से हम हार रहे हों जीत रहे हों, क्या हमारी साइकोलॉजी होंगी ड्यूरिंग मैच बिटवीन द मैच और आफ्टर मैच। तो वह चीज जो फॉरेन कोचेस होते हैं वह हमें आके इसमें 4 से 5 दिन का जो कोर्स होता है उसमें वो हमें अपडेट कराते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर उसके बाद फिर वो हमारा रिजल्ट तैयार करते हैं और वो हमें टास्क देते हैं, फिर देन हम उसको पास करते करते आगे बढ़ते हैं।
1: अच्छा। मतलब एक कोर्स को पास किया फिर
0: दूसरा है फिर तीसरा है ऐसे।
1: तो अभी आप जो तीसरा कोर्स पास करके आए हैं
0: हाँ,
1: ये इसमें क्या था, क्या मतलब लेवल का मतलब क्या था?
0: हाँ, ये जो फेडरेशन इंटरनेशनल FIH लेवल 3 कोर्स था
1: जी जी,
0: तो उसमें क्या था, ये इसमें जो हाई लेवल जो मैच चल रहा है अभी इंटरनेशनल, मतलब इसका जो कोर्सेज है वो सीधे भुवनेश्वर में होते हैं। अच्छा। भुवनेश्वर में जैसे FIH के जो मैचेस चल रहे होंगे इंटरनेशनल मैचेस, ड्यूरिंग द मैचेस उस समय हमें बुलाया जाता है, फिर हमें उस मैच के बारे में एनालाइज करवाया जाता है, फिर वो हमें बताया जाता है कि पहले हम खुद एनालाइज करेंगे उस मैच को, हम बताएंगे कि इस मैच में क्या क्या और कर सकता है। एक एक टीम दे दी जाती है, जैसे इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का मैच चल रहा है तो मुझे इंडिया दे दी जाएगी और सामने वाले को ऑस्ट्रेलिया दी जाएगी, फिर हम इंडिया ऑस्ट्रेलिया की प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे।
1: अच्छा।
0: प्रेजेंटेशन तैयार करेंगे, उनकी वीकनेस और स्ट्रेंथ तैयार बनाएंगे, स्ट्रेंथ और वीकनेस बनाने के बाद जब हम उनको प्रेजेंट करेंगे देन हमारे जो उसमें जो गलतियां होंगी फॉल्ट होंगी जो फॉरेन कोचेस होंगे जो इंडिया वाले कोचेस हैं जो सीनियर कोचेस हैं जो FIH में है वह उनको हमें बताएंगे कि हाँ ये आपकी थोड़ी सी गलतियां हैं और फिर आपको कैसे उस मैच को एनालिसिस करना है, कैसे उसकी स्ट्रेंथ पकड़ना है, कैसे उसकी वीकनेस पकड़नी है।
1: अच्छा। और कौन कौन से लेवल होते हैं 3 के बाद फिर अब क्या 10 तक?
0: हाँ नहीं, लेवल 4 रहते हैं,
1: 4 तक
0: लेवल 4 रहते हैं।
1: अच्छा।
0: फिर 3 के बाद जो एजुकेटर्स हो जाते हैं, उसके बाद जो बेसिक लेवल्स होते हैं ना उनके लिए आप उस पढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं।
1: तो क्या इसके जरिए क्या कुछ सैलरी अपग्रेडेशन भी होती है?
0: नहीं, सैलरी अपग्रेडेशन अच्छा। नहीं होती, इसके जगह कोच अपडेट होता है।
1: कोच अपडेट होता है, मतलब एक तरह से नॉलेज गेन
0: है, ये हमारे लिए ही फायदा है।
1: अच्छा, आपने तो राष्ट्रीय स्तर पे भी खेला है
0: जी,
1: तो पहला मैच कौन सा था आपका?
0: जी, हमारा था मध्य प्रदेश वर्सेस छत्तीसगढ़ का था।
1: अच्छा।
0: सबसे पहले मैं वहाँ पे गाजियाबाद में खेला था।
1: अच्छा।
0: 2006-07 की बात है जब हमने खेला था, पहली बार मैच खेला, उसका जीते भी थे, छत्तीसगढ़ से मैच जीते थे। तो ऐसे ही फिर उसके बाद फिर हम औरंगाबाद गए, फिर दिल्ली में भी हुआ, फिर ऐसे धीरे धीरे करके काफी सारे जो नेशनल लेवल टूर्नामेंट थे वो खेले।
1: कौन से पोजीशन पे खेलते थे?
0: मैं सेंटर फॉरवर्ड खेलता था।
1: सेंटर फॉरवर्ड
0: जी।
1: तो कुछ अगर यादें अगर साझा करना चाहें
0: सेंटर फॉरवर्ड,
1: कोई ऐसा मैच जो काफी डिफिकल्ट था या आपके लिए डिफिकल्ट था, टीम के लिए भले ना हो?
0: हाँ, काफी सारे मैच ऐसे होते हैं जब आप मेन पोजिशन सेमीफाइनल्स होते हैं। तो ऐसे ही एक मैच था औरंगाबाद में सेमीफाइनल्स में, तो वह जो सेमीफाइनल मैच होते हैं उस समय आपके पास जिम्मेदारी काफी बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी बढ़ जाती तो उस समय आपकी पहले क्या होती थी, 11 पोजिशन होती थी इंक्लूडिंग गोलकीपर से लेके फॉरवर्ड।

0: बाद तो पांच फॉरवर्ड होते थे, तीन डिफेंडर होते थे, दो तीन हाफ, दो डिफेंडर, एक गोलकीपर होता था। अब जो नया आ रहा है उसमें उन्होंने कर दिया कि तीन लेवल में बांट दिया उन्होंने, डिफेंडर, स्ट्राइकर और मिडफील्डर। तो उस समय जो हॉकी थी वो थोड़ी सी स्लो थी, है ना, अब जो है हॉकी थोड़ी सी फास्ट और होती जा रही है। तो उस समय पहले क्या रहता था कि जो कोचेस भी होते थे और जो साथ में, वो ये कहते थे कि आप सिर्फ अपना काम करिए। तो ऐसे जब बॉल हमारे सेंटर में आती थी तभी हमारा काम होता था स्ट्राइकरों का, फॉरवर्डों का, कि हाँ हम जाके गोल करें। अब जो हॉकी चेंजेस है उसमें क्या रहता है कि स्ट्राइकर भी पीछे आएगा और डिफेंडर भी आगे जाएगा, मतलब कि आपको टोटल हॉकी है,
1: टोटल
0: स्ट्राइकर भी गोल मारेगा और डिफेंडर भी गोल करवाएगा आपका। तो पहले ऐसे काफी सेमीफाइनल मैचेस होते थे, उस समय हम सिर्फ बॉल का वेट करते थे, अगर हम पीछे जाते थे तो वहां से कोचेस जो होते वो कहते थे पीछे मत आ, फिर आगे गोल कौन करेगा। तो इस चक्कर में काफी मैच हार भी जाते थे।
1: तो कुछ टेक्निक्स जो है अपडेट हुई है।
0: हाँ,
1: अच्छा, इसकी वजह से क्या कुछ रिजल्ट इम्प्रूव हुआ है?
0: हाँ, ये जो टोटल हॉकी आया है
1: जी,
0: उसमें क्या रहता है स्ट्राइकर भी जो है गोल मारेगा, स्ट्राइकर भी मिडफील्डर है और मिडफील्डर भी स्ट्राइकर है, डिफेंडर भी स्ट्राइकर है, डिफेंडर भी मिडफील्डर है। उसमें क्या रहता है कि ऐसे कि हमारी जो इंडियन टीम के काफी जो डिफेंडर हैं, अब वह भी आगे जाके जो, मतलब काफी जो कोचेस की जो स्ट्रेटजी होती है कि हाँ आप आगे जाएंगे, डिफेंडर आगे जाएगा तो मिडफील्डर जो है वो पीछे आ जाएगा, उससे वो आपके जो एक प्लेयर इंक्रीज हो जाएगा जिससे आपको गोल मारने में फायदा मिलेगा।
1: जी, जी, जी।
0: तो आज के जमाने में जो है टोटल हॉकी है, आपको पूरा मैच खेलना है, आपको गोल भी मारना है, आपको डिफेंड भी करना है।
1: अब जैसे कि आपने बताया आप ग्वालियर के हैं, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, क्या अंतर पाते हैं?
0: मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में काफी अंतर है। जैसे कि बताया जाता है कि यूपी, उत्तर प्रदेश में काफी स्ट्राइकर्स माने जाते हैं अच्छे लेवल के, और मध्य प्रदेश में स्ट्राइकर प्लस मिडफील्डर भी होते हैं। पर जो यूपी है, यूपी की हॉकी मैंने देखा यहाँ पे आके, यूपी की हॉकी काफी अच्छी है।
1: अच्छा।
0: यूपी में जो इतना मध्य प्रदेश में है लेवल है, बच्चों का लेवल है, काफी हॉकी है, पर यूपी की जो स्ट्रेंथ है काफी बड़ी है उसमें, और हॉकी भी काफी है, मतलब कि आपको एक जगह एक सिटी में काफी आपको दो से तीन तीन ग्राउंड मिलने को मिलेंगे। तो बच्चों को यहाँ पे हॉकी का क्रेज काफी ज्यादा है, इसलिए आज के जो है इंडियन टीम में कम से कम तीन से चार जो यूपी के हैं प्लेयर वो आपको मिलेंगे।
1: मोहित जी, जो आप साई के कोच हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपके तमाम शिष्य आपसे गुरु मंत्र लेकर और आपके निर्देशन में सफलता की नई ऊंचाइयां छुएं, यही उम्मीद करते हैं, यही शुभकामनाएं हैं आपके लिए। आप हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको भी आमंत्रित करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: हॉकी कोच रोहित शर्मा के बाद दूसरे खिलाड़ी हैं दीपू कश्यप, इनसे बातचीत की है हमारी सहयोगी अमृता ने।
2: कार्यक्रम में दीपू कश्यप जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है।
3: थैंक यू।
2: सबसे पहले दीपू, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपके पास इतने सारे मेडल्स हैं, तो कैसे आपको लगा कि इसी खेल को चुनना चाहिए?
3: स्टार्टिंग से ही मैंने ये स्ट्रगल करना मुझे बहुत अच्छा लगा था
2: जी,
3: और फिर मैं एक बार गई थी स्कूल में तो मेरी रेस हुई थी, तो फिर मैं फर्स्ट आई थी, तो मैम ने बोला था कि इसी लाइन में जाओ और तुम बहुत अच्छा करोगे आगे चल के। तो फिर मैंने आगे चल के गई थी, स्टेडियम गई थी, पहले डोईलाल स्टेडियम गई थी
2: जी,
3: तो उन्होंने मुझे कराया और फिर मैं यहाँ तक पहुँच पाई
2: जी। मतलब आपको इंस्पिरेशन मिली आपके स्कूल से जहाँ पर आप रेस में जीती? ऐसी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं जिससे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और एक दिन अपनी मंजिल की ओर जाते हैं। तो दीपू, आपसे ये जानना चाहेंगे कि आखिर बाधा रेस है क्या? क्या ये एक आम रेस है या ये अलग है एक सिंपल सी रेस से?
3: ये एक रेस है जिसमें हर्डल्स होते हैं
2: जी,
3: 10 हर्डल्स होते हैं इसमें और इसे क्रॉस करना पड़ता है। तो अगर एक भी हर्डल छूट गया तो आपका फाउल हो जाएगा
2: जी,
3: तो उसको एक राउंड करके और फिर आपकी रेस फिनिश हो जाती है
2: जी। आपने कहा कि हर्डल्स होते हैं, क्या ये हर्डल्स सिर्फ 10 होते हैं या फिर रेस की जो दूरी होती है उसके हिसाब से अलग अलग होते हैं?
3: ये हर्डल्स 10 होते हैं और बाकी 35-35 मीटर पे लगे होते हैं
2: जी। कितने मीटर की रेस होती है अगर बात की जाए, आप कितने मीटर की रेस को खेलती हैं या दौड़ती हैं?
3: मैं 400 मीटर रेस करती हूँ, बाधा दौड़
2: जी। और क्या 400 मीटर के अलावा भी होती है ये रेस?
3: हाँ, 400 मीटर होती है, 800 होती है, 1500 होती है, 3 किलोमीटर होती है
2: जी,
3: और 5 किलोमीटर होती है, 10 किलोमीटर होती है।
2: तो अभी आप 400 मीटर की रेस दौड़ती हैं?
3: हाँ, अभी 400 मीटर
2: जी। तो कितना समय लग जाता है 400 मीटर की रेस को पूरा करने में?
3: अभी तो मेरे को 400 मीटर फ्लैट करने में तो 1

0: डाउन हो जाता है और बाकी हर्डल्स पे एक छे आ जाती है टाइमिंग
1: जी। तो जो हर्डल्स होते हैं उनकी अगर ऊंचाई की बात की जाए और दूरी की बात की जाए, कितना डिस्टेंस होता है लगभग उनमें?
0: ऊंचाई की तो वो तो लो हर्डल होता है, एकदम लो होता है, और फिर दूरी 35-35 मीटर पे होता है, लास्ट का जो हर्डल होता है वो 45 मिनट पे होता है, मीटर पे होता है।
1: मतलब हर्डल्स की एक सेम दूरी नहीं होती, अलग अलग होती जाती
0: है? हाँ हाँ, अलग अलग होती है, 35-35 मीटर पे होती है, बाकी लास्ट के होते हैं ना वो 45 मीटर पे होते हैं।
1: जी दीपू, आप एक स्टेट लेवल प्लेयर हैं, तो जब आप ये गेम खेलते हैं तो कैसा लगता है, किस तरह की चुनौतियां आ जाती हैं कभी कभी गेम खेलने में?
0: शुरू से ही मैंने मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल करा है और मुझे पसंद भी है स्ट्रगल करना। तो सुबह मैं उठती हूँ और फिर फ्रेश वगैरह होना, और सुबह उठ के एकदम मन भी नहीं करता कभी कभी उठने का, तो फिर एक बार सोचती हूँ कि मेरा जो कंपटीटर है वो मेरे से आगे बढ़ जाएगा
1: जी।
0: अगर मैं एक दिन की प्रैक्टिस छोड़ूंगी तो मेरे से बहुत आगे बढ़ जाएगा, इसलिए मैं डेली रहता है मेरा जाना
1: जी। मतलब कई तरह की चुनौतियां आती हैं, चाहे मौसम हो चाहे किसी भी तरह की शारीरिक थकान हो, लेकिन रुकना नहीं होता है, तभी हम अपनी मंजिल को पाते हैं। दीपू, अगर आपसे बात करें गेम की पूरी प्रक्रिया की, तो किस तरह से ये गेम शुरू होता है, कितने प्लेयर होते हैं और किस तरह से रेस की शुरुआत होती है, इसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे।
0: इसमें 8 से ज्यादा लोग होते हैं तो उसमें हीट कर दी जाती है, तो हीट होती है, और अगर 15 लोग हो या 20 लोग हो तो दो दो आठ आठ करके हीट को कंप्लीट करा जाता है, फिर सेमीफाइनल होता है, फिर फाइनल होता है, ऐसे करके
1: जी
0: होता है।
1: तो जो दूरी होती है और प्लेयर्स की संख्या होती है, क्या ये हर गेम में बराबर होती है, चाहे वो 400 मीटर की रेस हो, 100 मीटर की हो या फिर इससे ज्यादा की हो?
0: हाँ, हीट तो होती है, 100, 200 और 400 मीटर में हीट तो होती है, और बाकी 800 मीटर में भी हीट होती है, लेकिन ऑल इंडिया वगैरह में जाओ, वर्ल्ड वगैरह में जाओ खेलने तो होती है हीट उसमें, वरना तो 800 मीटर में स्टेट नेशनल में तो फाइनल कर दिया जाता है।
1: दीपू, आपने फाउल की बात की, फाउल किस तरह से होते हैं और कैसे वो गिना जाता है एक गेम में कि हाँ अब आपका फाउल हुआ है?
0: जब हम स्टार्ट करते हैं रेस तो हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बैठते हैं, तो फिर हम जब वो कोच बोलते हैं कि वो मार्क बोलते हैं तो फिर सेट बोलते हैं, अगर उससे गन बजाने से पहले ही खिलाड़ी
1: भागा दौड़ने लगता है,
0: दौड़ने लगता है तो वो फाउल हो जाता है,
1: डिस्क्वालीफाइड
0: हो जाता है
1: जी। इसके अलावा जो हर्डल्स होते हैं उसमें अगर पैर टकरा जाए या फिर उसको क्रॉस नहीं कर पाए तो क्या वो भी फाउल में माना
0: जाता है? क्रॉस नहीं कर पाओ तो फाउल हो जाता है, और बाकी हर्डल्स गिर जाते हैं तो फाउल हो जाता है
1: जी। दीपू, एक खिलाड़ी के लिए उसकी दिनचर्या बहुत आवश्यक होती है क्योंकि उसे बहुत कुछ करना होता है, तो आपसे आपकी दिनचर्या के बारे में जानना चाहेंगे कि कैसी होती है, कब आप कितने बजे उठती हैं, उसके बाद में जो आपकी प्रक्रिया रहती है पूरे दिन की वो क्या होती है?
0: मैं सुबह 4:30 बजे उठती हूँ, और बाकी फ्रेश वगैरह होना, और फिर एक केला वगैरह खाते हैं और फिर जाते हैं प्रैक्टिस करने, फिर वहां से आते हैं, उसके बाद डाइट वगैरह लेते हैं और फिर 1 घंटे रिकवरी वगैरह करते हैं, उसके बाद पढ़ाई वढ़ाई करने लगते हैं
1: जी। और शाम की क्या आपकी जो अगर बात की जाए स्केड्यूल जो होता है वो क्या रहता है?
0: शाम को वही 4 बजे से प्रैक्टिस पे जाते हैं और फिर वही 3-4 घंटे की प्रैक्टिस, उसके बाद 8 बजे घर आते हैं, खाना वाना खाते हैं
1: जी,
0: थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, फिर सो जाते हैं।
1: प्रैक्टिस में क्या क्या होता है, एक्सरसाइज होती है या सिर्फ गेम की आप प्रैक्टिस करती हैं?
0: हाँ, प्रैक्टिस में एक्सरसाइज होती है, और जिम स्ट्रेंथ पावर वर्कआउट के लिए जिम भी जरूरी होती है, और बाकी रोड वगैरह करना जरूरी होती है
1: जी। आपने भी स्ट्रेंथ की बात की, तो एक खास तौर पर एक लड़की होने के नाते स्ट्रेंथ जो होती है वो कितनी जरूरी होती है एक लड़की के लिए, और खासतौर पर एक अगर लड़की प्लेयर हो वो भी बाधा रेस की? तो
0: अगर अगले क्षेत्र में जाती है लड़की तो स्ट्रेंथ, जब तक उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता तो वो आगे नहीं बढ़ सकती
1: जी।
0: और
1: आपने अभी स्ट्रेंथ के लिए भी बोला कि स्ट्रेंथ बहुत जरूरी होती है, और कॉन्फिडेंस की आपने बात की, तो चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है, आप में आत्मविश्वास नहीं है, तो वैसे भी आप आगे नहीं जा सकती, और इसीलिए बहुत जरूरी हो जाता है एक प्लेयर होने के नाते भी कि आत्मविश्वास पूरा होना चाहिए। दीपू, परिवार में आपके कौन कौन है, और एक खिलाड़ी होने के नाते परिवार का कितना सपोर्ट रहा आपको?
0: परिवार में मेरी 4 सिस्टर हैं और एक भाई है, मैं सबसे छोटी हूँ सिस्टर में, और मम्मी पापा हैं, तो मम्मी पापा का तो और घर वालों का तो पूरा सपोर्ट रहा है, बहन भी सपोर्ट करती है, उसको जॉब करती है तो थोड़ा बहुत कर देती है सपोर्ट, और बाकी यही है, घर वालों से कभी ये नहीं रहा कि इतना सुबह क्यों जा रही है, इतनी रात में क्यों आ रही है, कभी ये नहीं रहा, पूरा सपोर्ट रहा है घर वालों की तरफ से
1: जी। आप शहर से बाहर भी खेलने जाती हैं, तो क्या उस टाइम पे कभी ऐसा हुआ है कि परिवार वालों ने कहा हो कि आप एक लड़की हैं और आप बाहर ना जाएं, यहीं पे रह के खेलें?
0: कभी ऐसा हुआ नहीं है, ना कभी घर वालों ने बोला है कि बाहर इतनी दूर क्यों जा

0: तू लड़कों से बात कर रही हो, या बहुत सारी बातें होती हैं, मोहल्ले वाले बातें बनाते हैं,
1: जी
0: तो कभी नहीं सोचा घर वालों ने, यही भरोसा करा है कि हाँ हमारी लड़की घर से बाहर निकली है तो कुछ अच्छा ही करके आई है।
1: बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हर किसी के लिए बहुत आवश्यक है, और खासतौर पर माता पिता का। और आप तो लकी है कि आपकी बहनें भी हैं जो आपको पूरी तरह से सपोर्ट भी करती हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करती हैं। तो दीपू, डाइट की अगर बात करें तो एक खिलाड़ी की डाइट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तभी उसमें सेहत आती है और स्ट्रेंथ आती है, ताकत आती है। आपकी डाइट क्या है, क्या डाइट लेती हैं आप?
0: सुबह जब हम वर्कआउट करके आते हैं तो सुबह वही ड्राई फ्रूट्स लेते हैं, काजू बादाम किशमिश छुआरे ये सब लेते हैं, और उसके बाद कभी कभी दूध मिल जाता है तो दूध भी पी लेते हैं, और बाकी फिर शाम में जब जाते हैं तो एक केला वेला खा के चले जाते हैं।
1: जी अच्छा दीपू, ये देखा जाता है कि जो आजकल के यूथ हैं, बच्चे हैं खास तौर पर, उन्हें फास्ट फूड खाना बहुत पसंद है, तो एक खिलाड़ी होने के नाते आप क्या कहते हैं, फास्ट फूड खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए?
0: फास्ट फूड खाना चाहिए, बट इतना ही नहीं कि लिमिटेड
1: खाना चाहिए,
0: लिमिटेड खाना चाहिए
1: बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा फास्ट फूड खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन हाँ कभी कभी टेस्ट के लिए आप कर सकते हैं।
0: कभी कभी मैं भी खा लेती हूँ, महीने में एक बार या दो बार।
1: जी जी, आप कहाँ कहाँ गई हैं अभी तक दीपू, क्योंकि आपने इतने सारे मेडल जीते हैं, तो जरूर आप देश में या फिर स्टेट लेवल पे खेलती हैं, तो दूसरे शहरों में तो जरूर गई होंगी।
0: लखनऊ गए थे एक बार खेलने, तो और गाजियाबाद भी गए थे, गोरखपुर गए थे, और सायापुर पीलीभीत बदायूं, वहां से जब भी गए हैं तो मेडल लेके आए हैं।
1: जी, इतनी सारी जगहों पे आप गई हैं और आपने ढेर सारे मेडल्स भी जीते हैं, क्या कभी कोई ऐसी एक कहानी है या फिर कुछ ऐसा हुआ है जो आपके जहन पे एक असर छोड़ गया हो कि मैं वहां गई थी, वहां पे ऐसा ऐसा हुआ था?
0: ऐसा तो कुछ नहीं, वैसे तो एक बार गई थी तो मेडल नहीं बढ़ पाया, तो घर आई थी, फिर घर वाले भी बोल रहे थे क्या हो गया, नर्वस क्यों हो रही है, फिर मैंने बताया कि मेडल नहीं आया, तो फिर बोले कि कोई बात नहीं, अप डाउन तो होते रहते हैं, कभी आता है कभी नहीं आता है, हार जीत तो चलती रहती है।
1: बिल्कुल,
0: तो फिर वही रहा कि
1: जैसा कि जानते हैं और आप बाधा रेस खुद ही खेलती हैं, तो आपको पता है कि बाधाएं तो आती रहती हैं, निराशा आती है और कभी कभी हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार के बाद ही जीत है, और वो दिख ही रहा है आपके इतने सारे मेडल्स से, और जरूर आगे भी भविष्य में आप ढेर सारे मेडल्स और जीतेंगी। तो दीपू, अगर आपसे बात की जाए कि प्रैक्टिस की जो बात होती है, कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा परेशानियां भी आती हैं प्रैक्टिस करने के टाइम पे, मान लीजिए कोई इंजरी हो गई, जो हर खिलाड़ी के जीवन में जरूर होती है कभी ना कभी, तो क्या आपको भी ऐसी कोई इंजरी हुई है जिसकी वजह से आपकी प्रैक्टिस प्रभावित हुई हो या खेल प्रभावित हुआ हो?
0: हाँ, एक बार जब हम हडल कर रहे थे तो एक बार क्रॉस कर रहे थे तो स्ट्रेच हो गई मसल।
1: जी,
0: तो फिर एक दो दिन रेस्ट किया, फिर सोचा कि ये तो इंजरी तो होती रहती है खिलाड़ी की लाइफ में, जब तक इंजरी नहीं आएगी तो खिलाड़ी कैसे बनेगा वो। तो फिर दो तीन दिन बैठी थी मैं रेस्ट पे, उसके बाद सोचा मैंने कि अब कब तक रेस्ट करूंगी, एक मैं एक दिन तो आना ही है प्रैक्टिस पे, तो फिर प्रैक्टिस तो लगातार रही मेरी।
1: जी, इतनी सारी परेशानी के बाद आप प्रैक्टिस करती रहती हैं कंटिन्यू, एक खिलाड़ी के लिए बहुत जरूरी हो जाता है कि भले इंजरी हो उससे रिकवर करने के बाद कंटिन्यू प्रैक्टिस करना, क्योंकि बॉडी को भी नीड होती है। अब आपसे दीपू ये जानना चाहेंगे कि जब आप खेलने कहीं जाती हैं तो आसपास के जो लोग होते हैं उनका क्या आपके साथ बर्ताव रहता है, क्योंकि परिवार का तो सपोर्ट आपको है, लेकिन जो हमारे आसपास की सोसाइटी है, लोग हैं, वो आपको किस तरह से ट्रीट करते हैं?
0: आसपास के लोग भी खुश होते हैं कि हाँ लड़की जा रही है बाहर खेलने, अच्छा नाम करके आ रही है, पहले भी गए थे तो मेडल वगैरह लेके आए थे, खुश हुए थे आसपास के लोग, कभी ऐसा नहीं कि बातें बनाई हूँ मोहल्ले वाले ने, कभी ऐसा नहीं, काफी अच्छा सपोर्ट रहा है मोहल्ले वालों,
1: मतलब लोग भी अब आपको अप्रिशिएट करते हैं।
0: हाँ, बिल्कुल
1: जी, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जरूर आपको देखकर आसपास की जो लड़कियां हैं जो इस क्षेत्र में आना चाहती हैं, स्पोर्ट खेलना चाहती हैं, वो जरूर आगे आएंगी, आप उनको प्रेरित करने का काम भी कर रही हैं। दीपू, आप अभी बहुत ही छोटी हैं, और कितनी आयु से आपने इस गेम को खेलना शुरू किया था?
0: मैंने 16 साल से स्टार्ट किया था खेलना, और 2022 से स्टार्ट किया था खेलना, और मुझे 3.5 साल हो गए रनिंग करते करते।
1: 3.5 साल से आप इस गेम में हैं, तो 3.5 साल में अगर आपके एक्सपीरियंस की बात की जाए तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है और शहरों के खिलाड़ियों के साथ में जब आप खेलने जाती हैं? तो
0: जब खेलने पहले जब जाती थी तो पहले तो मेडल नहीं आते थे क्योंकि प्रैक्टिस अच्छी नहीं थी पहले, और पहले इतना एक्सपीरियंस भी नहीं था,
1: शुरू की बात होती है जी,
0: तो एक्सपीरियंस भी नहीं था इतना, फिर थोड़ी थोड़ी आगे करके प्रैक्टिस हुई और मेहनत करी, तब जाके थोड़े मेडल वगैरह आने लगे, काफी अच्छा लगा और फिर यही हुआ।
1: अच्छा, आपके कोच का कितना सपोर्ट रहा है या फिर आपके जो टीचर्स होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको

0: सिखाते हैं, उनका कितना सपोर्ट रहा है आपके गेम में? कोच का भी फुल सपोर्ट रहा है? कभी डाइट वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच करते थे, शूज वगैरह का नहीं हो पाता तो कोच का तो पूरा सपोर्ट रहा है
1: जी,
0: और कोचिंग भी फ्री कराते हैं वो
1: जी। बहुत अच्छी बात है क्योंकि अगर कोच ऐसे हों तो जरूर उनके जो स्टूडेंट हैं वो आगे जरूर बढ़ेंगे। तो आपसे दीपू अब ये जानना चाहेंगे, आपने कहा कि शूज वगैरह प्रोवाइड कराते हैं, तो क्या कोई अलग सा कोड होता है ड्रेस का इस गेम को खेलने के लिए?
0: हाँ, रनिंग किट होती है, वो टाइटी वगैरह पहन के करा जाता है, शॉर्ट्स वगैरह, उसमें काफी अच्छा मतलब फील होता है और रनिंग भी अच्छी होती है। शूज की बात है तो खिलाड़ी के अलग ही होते हैं, सोल वगैरह अलग होती है उसकी और ग्रिप वगैरह अलग होती है और शूज भी लाइट होता है तो काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है शूज से भी
1: जी।
0: डाइट वगैरह भी अगर खिलाड़ी की अच्छी रही तो काफी अच्छा कर जाएगा
1: जी। को आप गेम तो खेलती ही हैं और काफी अच्छा कर रही हैं अपनी उम्र और अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, लेकिन अगर बात की जाए पढ़ाई की तो अभी वर्तमान में प्रेजेंट में आप क्या कर रही हैं?
0: अभी तो इंटर हो गया मेरा, बीए में एडमिशन लिया है
1: जी,
0: बीए करेंगे।
1: तो पढ़ाई करना भी आपको उतना ही पसंद है जितना गेम पसंद है?
0: पढ़ाई रनिंग के साथ साथ भी पढ़ाई करते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करते हैं, और बाकी जितना टाइम मिलता है वो पढ़ाई को ही देते हैं फिर
1: जी। तो पढ़ाई में आपने बोला कि आप बीए कर रही हैं, तो जब आप पढ़ रहे हो साथ ही साथ आप गेम भी खेल रहे हो, तो दोनों को मैनेज करना कितना मुश्किल हो जाता है इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे?
0: जब वर्कआउट करके आते हैं तो रिकवरी वगैरह लेते हैं, उसके बाद पढ़ाई भी करना बहुत जरूरी होता है तो एक दो घंटे पढ़ाई को देते हैं, फिर शाम में प्रैक्टिस करने जाते हैं, आते हैं तो खाना वाना खाते हैं, उसके बाद एक दो घंटे पढ़ाई को देते हैं।
1: तो मतलब आपकी पढ़ाई और आपका गेम दोनों अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है?
0: हाँ, बढ़िया।
1: आपकी स्कूल टीचर्स का सपोर्ट रहता है आपको?
0: हाँ, स्कूल टीचर का भी सपोर्ट बहुत रहा है
1: जी,
0: पहले भी रहा है और अभी अभी भी अच्छे से सपोर्ट रहा है
1: जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों चीजों को बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल हो जाता है कि गेम की प्रैक्टिस भी करनी है और साथ ही साथ पढ़ाई भी करनी है। दीपू, बिल्कुल हम यही चाहेंगे कि ना केवल आपके बल्कि जो भी बच्चे इस खेल को खेलना चाहते हैं या देश के नाम कोई भी मेडल प्राप्त करना चाहते हैं, देश का नाम रोशन करना चाहते हैं, उन सभी की जो भी इच्छाएं वो पूरी हों, अपनी मंजिल को वो पाएं। आपने अपने विचार, अपने एक्सपीरियंस साझा किए, उसके लिए दीपू कश्यप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: तो श्रोताओं, ये था आज का खेल दर्पण। आज का कार्यक्रम कैसा लगा आपको ये हमें जरूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।
3: खेल दर्पण।

0: श्रोताओं, अभी आप हमारा राज्य स्तरीय कार्यक्रम खेल दर्पण सुन रहे थे। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के बरेली केंद्र पर तैयार किया गया और आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: ये आकाशवाणी का झांसी केंद्र है, FM 103 पर। रात्रि के 10:30 हुए हैं। प्रस्तुत है गीत गजलों का कार्यक्रम सुगम संगीत। सुगम संगीत के इस कार्यक्रम में लीजिए सुनिए बशीर बद्र की लिखी गजल को सतीश बब्बर की आवाज में।

अभी आपने सुना सतीश बब्बर को बशीर बद्र की इस गजल में, और लीजिए अब सुनिए दाग दहलवी की लिखी गजल सतीश बब्बर की आवाज में।

अभी आपने सुना सतीश बब्बर को दाग दहलवी की इस गजल में, और लीजिए अब सुनिए मसरूर अनवर की लिखी गजल गुलाम अली की आवाज में।

हमको किसके गम ने मारा। अभी आप सुन रहे थे ये गजल मसरूर अनवर की लिखी गुलाम अली की आवाज में। लीजिए एक बार फिर सुनिए गुलाम अली को मोमिन की लिखी इस गजल के साथ।

गुलाम अली की गाई इस गजल के साथ ही कार्यक्रम सुगम संगीत अब यही समाप्त होता है। हम आकाशवाणी के झांसी केंद्र से बोल रहे हैं FM 103 पर। रात्रि के 11 बजने को है। अब से बस थोड़ी ही देर बाद आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, तत्पश्चात अंग्रेजी में समाचारों को।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं रत्ना पांडे। भारत ने कहा है कि वो पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर करीबी नजर रखे हुए है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में होर्मुज जलडमरू मध्य से व्यापारिक जहाजों की सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही की आवश्यकता दोहराई।
1: पश्चिम एशिया में जो भी गतिविधियां चल रही हैं उस पर हम लगातार नजर रखे हुए हैं। हमारा मानना है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते सुरक्षित और आजाद नौ परिवहन और व्यापार के पक्ष, जिसका हम हमेशा से बात करते रहे हैं, इससे यह सुनिश्चित किया जा सकता है कि लोगों का आर्थिक सुरक्षा, उनके ऊर्जा का सुरक्षा पूरे दुनिया में, सिर्फ भारत में नहीं पूरे दुनिया में उस पर आधारित है। और ये नौ परिवहन अगर आजाद तरीके से चलेगा तो उनकी आर्थिक और ऊर्जा सुरक्षा को सुनिश्चित किया जा सकता है।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि विदेश मंत्रालय ने ईरान के उप मिशन प्रमुख को तलब कर भारत की गहरी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने कहा कि एक भारतीय नागरिक की जान जाने और कई भारतीय के गंभीर रूप से घायल होने की कड़ी निंदा की गई। प्रवक्ता ने कड़ा विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि हमलों को जल्द से जल्द रोका जाना चाहिए, साथ ही तनाव कम किया जाना चाहिए और दोनों पक्षों को बातचीत, संवाद और कूटनीति का मार्ग अपनाना चाहिए ताकि पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता सुनिश्चित की जा सके। पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में विरोध प्रदर्शनों पर श्री जायसवाल ने कहा कि ये प्रदर्शन पाकिस्तान के दशकों से किए जा रहे शोषण और मौलिक अधिकारों के हनन का नतीजा है।
1: पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में चल रहे विरोध प्रदर्शन, दशकों से चल रहे शोषण, मौलिक अधिकारों का हनन और प्रशासनिक उत्पीड़न का सीधा परिणाम है और प्रमाण भी है। स्थानीय आबादी की जायज शिकायतों को समाधान करने के बजाय वहां का प्रशासन, वहां का सरकार ने अत्यधिक पुलिस क्रूरता का सहारा लिया है। इसमें असहाय लोग, जिसमें महिलाएं भी हैं और बच्चे भी हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है और निहत्ते नागरिक के खिलाफ घातक बल का प्रयोग करना भी शामिल है, जिसके परिणाम स्वरूप कई दुखद मौतें हुई हैं।

0: संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून सम्मेलन UNCLO पर श्री जायसवाल ने कहा कि दक्षिण चीन सागर मुद्दे पर भारत का रुख सभी को पता है। उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का समाधान शांतिपूर्ण ढंग से और UNCLO के अनुसार किया जाना चाहिए। भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक आर्थिक तथा व्यापार समझौता कल से लागू हो जाएगा। इस ऐतिहासिक समझौते के अंतर्गत भारत से निर्यातित 99% वस्तुओं पर ब्रिटेन के बाजार में कोई शुल्क नहीं लगेगा। ये समझौता भारत और ब्रिटेन की रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने और अपने लोगों के लिए समृद्धि लाने की साझा प्रतिबद्धता को दर्शाता है। निर्वाचन आयोग ने हरियाणा और आंध्र प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण SIR को 10 दिनों के लिए और बढ़ा दिया है। आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार बूथ स्तरीय अधिकारी घर घर जाकर मतदाता सूची का निरीक्षण 24 जुलाई तक करेंगे। ये पहले 14 जुलाई तक निर्धारित था। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री जयंत चौधरी ने आज नोएडा स्थित राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान के प्रथम एलुमनाई मीट 2026 को संबोधित किया, जिसमें उन्होंने सफल उद्यमियों से नए उद्यमियों का मार्गदर्शन करने का आह्वान किया। इस अवसर पर उन्होंने दो प्रकाशनों का लोकार्पण भी किया। कार्यक्रम में 19 राज्यों से लगभग 200 उद्यमियों, उद्योग जगत के प्रतिनिधियों और निर्माताओं ने भाग लिया। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने महादेव ऑनलाइन बेटिंग ऐप से जुड़े धन शोधन मामले में एक निजी सॉफ्टवेयर और फिनटेक कंपनी के चेयरमैन को गिरफ्तार किया है। ईडी ने हाल ही में चेयरमैन, उनके परिवार के सदस्यों और उनसे जुड़ी कंपनियों की 940 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति भी जब्त की थी। इंग्लैंड ने भारत को बर्मिंघम में पहले एक दिवसीय क्रिकेट मैच में 259 रन का लक्ष्य दिया है। जवाब में भारत ने ताजा समाचार मिलने तक 42 ओवर में 4 विकेट पर 241 रन बना लिए हैं। फीफा फुटबॉल विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में आज रात 12:30 बजे टेक्सस में फ्रांस और स्पेन आमने सामने होंगे। फ्रांस लगातार तीसरी बार फाइनल में जगह बनाना चाहेगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। New Delhi has said that it is closely observing the developments in West Asia following renewed escalations of tensions between US and Iran and attacks on commercial vessels. Briefing media in New Delhi this evening, spokesperson of the Ministry of External Affairs, Randhir Jaiswal, reiterated India's call for safe and unimpeded navigation and the flow of commerce through the Strait of Hormuz.
2: We are closely following the developments that are happening in West Asia. We continue to call for safe and unimpeded navigation and flow of commerce through the Strait of Hormuz. This is key for ensuring economic and energy security of people across the world.
1: India also expressed deep concern at the attacks on two vessels, MT Al-Bahyan and MT Mombasa, during their transit through the Strait of Hormuz today. Both the vessels were carrying 30 Indian seafarers among their combined crew of 46. Mr. Jaiswal said the Deputy Chief of Mission of the Embassy of Iran in New Delhi was summoned this morning by the ministry. Responding to a question on protests in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir or POJK, Mr. Jaiswal said the ongoing protests in POJK are a direct consequence of Pakistan's decades-long systemic exploitation, denial of fundamental rights and administrative oppression in areas under its illegal and forcible occupation. The Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, between India and the United Kingdom will come into force from tomorrow. Simultaneously, the Agreement on Social Security, referred to as the Double Contribution Convention, DCC, will also come into effect the same day, reinforcing the mobility and competitiveness of Indian professionals in the United Kingdom. The landmark deal grants Indian exports zero-duty access to 99% of tariff lines in the UK market. Briefing media in New Delhi today, Commerce Secretary Rajesh Agrawal described the India-UK Comprehensive Economic and Trade Agreement as